0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। सुबह के 5:43 और 5 सेकंड भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है, 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 5 जुलाई सन 2026। इस समय सुबह के 5:53 और 38 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। और श्रोताओं, आगे बढ़ने से पहले प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की आपको जानकारी दे देते हैं। आपसे कुछ ही देर में यानी 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। समाचार के बाद कार्यक्रम होगा सुप्रभात।

7 बजे का समय रहेगा हिंदी में समाचार का, और समाचार के बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। 7:30 से 7:35 पर हम लेकर आते हैं आपके लिए खेल जगत से अपडेट, और आज आप सुनेंगे विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप 2026 के अपडेट्स।

8 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का, और 9 बजे का समय रहता है कार्यक्रम दिल के तराने गाने नए पुराने।

तो ये थी श्रोताओं प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की रूपरेखा। यह आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है। सुबह के 6 बजने को हैं। अब समाचार होंगे।

अब आप सुनिए एफएम मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के साणंद में सीजी सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 48,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी। सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए प्याज की खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। महाराष्ट्र शिक्षा पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले में पुलिस ने उत्तर प्रदेश के आगरा के एक प्रिंटिंग प्रेस से 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। सरकार ने व्यापक पायरेसी की खबरों के बीच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और OTT कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खोमेनी के 6 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार यात्रा तेहरान से शुरू हुई। ईरान के दिवंगत नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए

हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू चल रही है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में मोरक्को ने कनाडा को 3-0 और फ्रांस ने पैराग्वे को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। 5 मैचों के टी20 क्रिकेट

राम आप सुन रहे हैं सुप्रभात आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आपके साथ गीत गुंजन। साथियों, हम लोग रोज अपने दिन की शुरुआत करते हैं बहुत पॉजिटिविटी के साथ, लेकिन दिन भर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती है कि जो पल पल हमारा मूड भी बदलती है, हमारे नजरिए को बदलती है। लेकिन अगर हम एक हैबिट बना लें, एक आदत बना लें बुरे के बजाय अच्छा देखने की, समस्या के बजाय समाधान देखने की या ढूंढने की, सल्यूशन ओरिएंटेड बन जाएं, तो हम जीवन के सच्चे आकार को यानी कि जिंदगी जीने के सही तरीके को खोज पाएंगे। और यही कहूँगी, जहाँ जो अच्छा नज़र आता है उस तरफ बढ़ जाएं।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
0: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम है, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: साथियों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुप्रभात। अब आप सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम समर्पण।
1: कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण।

कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुनते चले आ रहे हैं श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद का चतुर्थ अध्याय, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं महाराज परीक्षित जी द्वारा पूछे गए प्रश्न पर, जहां उन्होंने पूछा सुखदेव गोस्वामी जी से कि आप मुझे भगवान की माया की लीला के बारे में बताइए कि उन्होंने सृष्टि की रचना कैसे की, क्योंकि भगवान अपनी अंतरंगा शक्तियों के साथ कैसे खेलते हैं, अपनी स्वरूप शक्ति के साथ कैसे खेलकर आनंदित होते हैं, ये जानने से पहले भगवान की भगवत्ता के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, भगवान के ऐश्वर्य के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक भगवान के ऐश्वर्य के बारे में ना जाना जाए, तब तक भगवान का माधुर्य समझ ही नहीं आएगा, उस तरफ मन जाएगा नहीं, आकर्षित नहीं होगा, है ना। अगर भगवान का ऐश्वर्य ना पता चले और सिर्फ माधुर्य माधुर्य माधुर्य की तरफ हमारी नज़र रहे, ऐश्वर्य विहीन माधुर्य, तो वो प्राकृतिक लगेगा, एक आम आदमी एक आम स्त्री की तरह वो माधुर्य हमें लगेगा। लेकिन अगर भगवान के ऐश्वर्य को जान लिया जाए, तब आगे जब महाराज परीक्षित सुखदेव जी के मुख से श्री रासलीला का प्रसंग सुनेंगे श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में, तब उन्हें लगेगा कि हाँ, अरे ये भगवान अपनी स्वरूप शक्तियों के साथ ऐसी लीला करते हैं। पर अगर उन्हें जाना ही नहीं और पहले ही सुन लिया भगवान की उन लीलाओं के बारे में जो अपनी स्वरूप शक्ति के साथ खेलते हैं, तो फिर भगवान के प्रति दोष बुद्धि भी आ सकती है। इसीलिए महाराज परीक्षित सब सुनना चाहते हैं पहले ही, कि ठाकुर जी की सृष्टि लीला कैसी है, कैसे भगवान विभिन्न प्रकार के रूप लेते हैं, उनके अंश होते हैं, अंश के अंश होते हैं, उनकी कलाएं होती हैं, उनकी भी कला अंश होते हैं, है ना, और कैसे वो सृष्टि लीला करते हैं। तो सृष्टि लीला सुनाने से पहले सुखदेव गोस्वामी जी ने अपना प्रणाम अर्पित किया है श्री कृष्ण को, उनके चरणों में, और विभिन्न प्रकार की स्तुति की है। बहुत सुंदर स्तुतियाँ हो रही हैं जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं, है ना। और इन स्तुतियों से पता चल रहा है कि श्री कृष्ण के लिए सुखदेव गोस्वामी जी के हृदय में अतिशय प्रेम है, अतिशय प्रेम है। और उस प्रेम से द्रवित होते हुए सुखदेव गोस्वामी जी श्री कृष्ण की बड़ी ही सुंदर मार्मिक स्तुति कर रहे हैं। आज 19वें श्लोक में कह रहे हैं, स एष

आत्मात्मवतामधीश्वर स्त्रीमयो धर्ममय तपोमय। गत व्यलीकै रज शंकरादि भीर वितर्क्य लिंगो भगवान प्रसीदताम। आहा, बहुत ही सुंदर श्लोक है। वास्तव में देखा जाए तो भगवान की महिमा जिन भी श्लोकों में सुखदेव जी ने कही है, या श्री सूत जी ने कही है, या श्री शौनक जी ने कही है, या बाद में विदुर जी, मैत्री जी, इनके संवाद में भी हम सुनेंगे, या नारद जी ने कही है, या भगवान के अनेक भक्तों ने कही है, वो इतनी सुंदर हैं, हृदय को एकदम द्रवित करती हैं। भगवान का प्रेम तुरंत संचारित हो जाता है जो भी इन स्तुतियों का पठन पाठन करते हैं या सुनते हैं। तो इस श्लोक में कह रहे हैं, 19वें श्लोक में, कि वे ही भगवान। कौन भगवान? अरे वही जिनके बारे में हमने सुना था, जो किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, आभीर, कंक, यवन और खस आदि जो जातियां हैं और जो बाकी पापी हैं उनको भी पवित्र कर देते हैं अगर कोई उनके शरणागत भक्तों की शरण ले। बस उनकी शरण ग्रहण ना भी कोई करे और भक्तों की शरण ग्रहण कर ले तो वो पवित्र हो जाते हैं। ऐसे भगवान, उन्हीं के बारे में बता रहे हैं आगे कि वो भगवान कैसे हैं। तो कह रहे हैं कि वो भगवान ज्ञानियों के आत्मा हैं, भक्तों के स्वामी हैं, कर्मकांडियों के लिए वेद मूर्ति हैं, धार्मिकों के लिए धर्म मूर्ति हैं और तपस्वियों के लिए तपस्या स्वरूप हैं, तप स्वरूप हैं। ब्रह्मा, शंकर आदि बड़े बड़े देव भी अपने शुद्ध हृदय से उनके स्वरूप का चिंतन करते रहते हैं और आश्चर्यचकित होकर देखते रहते हैं। वे मुझ पर अपने अनुग्रह के प्रसाद की, अपनी कृपा की वर्षा करें। आ, सुखदेव गोस्वामी जी का मन पूरी तरह से श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय ग्रहण कर चुका है, है ना? आपने सुना होगा जहां 17वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी ने ये घोषणा कर दी थी कि जो बड़े बड़े तपस्वी हैं, बड़े बड़े दानी हैं, या बड़े बड़े यशस्वी हैं, बड़े बड़े मनस्वी हैं, सदाचारी हैं, या मंत्र को जानने वाले हैं, वेदों को जानने वाले हैं, जब तक वो अपनी साधनाओं को और अपने आप को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित नहीं कर देते तब तक उनका कल्याण नहीं होता। जिनके प्रति आत्मसमर्पण की ऐसी महिमा है उन कल्याणमयी कीर्ति वाले भगवान को बारंबार नमस्कार है। आहा, यानी तपस्वियों का तप, दानियों का दान, यशस्वियों का यश, मनस्वियों का मनन, सदाचारियों का सदाचार और मंत्रवेत्ताओं का मंत्र मनन सब बेकार है अगर वो श्री कृष्ण के उद्देश्य से नहीं किया जाए, वो श्री कृष्ण के लिए नहीं किया जाए, उनको प्रसन्न करने के लिए नहीं किया जाए, उनके चरण रज को पाने के लिए नहीं किया जाए, सब बेकार है। समस्त साधनाएँ कोई फल ही प्रदान नहीं कर सकती बिना भक्ति के, बिना भक्ति के। तो इसलिए अपनी साधना तक को भगवान के चरणों में अर्पित करना होता है। अगर कोई सोचे कि हम अपने बल से साधना कर लेंगे, हो नहीं सकता है। जब तक भगवान की, श्री कृष्ण की और उनके भक्तों की कृपा नहीं होगी तब तक कोई अपने बल से साधना नहीं कर सकता है। तो अपने आप को भी समर्पित करना है, अपनी साधना को भी भगवान के चरणों में समर्पित करना है। बिल्कुल सरल हृदय हो जाना है, बिल्कुल उन पर वैसे ही आश्रित हो जाना है जैसे एक दुधमुहा बच्चा अपनी माँ पर आश्रित हो जाता है। वो ये तक नहीं बता पाता कि मुझे भूख लग रही है अथवा मुझे प्यास लग रही है, वो कुछ नहीं कह पाता। वो माँ का इंतज़ार करता है, माँ जानेगी कि मुझे भूख लग रही है, अब मुझे दूध चाहिए। माँ ये जानेगी कि अब बच्चे को प्यास लग रही है, अब इसको पानी चाहिए। माँ ये जानेगी कि बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है, अब मुझे इसका इलाज करना है। माँ ये जानेगी, कैसे जानेगी? क्योंकि माँ बच्चे से प्यार करती है, उसका प्रेम ही उसको जना देगा, है ना? भगवान भी अपने जीवों से प्रेम करते हैं, लेकिन जो उनके चरणों की शरणागति ले लेते हैं उनके प्रति भगवान का वात्सल्य अतिशय भरपूर हो जाता है, अतिशय वात्सल्य से युक्त हो जाते हैं ठाकुर जी,

इसीलिए यहां बताया गया कि वे ही भगवान ज्ञानियों की आत्मा है। अगर वो ना हो तो ज्ञानियों का ज्ञान बेकार है। किसको लेकर होगा ज्ञानियों का ज्ञान, क्योंकि ब्रह्म क्या है? श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, मैं ब्रह्म का कारण हूं, मेरी वजह से ब्रह्म है, मेरी अंग की कांति ही वो निर्मल ब्रह्म है जिसे ज्ञानी प्राप्त करना चाहते हैं, जहां वो सायुज्य मुक्ति चाहते हैं, जहां वो विलीन हो जाना चाहते हैं। तो भगवान के बिना, अगर भगवान ही ना हो तो उनके शरीर की आभा ही कहाँ होगी? जब आभा ही नहीं है तो ब्रह्म ही कहाँ है? और जब ब्रह्म ही नहीं है तो ज्ञानियों का साधन ही किसको लेकर है? तो भगवान ज्ञानियों के साधन की आत्मा है, और भक्तों के तो वो स्वामी हैं ही, है ना? भगवान तो कहते हैं कि मैं भक्तों को प्रिय हूं और भक्त मुझे अतिशय प्रिय हैं, मैं भक्तों का हूं और भक्त मेरे हैं, भक्तों के अलावा मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कोई प्रिय नहीं है। और सबसे आसान है भजन भक्ति करना। ज्ञान मार्ग एक मुश्किल मार्ग है, एक अव्यक्त की उपासना करना, अव्यक्त जब हमारा संबंध ही व्यक्त को लेकर है। हम इस दुनिया में भी देखते हैं, अगर हम कह दें हमारी माँ तो अव्यक्त है, हमारे पिता अव्यक्त है, हमारा प्रेमी अव्यक्त है, हमारा पति अव्यक्त है, शरीर नहीं है, ऐसे ही है, बस ऐसे ही प्यार करो, ऐसे ही सेवा करो, कैसे होगा? हम उसका रूप देखेंगे तभी तो सेवा होगी, तभी तो उसे प्रेम करेंगे, तभी तो एक संबंध होगा। रूप ही नहीं है तो संबंध भी कहाँ हो पाएगा? तो वहां सिर्फ ऐश्वर्य ज्ञान होगा, प्रेम होगा नहीं, सेवा होगी नहीं, हृदय ठंडक प्राप्त नहीं करेगा, शीतल नहीं होगा। भक्त ये बात जानते हैं, भक्तों को तो भगवान का ऐश्वर्य नहीं लुभाता है। शुरुआत में वो बेशक भगवान के ऐश्वर्य को सुनकर भगवान के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि ये तो बस प्रेम के ही विषय हैं, इनसे तो बस प्रेम ही करते रहो। अगर किसी को किसी से प्रेम करना है तो वो भगवान है, और वो तो बाहें पसारे खड़े हुए हैं कि हे भक्त आ जाओ, मेरे हृदय से लग जाओ। भगवान कहते हैं मेरे पास देने के लिए क्या है, लेकिन तुम मुझे इतना प्यार करते हो, चलो मैंने तुम्हें अपना आलिंगन ही दे दिया जो अतिशय दुर्लभ है। भक्त तो कहता है नहीं प्रभु, आपके चरण ही मुझे चाहिए, आपके चरणों की सेवा दे दीजिए। मात्र चरण नहीं चाहिए, चरणों की सेवा दीजिए, चरणों के माधुर्य के आस्वादन में मेरा मन रूपी भ्रमर हमेशा मत रहे, मेरा मन रूपी भ्रमर आपके चरण रूपी कमल की शरण ग्रहण करता रहे, वहीं पड़ा रहे, मत रहे, बाहर की तरफ कभी भी जाने की कोई इच्छा मेरे हृदय में अपना सिर ना उठाए। तो मुझे किस चीज का भय जब आप हैं, क्योंकि आप तो हमारे स्वामी हैं ना। तो भगवान है भक्तों के स्वामी, स्वामी है तो फिर आश्रित को किस चीज की चिंता है? भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे, उनके चरणारविंद की शरणागति लेकर के तो फिर अभय ही अभय प्राप्त होता है, निर्भयता प्राप्त हो जाती है, डर नहीं लगता है, क्योंकि वो है ना, वो है हमारे साथ, हृदय में बैठे हैं, क्योंकि भक्तों के हृदय में उनको बहुत आराम मिलता है, तो भक्त का हृदय वो नहीं छोड़ते हैं कभी भी, तो हृदय में भी बैठे हैं, कथा के रूप में कान में जा रहे हैं, नाम के रूप में जुबान में नृत्य कर रहे हैं, हृदय में बैठे हैं, कान में जा रहे हैं, जुबान पर नृत्य कर रहे हैं, और श्री कृष्ण प्रसाद के रूप में हमारे उदर में भी जा रहे हैं। तो ऐसे हमारे स्वामी हैं, तो स्वामी ही देखभाल करता है अपने आश्रित जन की, इसीलिए तो आश्रय ग्रहण करना होता है, क्योंकि स्वामी देखेंगे हम क्यों देखें, हमारा क्या होगा, हम कैसे रहेंगे, कब तक रहेंगे, कैसे जिएंगे, कैसे मरेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, किस हाल में रहेंगे, अजी हम क्यों सोचें? तो फिर हम क्या सोचें, हमारे पास भी तो मन है, हमें तो कुछ सोचना

0: होगा। हाँ ना, हम सोचेंगे तो क्या सोचेंगे? हम सोचेंगे उनके रूप माधुरी के बारे में, उनकी लीला माधुरी का चिंतन करेंगे, उनके प्रेम माधुरी में डूब जाएंगे, उनके वेणु माधुरी का चिंतन करेंगे, हम उनकी कथाओं का चिंतन करेंगे, हम उनका भजन करेंगे, हम उन्हें प्रसन्न करेंगे। बस हम और कुछ नहीं चाहते, वो हमारे स्वामी और हम उनके दास अनुदास, दास भी नहीं दास अनुदास। तो भगवान भक्तों के स्वामी हैं, कितनी बड़ी बात है ना। भक्ति वशा जनार्दन, कहा भी गया है भगवान भक्ति के वश में है, भक्ति वशा पुरुषः, भाव वश जनार्दन। भाव और भक्ति, भक्ति से ही भाव उत्पन्न होते हैं। भावुक रसिक संत के ही भगवान स्वामी हैं। तो बहुत ही सुंदर बात है ये कि भगवान भक्तों के स्वामी हैं। भक्त अपना सब कुछ भगवान पर न्योछावर कर देता है, क्योंकि भगवान के अलावा उसका अपना कुछ होता भी नहीं है। अपने शरीर को भी वो अपना नहीं मानता है, ये भगवान द्वारा प्रदत्त है, भगवान द्वारा पाला जा रहा है, भगवान ही हमारे अभीष्ट हैं, भगवान ही हमारे प्राप्य हैं, सेव्य हैं। और वो स्वामी मैं दासा, प्रभु जी तुम स्वामी मैं दासा। तो हमारे वो स्वामी हैं, स्वामी हैं। स्वामी के होते हुए किस चीज की फिक्र है? स्वामी के होते हुए हम क्यों सोचें कि हम कैसे उन्हें प्राप्त करेंगे? ये तो वो सोचेंगे कि हम उन्हें कैसे प्राप्त करेंगे, है ना। उन्होंने तो कहा है गीता में, ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्तिते। इतनी बड़ी बात कह दी, अरे भाई जो मेरी तरफ मुड़ते हैं उन्हें मैं बुद्धि योग देता हूं। स्मृति विस्मृति सब मुझसे उत्पन्न होती है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में रह रहा हूँ, भक्तों के हृदय में विशेष रूप से रह रहा हूँ। तो सब कुछ मुझी से प्रकट है, मुझी से स्मृति है, मुझी से ज्ञान है, मुझी से विस्मृति है, सब कुछ मुझी से है। तो फिर हम क्यों सोचें कि वो हमें मरते समय याद आएंगे कि नहीं आएंगे? हे प्रभु, ये आप सोचो कि आप कैसे हमें याद आओगे? आप तो हमारे स्वामी हैं। इस देह का चिंतन हम क्यों करें? हम तो आपके रूप का चिंतन करेंगे, हम तो आपकी सेवा का चिंतन करेंगे, हमेशा सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर के सुबह तक, दिन से लेकर शाम तक, शाम से लेकर के फिर अगले दिन तक, हम तो आपका चिंतन करेंगे। तो आप सोचो ना, ये तो आपके सोचने का विषय है कि आप हमें कैसे याद आओगे, क्योंकि आपने गीता में कहा स्मृति विस्मृति मुझसे आती है। तो हम तो हमेशा बस आप ही का चिंतन करें, ये हमें करना है और कुछ नहीं। हम आपको लेकर रहेंगे, आपके संबंध को लेकर रहेंगे, आपसे जिनका संबंध है उनसे प्रेम करेंगे, आपसे जिनका संबंध नहीं है उनसे प्रेम नहीं कर पाएंगे, उनकी उपेक्षा ही होगी, द्वेष नहीं होगा, क्योंकि जो भगवान से प्रेम करता है वो द्वेष किसी से कर नहीं सकता है, क्योंकि इतने महा रस को वो धारण करता है अपने हृदय में, वहां द्वेष रूपी कुरस वहां आ नहीं सकता। नफरत, ईर्ष्या, ये सब आ नहीं सकती है। तो मेरे प्यारे प्रभु, आप हमारे स्वामी हैं, यही सबसे बड़ा सत्य है। तो ये भगवान ज्ञानियों के आत्मा है, यही भगवान भक्तों के स्वामी है। और जो कर्मकांडी है वो, उनके लिए वो क्या है जानेंगे हम। सुनते रहिए समर्पण।
1: आप सुन रहे हैं कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम समर्पण। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इन्फो नंबर्स पर 9350530528, 9811256747 और 9818451411। आप अपने प्रश्न हमें लिखकर भेजिए या रिकॉर्ड कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9193278889। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारी वेबसाइट www.krishnapremdharatrust.com।
0: कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेमधारा, और हम चर्चा कर रहे हैं बहुत ही सुंदर श्लोक पर

सुखदेव गोस्वामी जी श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं, स एष आत्मात्म वदामधीश्वर स्त्री मयो धर्ममय तपोमय गत व्यलीकई रज शंकरादि वितर्क्य लिंगो भगवान प्रसीदताम। तो हमने जाना कि भगवान ज्ञानियों के आत्मा हैं तो भक्तों के स्वामी हैं, और कर्मकांडियों के लिए वेद मूर्ति हैं, है ना। देखिए, योगी ज्ञानी परमात्मा में लीन होना चाहते हैं, योगी परमात्मा में लीन होना चाहते हैं, ज्ञानी जो है भगवान की निर्विशेष ज्योति में लीन होना चाहते हैं, तो भगवान ही उपास्य हैं एक तरीके से। और कर्मकांडी जो हैं इतने यज्ञ करते हैं वेदों से, विभिन्न प्रकार के कर्मकांड रूपी यज्ञ में उनकी आसक्ति होती है, वेदों को मानते हैं और वेदों की आलंकारिक भाषा के प्रति वो अतिशय आकृष्ट होते हैं। वो भगवान के विग्रह को नहीं मानते हैं, लेकिन तो भी भगवान ही वेद मूर्ति हैं। अगर भगवान ना हो तो वेद भी ना हो। वेद का अर्थ होता है नॉलेज, ज्ञान। वेद बताते हैं भगवान के बारे में, लेकिन भगवान के बारे में जिस तरीके से बताते हैं वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, रहस्यमय तरीका है, बहुत ही गुप्त रूप में वहां भक्ति छिपी है। तो कर्मकांडी समझ नहीं पाते हैं वहां छिपी हुई भक्ति को, तो वो कर्मकांड करते रहते हैं। वेदों का आशय लेकर के विभिन्न प्रकार के यज्ञ करते हैं स्वर्ग आदि धाम को पाने के लिए। तो वो जो वेद मूर्ति है वो कौन है? सुखदेव जी कह रहे हैं, हे श्री कृष्ण, वो आप हैं। धार्मिकों के लिए धर्म मूर्ति भगवान है, है ना। जो धार्मिक हैं वो अपने धर्म को लेकर चलते हैं। हम बड़े धार्मिक हैं, हम बड़े सदाचारी हैं, तो ये सब जो धर्म मूर्ति है यानी धार्मिकों के लिए उपास्य उनका धर्म है, तो वो धर्म मूर्ति भी भगवान है, श्री कृष्ण ही। और तपस्वियों का तप स्वरूप भी भगवान है, है ना। तो यहां एक बहुत बड़ी बात बता रहे हैं इस श्लोक में सुखदेव जी कि ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े देवता भी अपने शुद्ध हृदय से उनके स्वरूप का चिंतन करते हैं और आश्चर्यचकित होकर देखते रहते हैं। बात भी सही है भाई, ब्रह्मा जी जब भगवान की लीलाओं को देखते हैं तो क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं, प्रभु इस संसार में और संसार के पार भी एकमात्र आप ही स्तुति करने योग्य हैं। नौमिड्य ते अभ्रव पुषे तड़े दंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्ये मृदुपदे पशुपांग जाय। श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में ही ब्रह्मा जी ने जब भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए हैं, जब उन्होंने सारे गोप ग्वालों को, गैया बछड़ों को चुरा लिया था, तो उसके बाद उन्होंने देखा कि अरे, मैं जिन्हें चुरा के ले गया वो तो अभी भी यहीं पर ही हैं। अरे, सारे सखा यहीं पर हैं और सारे गैया बछड़े सब तो यहीं पर हैं। फिर जाके देखा, अरे ये यहाँ भी है। फिर आके देखा ब्रज में, यहाँ भी है। तब वो समझ गए ये तो ठाकुर जी ही हैं। तब उन्होंने कहा, आप ही एकमात्र स्तुति करने योग्य हैं प्रभु, मैं तो बस आपके चरण कमलों पर न्योछावर हूं, मैं कुछ जानना ही नहीं चाहता। आप स्वयं प्रकाश हैं, आपका ये जो विग्रह है वो भक्तजनों की लालसा पूर्ण करने वाला है, और आप जो मुझे अपना दर्शन दे रहे हैं ये आपका साक्षात अनुग्रह है मुझ पर। मुझे अनुग्रहित करने के लिए आपने अपने इस रूप को मेरे सामने प्रकट किया है। कौन कहता है कि आपका ये रूप पंचभूतों की रचना है, है ना, कौन कहता है? क्योंकि देखिए, श्रीमद् भागवतम में ही 14वें अध्याय में, दशम स्कंद के 14वें अध्याय में ये बात कही है। किन्होंने? ब्रह्मा जी ने। अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमस्य को अपेकी।

ये पंचभूतों का बना हुआ आपका शरीर नहीं है, कौन कहता है? तो ऐसे कई ज्ञानी हैं जो कहते हैं भगवान का शरीर तो पांच भूतों का बना हुआ है, वो यहाँ पांच भूतों का शरीर लेकर आते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। लेकिन ब्रह्मा जी जो सारे तत्व को जानते हैं, भगवान के कृपा पात्र भक्त हैं, वो कहते हैं ये तो अप्राकृत है, शुद्ध सत्वमय शरीर है आपका, मैं या कोई और समाधि लगाकर कितनी तपस्या क्यों ना कर ले, आपके सच्चिदानंद विग्रह की महिमा नहीं जान सकता। प्रभु आपकी महिमा कौन जान सकता है आपके भक्तों के अलावा? अरे जो लोग ज्ञान का प्रयत्न नहीं करते हैं, अपने स्थान में ही रहकर केवल सत्संग करते हैं और आपके प्रेमी संत भक्तों के द्वारा गाई हुई आपकी लीला कथा का जो श्रवण करते हैं, या उन लोगों के पास रहने से अपने आप उन्हें वो सुनने को मिलती है, शरीर वाणी मन से अतिशय दीन होकर जो उसे सुनते हैं, यहाँ तक कि उस कथा को ही अपना जीवन बना लेते हैं, उसके बिना वो जी ही नहीं सकते, प्रभु अगर कोई आप पर विजय प्राप्त कर सकता है ना, तो बस ऐसे भक्त ही अपने प्रेम के द्वारा आप पर विजय प्राप्त करते हैं, आप उनके प्रेम के अधीन हो जाते हैं, है ना। तो ब्रह्मा जी भी देखिए भगवान को जानने का ही प्रयास करते रहते हैं। कहते हैं देखिए, जिन समर्थ लोगों ने अनेक जन्मों तक परिश्रम करके पृथ्वी का एक एक परमाणु या आकाश के हिमकण अर्थात ओस की बूंदों को या उनमें चमकने वाले नक्षत्र और तारों तक को गिन डाला है, गिन सकता है, पर तो भी भला कोई ऐसा कौन ही हो सकता है जो आपके इस स्वरूप के यानी सगुण सविशेष साकार स्वरूप के अनंत गुणों को गिन सके। आपकी महिमा का ज्ञान अतिशय अतिशय अतिशय कठिन है, और मैं तो बिल्कुल ही नहीं जान सकता प्रभु, क्योंकि मैं तो रजोगुण से उत्पन्न हुआ हूं, मैं तो आपके स्वरूप को कभी नहीं जान सकता, इसीलिए तो मैं अपने आप को आपसे अलग संसार का स्वामी मान बैठा था, मैं अजन्मा जगत करता हूं यही सोचकर मैं अहंकार से युक्त हो गया था कि ये जगत मेरे अधीन है, पर आज मुझे पता चल गया, क्या पता चल गया कि हे मेरे स्वामी प्रकृति मह तत्व अहंकार आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी रूपी आवरणों से घिरा हुआ ये ब्रह्मांड ही मेरा शरीर है, और आपके एक एक रोम के छिद्र से ऐसे ऐसे तो अगणित ब्रह्मांड उसी प्रकार उड़ते पड़ते रहते हैं जैसे झरोखों की जाली में से आने वाली सूर्य की किरणों में धूल के छोटे छोटे कण उड़ते दिखाई देते हैं। कहाँ अपने माप से 3.5 हाथ का शरीर वाला अत्यंत क्षुद्र मैं, और कहाँ आप प्रभु, आपकी अनंत अनंत अनंत महिमा, अनंत महिमा। तो ऐसे भगवान को नमस्कार कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी, है ना। और ऐसे ही महादेव भी चकित रहते हैं भगवान की लीला देखते हुए। महादेव क्या क्या रूप बना करके भगवान की लीलाओं में अपनी भागीदारी देते हैं, उनका सहयोग करते हैं। महादेव भी श्री कृष्ण के श्री राम के परम भक्त हैं कि नहीं। तो ऐसे बड़े बड़े देवता अपने शुद्ध हृदय से भी हे प्रभु आपके स्वरूप का चिंतन करते रहते हैं और आपकी लीलाओं को आश्चर्यचकित होकर देखते रहते हैं, आश्चर्यचकित होकर के। तो ऐसे आप हैं, तो हे प्रभु मैं आपकी सृष्टि लीला के बारे में बताने जा रहा हूं परीक्षित जी को, आपकी महिमा के बारे में बताने जा रहा हूं मैं भला कहां, जबकि ब्रह्मा जी महादेव जी भी सिर्फ आश्चर्यचकित ही हो जाते हैं चिंतन करते करते, आपको देखते देखते, आपकी लीला को देखते देखते। और आपने मुझे अवसर प्रदान किया है कि मैं आपके बारे में परीक्षित जी को बताऊं, जबकि परीक्षित जी स्वयं आपके बहुत बड़े भक्त हैं, तो इससे लगता है आप मुझ पर अतिशय अतिशय कृपा की वर्षा कर रहे हैं, अपने अनुग्रह की वर्षा कर रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर स्तुति कर रहे हैं यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी, और इन्हीं स्तुतियों पर चर्चा करेंगे हम। सुनते रहिए समर्पण, और इसी के साथ अभाग्या दीजिए प्रेम धारा को, कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार।

नमस्कार, प्रस्तुत हैं अभी तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सारांग में सीजी सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए से के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी। सरकार ने मूल्य स्थितिकरण बफर के लिए प्याज की कीमत मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। महाराष्ट्र शिक्षा पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले में पुलिस ने उत्तर प्रदेश के आगरा के एक प्रिंटिंग प्रेस से 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। सरकार ने व्यापक पायरेसी की खबरों के बीच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्में और OTT कंटेंट के खिलाफ तत्कालीन कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामनेई के 6 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार यात्रा तेहरान से शुरू हुई। ईरान के दिवंगत नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू चल रही है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में मोरक्को ने कनाडा को 3-0 से और फ्रांस ने पेरेगो को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। लंदन में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में बेल्जियम की एलिस मार्टिन्स ने कल महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में कजाकिस्तान की एलिना रायबाकिना को हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह पक्की कर ली है। 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के दूसरे मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराया और ICC महिला T20 वर्ल्ड कप का फाइनल आज लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। तो ये थे अभी तक के मुख्य समाचार।

हैं हमेशा हर पल, और बिल्कुल आपके एंटरटेनमेंट का खास ख्याल रखते हैं। आज है 5 जुलाई और आज आपके साथ जुड़ चुका हूं मैं, यानी कि आशुतोष, आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। कनेक्ट रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए आज आपके इस बहुत ही अमेजिंग मौसम को और भी कमाल का बनाने वाले अमेजिंग गानों के साथ, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। स्टे ट्यून्ड और सुनते रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर।

की अपडेट देंगे आपको। फिलहाल जो मौसम है उसके बारे में आपसे कुछ बात कर लें। बहुत ह्यूमिड मौसम हो रहा है इसलिए बहुत ज़्यादा आपको परेशानी भी हो रही होगी इस मौसम में, लेकिन क्या करें, अभी बारिश का मौसम भी आने वाला है, मानसून भी बस कुछ ही पलों में शायद दिल्ली में दस्तक दे दे, लेकिन फिलहाल तो अभी बादल आते हैं, लेकिन बारिश कल थोड़ी बहुत हुई, लेकिन अब देखते हैं। आज भी उम्मीद तो पूरी पूरी है। सूर्योदय आज हो चुका है 5:28 पर और सूर्यास्त होगा 7:23 पर, और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है आज वो 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है और मिनिमम 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास। स्टे ट्यून्ड, और क्योंकि आज है संडे 5 जुलाई और आज के दिन क्या कुछ हुआ था वो भी हम आपको बताते चलें। 1950 की बात करें तो नए कानून के तहत सभी यहूदियों को इज़राइल में रहने की अनुमति दी गई थी। 1954 में BBC ने अपने पहले TV समाचार बुलेटिन का प्रसारण किया था आज के दिन। और 1996 की बात करें तो जेफ बेजोस ने ई कॉमर्स वेबसाइट अमेजोन की स्थापना की थी आज के दिन। 1998 में पीट सैम्प्रास ने 5वीं बार विंबलडन का एकल खिताब जीता था। 1999 की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा तालिबान पर प्रतिबंध की घोषणा की गई थी। और 2004 में ग्रीस ने यूरो कप 2004 का फुटबॉल प्रतियोगिता जीत का इतिहास रच दिया था। और साथ ही साथ 2007 की बात करें तो ईरान ने अपने विवादास्मक परमाणु मुद्दे को सुलझाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अधिकारियों उसको वार्ता के लिए आमंत्रित किया था आज के दिन। ये तो थी आज के दिन से जुड़ी कुछ अपडेट्स। फिलहाल आप क्या कुछ कर रहे हैं फिलहाल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं 9868107070। प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग टेलीजेंस यार, आपके साथ हूँ मैं यानी कि आशुतोष, और फिलहाल एक और सॉन्ग के साथ शुरुआत करते हैं आपके लिए। स्टे ट्यून्ड और संडे को ऐसे एंजॉय करते रहिए।

बिल्कुल जी, हम भी जोगी आपके हो चुके हैं और संडे को आपका बॉड भी बेहतरीन बनाने वाले हैं। फिलहाल अगर आप उठे नहीं हैं अब तक तो कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। आपको बिल्कुल धीरे धीरे हम चाय की चुस्की के साथ उठा लेंगे और बहुत सारी खबरें आपके लिए हम आज के लिए लेकर आए हैं।

बिल्कुल, और आप मिलते हैं ना तो बिल्कुल एक खुशी सी दौड़ होती है हमारे दिलों में। और फिलहाल आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो पर गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, और आज हम स्मरण कर रहे हैं एक ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी को और कुशल प्रशासक जो आधुनिक बिहार के शिल्पकार थे। मैं बात कर रहा हूँ बिहार विभूति डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह जी की, और आज उनकी पुण्यतिथि है। 18 जून 1887 को बिहार के पोईआवा गाँव में उनका जन्म हुआ था, और शिक्षा, वकालत और अध्यापन जैसे प्रतिष्ठित क्षेत्रों को छोड़कर देश सेवा का मार्ग उन्होंने चुना, और महात्मा गांधी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन को सक्रिय भूमिका निभाई, और साथ ही साथ बात करें तो कई बार वो जेल भी गए लेकिन राष्ट्र सेवा के संकल्प से कभी पीछे हटे नहीं वो। और आज़ादी के बाद वे बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री बने, और उन्होंने राज्य के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत किया, श्रमिकों के अधिकार की रक्षा की और ऐतिहासिक नीतियां बनाई और कृषि सुधारों को नई दिशा दी। पूसा कृषि अनुसंधान केंद्र के विकास से लेकर आधुनिक बिहार की नींव रखने तक उनका योगदान आज भी प्रेरणा देता है हमें, और राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने उनकी प्रशासनिक क्षमता की मुक्त कंठ से सराहना की थी। और बिल्कुल वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनकी संगठन शक्ति और समर्पण के प्रशंसक भी थे। और इस बात करें तो अनुग्रह बाबू का एक विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है कि मुझे अपनी चिंता नहीं है बल्कि मुझे देश के लिए चिंता है। और आज के दिन 1957 को उनका निधन हुआ, लेकिन उनकी सादगी, ईमानदारी और राष्ट्रभक्ति और जनसेवा की विरासत आज भी हमें प्रेरित करती है। बिल्कुल आज उनकी पुण्यतिथि पर हम भी देश और समाज के प्रति उनके दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने का संकल्प लेते हैं और नमन करते हैं उनको। और बिहार विभूति डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह जी को आज हम नमन कर रहे हैं उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर। फिलहाल आप सुनते रहिए गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर।

वेलकम बैक, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में। और हर महान फिल्म के पीछे एक दूरदर्शी सोच होती है, और भारतीय सिनेमा की उस सोच को आकार देने वाले महान व्यक्तित्व थे बीएन सरकार। आज हम भारतीय सिनेमा के महान निर्माता, न्यू थिएटर्स के संस्थापक और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित बीरेंद्र नाथ सरकार की जयंती के अवसर पर उन्हें याद कर रहे हैं। और 1909 में अविभाजित बंगाल में जन्मे बीएन सरकार ने लंदन विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, और लेकिन नियति ने उन्हें निर्माण की एक अलग दुनिया में बुलाया, और भारतीय सिनेमा की जो दुनिया थी उसको एक अलग ही छाप उन्होंने छोड़ी। इसके ऊपर उन्होंने कोलकाता में चित्रा न्यू सिनेमा जैसे सिनेमाघरों की स्थापना की, और फिर न्यू थिएटर्स लिमिटेड की नींव रखी, और यही संस्थान आगे चलकर भारतीय सिनेमा की सबसे प्रतिष्ठित फिल्म निर्माण कंपनियों में शामिल हुई। बीएन सरकार ने लगभग 150 से अधिक फिल्मों का निर्माण किया, जिसमें देवदास, स्ट्रीट सिंगर, विद्यापति, चंडीदास, प्रेसिडेंट, मुक्ति और बड़ी दीदी जैसी फिल्मों ने भारतीय सिनेमा को नई ऊंचाई दी। और उनकी फिल्मों में साहित्य, संगीत, संवेदना, सामाजिक सरोकारों का अद्भुत संगम दिखाई देता है। यही नहीं, केएल सहगल, बिमल रॉय, पीसी बरुआ, नितिन बोस, पंकज मलिक और अनेक महान कलाकारों को मंच देने का श्रेय भी बीएन सरकार को ही जाता है। उन्होंने भारतीय फिल्म में पार्श्व गायक और उच्च तकनीकी गुणवत्ता को नई ऊंचाई तक पहुंचाया, और भारतीय सिनेमा में उनके अमूल्य योगदान के लिए उन्हें 1970 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और 1972 में पद्म भूषण से भी सम्मानित उनको किया गया था। 28 नवंबर 1980 को वे इस दुनिया से चले गए, लेकिन न्यू थिएटर्स के माध्यम से उन्होंने भारतीय सिनेमा को जो मजबूत नींव दी, वो आज भी हर फिल्म प्रेमी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और बीएन सरकार केवल फिल्म निर्माता ही नहीं थे, बल्कि भारतीय सिनेमा के एक ऐसे दूरदर्शी निर्माता थे जिन्होंने सपनों को पर्दों पर उतार कर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वर्णिम विरासत छोड़ दी। तो आज जो हम सिनेमा देखते हैं उसकी नींव कहीं ना कहीं उसी वक्त पड़ी थी जब बीएन सरकार ने यह सपना देखा और इस सपने को सच किया फिल्म बनाकर, और कई सारी फिल्में बनाई, और उन्हीं की फिल्म से एक गीत हम निकाल रहे हैं, फिल्म डॉक्टर से पंकज मलिक जी की आवाज में। आइए सुनते हैं इसको।

महाराज आई बहार। आज फूलों का बुलबुल के बिया होने को है, आज फूलों का बुलबुल के बिया होने को है आज।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
4: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
3: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
5: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
6: ठीक है,
5: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा था इनके नाम है, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
4: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
3: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
7: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
3: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
4: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
3: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
4: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
3: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
4: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
3: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
4: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

एब्सोल्युटली आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग डियर एनसीआर आकाशवाणी 92.6 पर और मैं हूं आशुतोष आपके साथ और फिलहाल आज है 5 जुलाई और 5 जुलाई को क्या कुछ अपडेटेड है आपके लिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेकर आए एंटरटेनमेंट के साथ में। और बिल्कुल पानी की लहरों पर जब भी कोई इतिहास लिखता है तो उसकी गूंज पीढ़ियों तक सुनाई देती है और आज जयंती है भारत के महान तैराक और एशियाई खेलों के पहले स्वर्णिम नायकों में से एक सचिन नाग की। और साल 1920 में वाराणसी में जन्मे सचिन नाग ने उस दौर में तैराकी में भारत का नाम रोशन किया और जब खेल सुविधाएं बेहद सीमित हुआ करती थी, लेकिन उनकी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास ने उन्हें भारतीय खेल इतिहास का एक अमर सितारा बना दिया। 1951 में नई दिल्ली में आयोजित प्रथम एशियाई खेलों में सचिन नाग ने 100 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया था और उस उपलब्धि इसलिए भी विशेष है क्योंकि आज तक कोई भी भारतीय तैराक एशियाई खेलों में इस स्वर्ण स्पर्धा में स्वर्ण पदक नहीं जीत सका है। और उस ऐतिहासिक जीत पर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी स्वयं उनके गले में स्वर्ण पदक पहनाकर उनका सम्मान किया था। और यही नहीं, सचिन नाग ने उसी एशियाई खेलों में 2 कांस्य पदक भी अपने नाम किए थे और 1948 और 1952 में ओलंपिक खेलों के में भारतीय वाटर पोलो टीम के वे सदस्य भी रहे थे। 1948 के लंदन ओलंपिक्स में चिली के विरुद्ध भारत की ऐतिहासिक जीत में उनके 4 गोल आज भी याद किए जाते हैं और उनके खेल जीवन और योगदान को सम्मानित करते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2020 में मरणोपरांत उनको ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया। 1987 को सचिन नाग इस दुनिया से बिल्कुल हमें छोड़कर चले गए, लेकिन भारतीय तैराकी के इतिहास में उनका नाम सदैव स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। और इस महान खिलाड़ी की जयंती पर हम उनके संघर्ष, समर्पण और उत्कृष्टता से प्रेरणा लेकर उनके सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयासरत और संकल्प लेते हैं। हमारे खिलाड़ी बिल्कुल लगातार ऐसे ही करते हैं और ऐसी मोटिवेशन के साथ लगातार जीते। फिलहाल आप भी कनेक्ट रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर आकाशवाणी 92.6 पर। फिलहाल एक और ट्रैक खास उन्हीं को ध्यान में रखते हुए, उन्हीं से इंस्पिरेशन के बाद हम ये वाला ट्रैक आपके लिए खास चला रहे हैं। 7:41 और 58 सेकेंड सोचेंगे, स्टे ट्यून्ड।

बिल्कुल, और सपनों की कीमत पूंजी से नहीं बल्कि हौसले और सही फैसलों से तय होती है। बिल्कुल, आज हम याद कर रहे हैं भारत के प्रसिद्ध निवेशक, उद्योगपति और शेयर बाजार की दुनिया के बिग बुल कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला को, उनकी जयंती के अवसर पर। 1960 में उनका जन्म हुआ था और बिल्कुल एक साधारण सी शुरुआत हुई थी और एक असाधारण सफलता में उसको उन्होंने बदल दिया। चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने महज 5,000 की पूंजी के साथ शेयर बाजार में कदम रखा और उनकी दूरदर्शिता और धैर्य और सही निवेश रणनीति ने उन्हें देश के सबसे सफल निवेशकों में शामिल कर दिया। और उनका नाम, उनका मानना था कि सफल निवेशक सबसे बड़ा मंत्र यही होता है उसकी कि वो अपनी गलतियों से सीखता है। और वे कहते थे कि निवेश करने से पहले कंपनी की गहराई से जानकारी लेना और लंबी अवधि तक दृष्टिकोण रखना बेहद ज़रूरी होता है। और बिल्कुल उन्होंने केवल निवेश ही नहीं किया बल्कि भारतीय उद्यमिता और पूंजी बाजारों पर लोगों का भरोसा भी मजबूत किया। बहुत कम लोग जानते हैं कि वे सफल निवेशक होने के साथ साथ इंग्लिश विंग्लिश, की एंड का और शमिताभ जैसी फिल्मों के निर्माता भी रहे। और बिल्कुल उनका एक जो निवेशकों के लिए एक जो एक कोट होता है वो हमेशा उनको इंस्पायर करता है कि बाजार की सबसे बाजार ही सबसे बड़ा गुरु है और बाजार में कोई भी राजा नहीं होता। और 15 अगस्त 2002 को वे इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन उनका जीवन ये हमें संदेश देता है कि सही जानकारी, धैर्य और अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ छोटे से कदम से बड़ी सफलता और कहानी बनाई जा सकती है। और वह केवल एक सफल निवेशक ही नहीं थे बल्कि करोड़ों युवाओं के लिए एक विश्वास थे कि बड़े सपनों की शुरुआत छोटे संसाधनों से भी की जा सकती है। फिलहाल आप हमारे साथ कनेक्ट रहिए और सुनते रहिए गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर।

0: सी तेरी बोली,
1: हाय
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

बिल्कुल, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। और आज है भारतीय खेल जगत के लिए एक बेहद खास दिन। आज है बर्थडे उस खिलाड़ी का जिसने अपनी मेहनत, अनुशासन और अदम्य इच्छा शक्ति से बैडमिंटन की दुनिया में भारत का परचम पूरी शान से लहराया है। हम बात कर रहे हैं भारतीय स्टार शटलर पीवी सिंधु की। आज उनको हम हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं पूरी रेनबो इंडिया की फैमिली की ओर से। और 1995 में उनका जन्म हुआ था हैदराबाद में, और बिल्कुल एक ऐसे परिवार में वो पली बड़ी जहाँ पर खेल बिल्कुल उनका जीवन का हिस्सा था। माता पिता दोनों ही उनके राष्ट्रीय स्तर के वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं, और बिल्कुल लेकिन उन्होंने बैडमिंटन को अपनी धड़कन बनाया। और महज 8 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने रैकेट थाम लिया और पुलेला गोपीचंद की एकेडमी में कड़ी मेहनत से शुरुआत की। और हर सुबह सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र तय करना और अभ्यास के लिए पहुँचना और अपने लक्ष्य से कभी ना भटकना, यही समर्पण आगे चलकर उन्हें विश्व मंच का सितारा बिल्कुल बना गया। और साल 2013 की बात करें तो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया, और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2016 में रियो ओलंपिक्स में सिंधु ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया और ओलंपिक्स में रजत जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी, और पूरे देश उनकी इस उपलब्धि के लिए गर्व से झूम उठा था। और इसके बाद टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में उन्होंने कांस्य पदक जीतकर एक और इतिहास रचा, और वो लगातार 2 ओलंपिक्स में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई। और सिर्फ ओलंपिक ही नहीं, 2019 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर उन्होंने विश्व चैंपियनशिप बनने का गौरव भी हासिल किया। और इसके साथ ही 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर उन्होंने अपने शानदार करियर में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ लिया। और उनकी उपलब्धि को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, पद्मश्री और पद्मभूषण से प्रतिष्ठित सम्मानों से अलंकृत किया। और उनकी सबसे बड़ी पहचान सिर्फ उनके पदक नहीं बल्कि उनका अनुशासन है, धैर्य और कभी न हार मानने वाला जज्बा। और वो लगातार मानती है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, लगातार मेहनत और आत्मविश्वास और सीखने की ललक से मंजिल तक हम आसानी के साथ पहुंच सकते हैं। तो उनकी आज जन्मदिन के अवसर पर आज उनको हम बहुत सारा विशेष देते हैं अपने पूरे लिसनर्स की ओर से भी, हमारी ओर से भी। और इस वक्त हमारे साथ मोनिका कनेक्टेड है और सुन रही है हमारे प्रोग्राम को, और साथ ही साथ पंकज अमरावती महाराष्ट्र से इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड है, और मोहम्मद इम्तियाज सलमा बेगम भी इस वक्त जवाहर कैंप कीर्तिनगर से हमें सुन रहे हैं, और अजय झारखंड से हमें गुड मॉर्निंग भेज रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि अब गीत आएंगी आपके साथ जुड़ जाएंगी अगले घंटे में गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर के। स्टे ट्यून्ड और सुनते रहिए हमारे साथ लगातार गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आपकी वाणी आकाशवाणी, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, संडे की सुबह। और वही कहूँगी, बहुत सारी प्लानिंग है आपके पास मुझे मालूम है, लेकिन उस प्लानिंग को हम थोड़ा सा बिल्कुल परफेक्ट बनाने के लिए आपकी मदद करने आए हैं। करना क्या है आपको, सुनना है प्रोग्राम गुड मॉर्निंग इंडिया, सॉरी गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, रहना है हमारे साथ। मैं हूँ आपके साथ गीत कुंजन, और हौले हौले से टाइम बढ़ रहा है आगे, बस रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो।

जी हाँ साथियों, धीरे धीरे बहुत कुछ बदल रहा है। अगर हम बात करें मौसम की तो मौसम भी बदल रहा है, बिल्कुल बदल रहा है। मॉनसून जो है वो फाइनली एक्टिव हो गया है। ह्यूमिडिटी रहेगी इतनी कि आप स्टिकी फील करेंगे, वो हम कर ही रहे हैं। और टेम्परेचर की बात करें तो मैक्सिमम 36 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम 29, और रेन हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखें। जी हाँ, अम्ब्रेला और रेन कोट साथ लेकर चलें। और AQI की बात करें तो 121, क्वाइट अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप्स। जी हाँ, आप इन बातों को ध्यान रखकर अपनी आउटिंग प्लान कर सकते हैं।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

जी हाँ दादू, प्रोग्राम आप सुन रहे गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, और मैं हूँ आपके साथ गीत गुंजन। और एक ऐसा फेस्टिवल, चलिए उसके बारे में बात करते हैं जो कि बहुत ज़रूरी हमारी पूरी अर्थ के लिए, हमारे इंडिया के लिए। जी हाँ, हम बात करें वन महोत्सव की। ये एक ऐसा एनुअल फेस्टिवल है जिसमें जिसे पूरे इंडिया में सेलिब्रेट किया जा रहा है। और इसे कब किया जाता है?

फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई थ्रू आउट इंडिया, और बहुत सारे मूवमेंट्स निकाले जा रहे हैं, कैंपेन्स की जा रही है, जैसे एक पेड़ माँ के नाम और मेगा प्लांटेशन ड्राइव की जा रही है, और इसमें जो मेन फोकस है वो है फ्रूट बियरिंग ट्रीज, जी हाँ, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग और प्लास्टिक फ्री सराउंडिंग्स, ये बहुत ज़रूरी है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। और एक मज़े की बात और, जो ये फ्रूट बियरिंग ट्रीज़ की जो ये ड्राइव चल रही है, इसमें कई जगह आम के फेस्टिवल्स चल रहे हैं, जिसमें आप जाके वैरायटी ऑफ मैंगोज़ को आप इंजॉय कर सकते हैं।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

जी हाँ, हम भी बिल्कुल यही हैं आपके साथ। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, और आपके संडे को और इंटरेस्टिंग और फन डे बनाने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है आपको बताने के लिए। जी हाँ, त्रिवेणी कला संगम ऑडिटोरियम मंडी हाउस के पास एक वर्कशॉप हो रही है जिसका टाइमिंग है 11 बजे से लेकर 2 बजे तक, जिसकी एंट्री है बिल्कुल फ्री, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे है। और ये क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, दैट इज़ एफ्रो कैरिबियन रिदम्स। आपको क्यों जाना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे मैड्रिड बेस्ड फ्यूजन आप सुन सकते हैं, एफ्रो वेनेजुएलन प्लस एफ्रो कोलंबियन म्यूजिक, जो बहुत ही रेयर है खास तौर पे दिल्ली में। और दूसरा है मैंगो फेस्टिवल, जी हाँ, दिल्ली हाट जनकपुरी में है, जिसके टाइमिंग से 11 बजे से लेके रात के 9 बजे तक, और आज है इसका लास्ट डे, तो ज़रूर जाइए अगर आपको आम है पसंद। जी हाँ, और इसके अलावा एक और जगह है मैंगो मेला, दैट इज़ बंगाल मैंगो मेला, और यहाँ पे है हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स भी। अगर आपको मैंगो का भी शौक है और आप शॉपिंग करना चाहते हैं कुछ आर्टिस्टिक चीज़ें, तो आप जा सकते हैं यहाँ पे। यह है 1 जुलाई से 5 जुलाई, ये नहीं कि आज इसकी लास्ट डेट है, और इसके टाइमिंग्स भी हैं 11 बजे से लेके 9 बजे तक, एंट्री बिल्कुल फ्री। और इसके अलावा न्यू अर्बन अवतार आर्ट एग्जीबिशन है, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, 40 मैक्स मुला मार्ग, और ये चलेगा 14 जुलाई तक। तो कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं राउंड द कॉर्नर दिल्ली एनसीआर, तो आप जाइए और इन्जॉय करिए।

आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रोग्राम आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर गीत गुंजन के साथ। जी हाँ दोस्तों, कहीं पे भी निकलो तो जो सबसे पहली चीज़ जिसका हमसे सामना होता है वो है ट्रैफिक। तो फिर थोड़ी सी मदद कर दें आपकी। जी हाँ, मेहरौली बदरपुर रोड ये रहेगी बिजी, उसके अलावा दिल्ली गाजियाबाद कॉरिडोर, जी हाँ इसमें आपका जो ट्रैवल टाइम है वो एक घंटे तक स्ट्रेच हो सकता है। और जो नांगलोई से नजफगढ़ ट्रैफिक मूवमेंट है वो भी अफेक्टेड रहेगा। एक छोटी सी टिप ये है कि आप कहीं पे भी जाएं 30 से 40 मिनट एक्स्ट्रा मानकर चलें अगर लंबे रूट पर जा रहे हैं। और इसके अलावा अवॉइड डीबीजी रोड और रानी झांसी रोड। सबसे सेफ अगर कोई बात हम कहेंगे तो ट्रैवल इन अ मेट्रो, ऑल स्टेशंस इसके ऑपरेशनल हैं। तो अपनी जो ट्रैवल है उसको ईजी और सेफ बनाइए।

जी हाँ, कई चीज़ें बड़ी मुश्किल होती है, और ये जो हमारे लिए मुश्किल ये है कि धीरे धीरे टाइम जो है वो बीत रहा है और प्रोग्राम ख़त्म होने वाला है। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि जो घड़ी की टिक टिक है, इस घड़ी की टिक टिक के साथ आकाशवाणी रेनबो भी आपके साथ टिक टिक करता है। जी हाँ, म्यूज़िक इसका ख़त्म बिल्कुल भी नहीं होता है। एक से बढ़कर एक प्रोग्राम्स आपके लिए हैं। अगला प्रोग्राम आप सुनिएगा 9 बजे से, दिल के तराने गाने नए पुराने, और 10 बजे सुनना मत भूलिएगा वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम मैशलेस म्यूजिकार, और 11 बजे से में रहेगा प्रोग्राम पोस्ट बॉक्स 111। इसके बाद 12 बजे आप सुन सकते हैं प्ले इट कूल, और फिर 1 बजे मेरा वाला सॉन्ग। जी हाँ, और 2 बजे से में रहेगा प्रोग्राम आशियाना का। तो फिर देर किस बात की, आपको रहना है आकाशवाणी रेनबो के साथ, और मैं हूँ आपके साथ गीत गुंजन।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी,
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: एब्सोल्युटली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर दिल के तराने गाने नए पुराने। 9:01 और 40 सेकंड हो चुके हैं और बिल्कुल लेटेस्ट ट्रैक के साथ शुरू कर रहे हैं। आपका वेलकम कर रहे हैं हम जी यहाँ पर स्टूडियोज़ में, और फिलहाल आप भी संडे का एंजॉय करते रहिए हमारे साथ। हम बिल्कुल यहाँ पर लगातार नॉन स्टॉप आपके साथ जुड़े रहेंगे और लेटेस्ट ट्रैक सुनाएंगे, और उसके बाद रेट्रो का एक अमेजिंग फ्लेवर आपको मिलेगा सुनने को। स्टे ट्यून्ड, सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो आशुतोष के साथ।

आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

0: लगाए
1: अटक गया
2: क्यों
1: कोई फर्क नहीं अलबत्ता कोई फर्क नहीं अलबत्ता
3: कोई फर्क नहीं अलबत्ता कोई फर्क नहीं अलबत्ता
4: दुखी बेदुखी।

एग्जैक्टली और हम भी आपके साथ यूं ही कनेक्ट रहते हैं और आप ही के सहारे यहाँ पर पूरा घंटा आपके साथ हमने बिताया। और फिलहाल हमारे साथ मेघा सिंह इस वक्त जुड़ी हैं और राजेश जी भी इस वक्त मेरठ से कनेक्टेड हैं और साथ ही साथ पंकज अमरावती महाराष्ट्र से हमें मैसेज भेज रहे हैं और हितेंद्र दास असम से इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं और साथ ही साथ राजकुमार संतानी इस वक्त हमें सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ कनेक्ट रहने के लिए और उन तमाम लिसनर्स का जो हमारे साथ जुड़े हैं लेकिन मैसेज नहीं भेज पाए, कोई इशू नहीं है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। और फिलहाल अब मेरे चलने का वक्त हो चुका है लेकिन आकांक्षा आ चुकी हैं आपके लिए मैचलेस म्यूजिक आर लेकर। 10:02 से आप सुन पाएंगे इस प्रोग्राम को। फिलहाल आशुतोष लेता है आपसे अनुमति, स्टे ट्यून्ड, ऐसे ही सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो और संडे को एंजॉय करते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।

0: So yes, a reminder that you are tuned in to 102.6 MHz Akashwani FM Rainbow, the station of the nation, and the program's name is called The Matchless Music Hour. And for now, it's time for us to take a short break and we will be right back. Do not touch the dial.
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: Yes, this time in the monsoon, the song was about two lovers who were not able to meet despite of being in the same courtyard. Yes, so rains also make that happen, right? And you want to meet someone and it's raining, you can't step out. So yes, that they do delay a little bit of meets and but yes, of course the weather turns nicer, so then the emotion and the longing, it you know in instead of the feeling of anger, it kind of turns into the feeling of longing, and which is a beautiful emotion because it really enhances the time of wait and really helps us to have a happy hope about few things in life. And yes, time by the studio clock is 35 minutes past 10 a.m. and it's time for us to please take the last break of the show. We promise this is the last break of the show and we will be right back. So do not touch the dial.
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।

तुम ही कहो ये कोई बात है, दैट्स व्हाट किशोर कुमार वाज आस्किंग इन दिस ट्रैक व्हिच फीचर्ड आई मीन व्हिच फीचर्ड मधुबाला'स कार एंड व्हिच ब्रोक डाउन एंड शी वाज सीकिंग हेल्प फ्रॉम किशोर कुमार इन हिज गैराज एंड यस दैट वाज हाउ

0: कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111
1: नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीलम अलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। साथियों, जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारा ये कार्यक्रम मन की बात का विस्तार है। माननीय

0: प्रधानमंत्री जी ने इस बार मन की बात में हमारे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात कही है, साथ ही देश को उन्होंने प्रेरणा दी है कि हम आत्मनिर्भर तो हों, लेकिन अपनी सेनाओं के बारे में हम और अधिक जानें, उस कार्य प्रणाली को समझें, और साथ ही जो हमारे मन में हमारी सेनाओं के लिए सम्मान है, हमारे सशस्त्र बलों के लिए सम्मान है, उसे हम गाढ़ा भी करते जाएं, क्योंकि ये काम आसान तो नहीं है जो हमारे बल, हमारी सेनाएं हमारे लिए करती हैं। हमारे हर पर्व पर एक एहसान हमारे फौजियों का है, वो सीमा पर तैनात है, इसलिए हम सीमा के भीतर सुरक्षित हैं और खुश भी हैं। तो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता क्यों जरूरी है, कैसे होगी, अभी तक हमारी उपलब्धियां क्या हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल हो सकता है आपके मन में भी हो। हम इन सभी सवालों के जवाब आपको देंगे। इस समय स्टूडियो में हैं हमारे विशेषज्ञ मेजर जनरल संजय मेस्टन हैं, भारतीय थल सेना के सेवानिवृत्त अधिकारी। एयर कमोडोर डॉक्टर अश्विंदर सिंह बहल हमारे साथ हैं, वायुसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी। कमांडर विक्रमजीत सिंह हैं, नौसेना से सेवानिवृत्त अधिकारी। आपका बहुत बहुत स्वागत।
1: थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच।
2: जय हिंद।
0: जय हिंद सर। तो ये सारे सवाल जो आपके मन में होंगे साथियों, आपको इनका जवाब आज मिलेगा, बहुत रोचक तरीके से मिलेगा और बेहद साधारण सी भाषा में मिलेगा, जो आप और मैं यानी हम सिविलियन आसानी से समझ पाएंगे। लेकिन पहले मैं आपको सुनवा रही हूँ मन की बात का वो हिस्सा जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख किया है, सुनिए।
3: मेरे प्यारे देशवासियों, हाल ही में मुझे कोलकाता में नौसेना से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। वहां INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। साथियों, जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है, और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है, यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: तो सुना आपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस तरह से हमें प्रेरित किया है। आइए अब अपने सवाल हम सीधे अपने विशेषज्ञों तक लेकर जाते हैं और इनके जवाब जानते हैं। तो संजय मेस्टन सर, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, जब हम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो ये क्यों जरूरी है?
4: पहली बात धन्यवाद और जय हिंद। आपके इंट्रोडक्शन में दो मेरे को पॉइंट्स बड़े अच्छे लगे। एक, आपने बोला कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने बोला है कि लोगों को फौज के बारे में पता होना चाहिए, और दूसरा आपने ये भी बोला कि हम सिविलियन को पता होना चाहिए। तो एज अ यूनिफॉर्म पर्सन हम, मैं तीनों के बिहाफ पे बोल सकता हूँ कि सिविल और यूनिफॉर्म की बात नहीं है
0: जी,
4: आम तौर पे इट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म
0: जी,
4: क्योंकि घर वाले भी हमारे ना वो शब्द नहीं पसंद करते सिविल। एनीवे, देखिए प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सही बोला है, लोगों को भारतीय सेना के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार देश में तीन पिलर्स होते हैं, खासकर पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, इकोनॉमिक होता है और डिफेंस, ये सबसे जरूरी तीन चीजें हैं और इकोनॉमी और डिफेंस को रिलेटेड है। तो इसीलिए मैं सोचता हूँ देशवासियों को पता होना चाहिए कि सेना क्या है। अब आत्मनिर्भरता भारत क्यों जरूरी है, देखिये आपने एक और अच्छा शब्द बोला, बहुत सीधी सरल भाषा में हमें बताना चाहिए, और वही मैं सोचता हूँ। देखिए आम जनता के लिए ये पता होना चाहिए कि एक डिपेंडेंसी होती है, जैसे कोविड के टाइम में आप देखिए
0: जी सर,
4: कि जो भी घर में कोई भी फार्मर था या कोई भी इंसान, उसने घर में सब्जियां उगा रखी थी, सब कुछ उगा रखा था, तो उसको क्या है कि कोविड के दौरान कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। लेकिन अगर कोई दूसरा आदमी किसी दुकान पे, एक ही दुकान पे निर्भर है, और वो दुकान भी बंद हो जाती या वो दुकानदार बोलता है मैं नहीं दे सकता हूँ, मेरे पास स्टोर खत्म हो गया, तो आप सोचिए वो क्या हाल हो जाता है। तो ये छोटा सा मैं घरेलू एग्जांपल दे रहा हूँ। सेना में आत्मनिर्भरता इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम लड़ाई के लिए जाते हैं तो हमारे जवान और ऑफिसर्स वो इक्विपमेंट के साथ लड़ते हैं, और वो इक्विपमेंट में एक कॉन्फिडेंस भरोसा जब आता है, जब हमें पता है ये हमारे द्वारा ही बनाया गया है और हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बना है, जिस टेरेन में हम लोग रहते हैं।

0: और आज भारत सेल्फ रिलायंट देश है, जो खुद चाहे एआई हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे रॉकेट्स हो, एयरफोर्स हो या नेवी हो। तो कहने का मतलब है ये सारी चीजें एक दिखाता है कि एक कंट्री के अंदर सेल्फ रिलायंस है और एक पावर है। जब हमारे पास सब कुछ है तो हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, और देश में हमारी सेना को पूरा एक भरोसा होता है कि जो हमें लड़ाई के लिए चाहिए, लॉजिस्टिक से लेकर सब कुछ, वो हमें स्पेयर पार्ट से लेकर सब मिलता रहेगा। तो ये है आत्मनिर्भर भारत, और ये पिछले मैं बोलूंगा एक डिकेड के अंदर या 10 साल में इसमें बहुत तीव्रता हमने देखी है। तो छोटे से सारांश में ये है आत्मनिर्भर भारत,
1: यानी हमारे पास अपनी बनाई हुई अगर चीजें रहेंगी तो एक तो हमें भरोसा रहेगा कि हमारी जरूरत के हिसाब से है, दूसरा अगर हमें उसके कुछ पार्ट्स चाहिए तो वो हमें समय पर मिलेंगे, हमें किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो डॉक्टर अश्मिंदर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम मॉडर्न एज में वॉरफेयर्स जो है उसमें काफी बदलाव देख रहे हैं, तो आप अपने अनुभव से बताएं कि इन दिनों क्या नई तकनीक आ रही है और क्या भारत में वो उपलब्ध है या अभी भी हम उसे इंपोर्ट कर रहे हैं।
2: बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने, और जो जनरल साहब ने बताया और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, मैं उसको आगे लेके जाना चाहता हूँ। 1991 में एक पिक्चर आई थी सौदागर, उसमें एक बड़ा इंटेंस डायलॉग था राजकुमार जी का और उनके साथ दिलीप कुमार जी। तो उस डायलॉग को ऐसे शुरू करते हैं, मैं तुम्हें मारूंगा और जरूर मारूंगा, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, वो गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा
1: जी।
2: ये वो वक्त आ गया है जिसको मैं कहता हूं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इस वक्त के अंदर हम जिस तेजी से इंडिजिनाइजेशन कर रहे हैं उसका आने वाले 10 साल में बहुत फायदा होगा। आपने बताया जो युद्ध में टेक्निक्स चेंजेस आए हैं, सबसे पहला चेंज आया है कि अब जो युद्ध है वो बियॉन्ड विजुअल रेंज हो गए हैं, यानी कि आमने सामने भी फौजें नहीं आती हैं, लेकिन इतना डिस्ट्रक्शन हो जाता है कि जिससे पूरी इकोनॉमी देश की हिल जाती है। आपने रशिया यूक्रेन का युद्ध देखा, आपने ईरान का देखा, आपने देखा कि पहले तो फाइटर जहाज टैंक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, लेकिन अब ड्रोन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हुए, ना केवल लंबी दूरी से अटैक लेकिन बहुत सस्ते सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हुए भी उतनी भारी इकोनॉमिक डैमेज, रिफाइनरीज पे आग, गैस के एरियाज, प्रोडक्शन साइट जैसे रास लाफान था उसके ऊपर हमला कतर के अंदर, तो उसका देखिए 3 से 8 साल लगेंगे उसको वापस 100% प्रोडक्शन कैपेसिटी में आने के लिए, कितना बड़ा पूरे विश्व के लिए वो नुकसान है। तो ये जो छोटे छोटे सिस्टम भी है ये भी आउट ऑफ प्रोपोर्शन रिजल्ट कर सकते हैं। और एक और बड़ी अहम चीज आ जाती है आज के जमाने के अंदर, हम जब इंपोर्ट करते हैं डिफेंस इक्विपमेंट बड़ी महंगी होती है। अब देखिए हम रफाल जहाज लेना चाहते हैं 114, 3.25 लाख करोड़ के हैं ये, 3.25 लाख करोड़ के, कितना हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो $40 बिलियन के करीब चला जाएगा दूसरे देश में फ्रांस के अंदर। तो अगर हम इंडिजिनाइजेशन बढ़ाते हैं, आपको एक बड़ी अच्छी चीज मैं जनरल साहब ने जो इनकी आर्मी ने की है, 91% एम्यूनिशन जो है आज इंडिजिनाइज हो गया है, यानी कि भारत के अंदर ही प्रोड्यूस होता है 175 में से 159 डिफरेंट टाइप की एम्यूनिशन वो आज भारत के अंदर ही बनती है। और पिछले अगर हम दशक में देखें उससे पहले, तो उस दशक के अंदर हम देखते थे कि हमारी जो इंपोर्ट थी वो 70% थी बाहर से, आज 62% हम भारत के अंदर ही प्रोक्योरमेंट जो है भारत के अंदर ही बनाते हैं। 1.54 लाख करोड़ पिछले साल का था डिफेंस प्रोडक्शन, इस साल का है 1.78 लाख करोड़ डिफेंस प्रोडक्शन। हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट था 23,622 करोड़ से बढ़कर 38,424 करोड़, यानी कि 63% बढ़ गया है, और आने वाले समय में 50,000 करोड़ हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम ना केवल फॉरेन एक्सचेंज को बचा रहे हैं, हम फॉरेन एक्सचेंज बना भी रहे हैं डिफेंस एक्सपोर्ट से। और लास्ट चीज जो इस पे मैं कहना चाहता हूं कि एम्प्लॉयमेंट, सोचिए सैकड़ों आज इंडस्ट्रीज बन गई हैं, एमएसएमईज बन गई हैं, जो गवर्नमेंट की अदिति पॉलिसीज हैं, आईडेक्स पॉलिसीज हैं, या दूसरे जो प्रोत्साहन के मटेरियल हैं, या जो हम को डेवलपमेंट कर रहे हैं। आपने बताया ना प्रधानमंत्री जी कह रहे थे C295 एयरक्राफ्ट, उससे 15,000 जॉब्स बढ़े हैं, उसी तरीके से ब्रह्मस से 25,000 बढ़े हैं, दूसरे बड़े बड़े LCH प्रोजेक्ट है उससे भी 20,000-25,000 जॉब्स बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो 1,10,000 जॉब्स हमको सिर्फ 2 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं जो यूपी और तमिलनाडु है 2000

0: 2027 तक वहां पे बढ़ेंगे
1: जी।
0: तो पूरे देश के अंदर एक इकोनॉमिक रेवोल्यूशन ला सकते हैं जब हम इंडिजनाइज करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं डिफेंस इक्विपमेंट को।
1: जी, यानी हम स्वदेशी को बढ़ावा तो दे रहे हैं हर फ्रंट में, लेकिन जब हम रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण की बात करते हैं तब भी बहुत सारे फायदे उसके हैं और डिपेंडिंग इंडस्ट्रीज जो हैं उनको भी लाभ मिलता है और पूरा एक इकोसिस्टम है जो मजबूत होता है। जी, आपने फिल्म के डायलॉग से शुरुआत की थी तो मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कि आपकी पसंद का कौन सा गाना हम यहाँ श्रोताओं को सुनवाएं।
0: देखिए, बहुत अच्छा एक शब्द है, मैं चाहता हूँ कि हमारे श्रोताओं को सुनाइए।
1: जी,
0: देव सेवा पर मोहे अहे शुभ कर्मन ते कभो न टरो न डरो असो जब चाहे लरो निश्चय कर
1: अपनी जीत करूं। जी जी, हमारे स्कूल्स में ये प्रार्थना भी होती थी और हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं यही शब्द।

0: इस शब्द के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज हम इस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने की बात की और साथ ही इसके महत्व को समझने के लिए भी हमें प्रेरित किया। हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में है। अब मैं कमांडर विक्रमजीत सिंह से जानना चाहूंगी, सर आप नौसेना में स्वदेशीकरण को किस तरह से देखते हैं और क्या इसका महत्व है?
1: पहली बात तो जय हिंद आपके सारे श्रोताओं को। नौसेना मैं ये बड़े गर्व से कहना चाहूंगा, सबको बताना चाहूंगा कि नौसेना वॉज द फर्स्ट मूवर, यानी कि प्राथमिक जो कदम लिए गए वो नौसेना में लिए गए एज फार एज इंडिजनाइजेशन इज कंसर्न। देखिये हम लोग जब स्वतंत्र हुए थे, जब हमें आजादी मिली थी 47 में, तो हम लोग ऑब्वियसली एक ब्रिटिश कॉलोनी थे, तो उनके कुछ एसेट्स हमारे पास 30-35 जहाज उस टाइम भारतीय नौसेना को मिले, मोस्टली वो ब्रिटिश ओरिजिन ही जहाज थे। उधर से जो नेवी शुरू होकर आज अगर आप देखते हैं तो हमारे पास 150 से ज्यादा जहाज हैं, जिसमें से आप मान के चलिए ऑलमोस्ट 60-70% से ज्यादा हमारे जहाज इंडिजिनियसली डेवलप्ड है
0: जी।
1: तो अगर आप नेवी का रोल देखते हैं, आप हिस्ट्री देखेंगे तो कैसे हमारे एसेट्स बढ़े, मतलब 1960 में हमारे पास विक्रांत आया, पहले वो भी एक इंग्लिश ओरिजिन जहाज था
0: जी।
1: उसके बाद हमें रशियन से सपोर्ट मिलनी शुरू हुई 60 के दशक में, उन्होंने हमें सबमरीन दिए, उन्होंने हमें कोई और वेसल्स दिए, लेकिन 70 और लेट पार्ट ऑफ 70s में हमने अपना स्वदेशीकरण कार्यक्रम शुरू कर दिया था
0: जी।
1: हमने गिरी क्लास शिप्स बनाए, उदयगिरी क्लास जो थे, नीलगिरी क्लास शिप्स, लियांडर्स थे वो ब्रिटिश डिजाइन के, लेकिन वो बनाने शुरू किए। उसके बाद हमने गोदावरी क्लास शिप बनाने शुरू किए और धीरे धीरे धीरे हमारी जो डिजाइन कैपेबिलिटी है और हमारी जो इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे धीरे मच्योर होती रही कि, और आज ये हाल है कि आप हर एक 40 दिन में, आप मान के चलिए 6-7 हफ्ते में हम एक शिप लॉन्च कर रहे हैं इस स्पीड पे। और अभी आपने रिसेंटली देखा माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 शिप एक दिन पे जो कमीशन किए हैं वो अपने आप में हिस्ट्री में आई थिंक पहली बार हुआ है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि 3 बड़े जहाज, छोटे जहाजों की बात नहीं हो रही है, दूनागिरी जो एक फ्रिगेट है खुद ही 7,000 टन के करीब उसकी डिस्प्लेसमेंट, संशोधक सर्वे वेसल लार्ज वो भी 2,500-3,000 की उसकी डिस्प्लेसमेंट, अग्रे मिसाइल जो हमारा शैलो वाटर क्राफ्ट, तो इस लेवल पे हम पहुंच गए हैं। ये मैं आपको कहना चाहूंगा नीलम जी, जब हमने 1990 में जब हमने फौज ज्वाइन की थी तो सारे हमारे एसेट्स मोस्टली तो रशियन ओरिजिन थे या कुछ ब्रिटिश थे जो कि अपने लास्ट लेग ऑफ द सर्विस में थे, क्योंकि ये जो हमारे शिप्स होते हैं इसमें इसकी लाइफ करीब 25-30 साल आप मान के चलिए। लेकिन नेवी में एक और बड़ी खास चीज है कि वो सारी सर्विसेज की जो है उसका एक तरह से मिलन है या एक तरह से मिलोंजे है जिसको बोलते हैं। जैसे हमारे पास देखिए लैंड यूनिट्स भी हैं, हमारे पास एयर यूनिट्स भी हैं, हमारे पास सरफेस यूनिट्स हैं
0: जी,
1: और हमारे पास सब सरफेस यूनिट्स हैं, यानी कि हम चारों डायमेंशन में नेवी जो है वो अब देश की सेवा में और देश की हिफाजत में जुट है। तो इसमें मैक्सिमम जो इंडिजनाइजेशन आप देख रहे हैं अभी वो हमारे सरफेस यूनिट्स में बहुत इंडिजनाइजेशन एडवांस हो गई है
0: जी।
1: जबकि आजकल तो ऐसा है कि आप 60-70% के बिना तो आप एक शिप बना ही नहीं सकते, वो आपका मैंडेटरी है, आपको उतना तो इंडिजनाइजेशन कंटेंट रखना ही रखना है। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा इसी सवाल के उसमें नीलम जी, के एक शिप में बनाने के 3 मुख्य पार्ट होते हैं, हम डिवाइड कर सकते हैं उसको। एक हम कहते हैं फ्लोट, यानी शिप को तैरना होता है जरूरी, जो उसकी बॉडी होती है हल होता है। दूसरा होता है उसका मूवमेंट, यानी शिप को आपने एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना
0: जी,
1: उसके लिए आपको इंजन चाहिए, प्रोपेलर चाहिए, इत्यादि जो भी इक्विपमेंट चाहिए। और तीसरा होता है लड़ना, कि आपने मिसाइल डालने हैं, गाइडेड मिसाइल सिस्टम है, एंटी एयर कैपेबिलिटी क्या है, एंटी सबमरीन कैपेबिलिटी क्या है, तो वो सबसे मुख्य पार्ट है
0: जी।
1: क्योंकि फाइनली ये सारे वॉरशिप हैं और इनका मेन काम है लड़ना
0: जी।
1: लेकिन इन सब में आज की डेट में जो हमारा फ्लोट में हमने करीब 90% इंडिजनाइजेशन हो गया है, और फाइट में हमारी थोड़ी कैपेबिलिटी अभी इस पे काम करना अभी बाकी है।
0: चोल साम्राज्य के समय से हम अपनी नौसेना पर गर्व करते आ रहे हैं, हमारे जल सीमाओं के प्रहरी और अलग अलग हिस्से हम उसके बारे में सुनते रहते हैं। INS विक्रांत पर तो पूरे देश को गर्व है ही। आपने बताया कि किस प्रकार से स्वदेशीकरण की शुरुआत हुई और लगातार बेहतर होता जा रहा है, तो इसी मोड पर मैं आपकी पसंद का एक गाना श्रोताओं को सुनवाना चाहूंगी।
1: जी मैं चाहूंगा कि आप, ये एक गीत है फिल्म लक्ष्य का, क्योंकि हमें अपनी एकेडमी डेज के बारे में और बहुत मोटिवेट करता है। गीत है हाँ यही रास्ता है, बहुत ही मोटिवेटिंग गाना, आई एम श्योर सब लोगों को, सर को और वापस एकेडमी लेके जाएगा ये
0: जी। तो हम श्रोताओं को सुनवा रहे हैं लक्ष्य फिल्म का यही गीत।

0: आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस प्यारे से गाने के बाद पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज हम बात कर रहे हैं इस कार्यक्रम में रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के बारे में। हमारे विशेषज्ञ हैं इस समय स्टूडियो में हमारे साथ, मेजर जनरल संजय मेस्टन हैं भारतीय थल सेना से, हमारे साथ हैं एयर कमोडोर डॉक्टर अश्मिंदर सिंह बहल वायुसेना से, और कमांडर बिक्रमजीत सिंह हमारे साथ हैं नौसेना से। हमारे विशेषज्ञ हमें बता रहे हैं स्वदेशीकरण का महत्व और पिछले दिनों क्या बदलाव हुए हैं अपने अनुभव के आधार पर। तो संजय मेस्टन सर, एक बार फिर से मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आपने क्योंकि सर्विस में रहते हुए बहुत सारे देशों की यात्राएं की हैं, वहां के कार्य प्रणाली को बहुत नजदीक से आपने देखा है, समझा है, आप ये बताएं कि जब हम स्वदेशीकरण की बात करते हैं, क्या इसका एक पहलू ये भी है कि जो हमारे ब्लू प्रिंट्स हैं या जिसे हम ट्रेड सीक्रेट कहते हैं वो हम ही तक रहे, हमें साझा ना करने पड़े किसी के साथ, और जब वो सिर्फ हम तक रहेंगे तो हम उसमें तेजी से बदलाव कर सकते हैं और हमारी क्या ताकत है उसे हम छिपा कर भी रख सकते हैं, क्या एक पहलू ये भी है इसका?
1: बिल्कुल नीलम, एक पहलू वो भी है। देखिए, पहली बात ये, एक जो भी स्वदेशीकरण है ये एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। देखिए, इकोसिस्टम में बहुत कुछ चाहिए होता है, किसी भी, चाहे एक एयरक्राफ्ट को बनाना हो, चाहे जहाज को बनाना पड़े, चाहे मिसाइल को बनाना पड़े, चाहे ड्रोन को बनाना पड़े, उसमें बहुत कुछ चीजें हैं। एक स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है, एक बैटरी चाहिए, पावर, फिर चाहिए आपको, सबसे बड़ी चीज जो आज की तारीख में चाहिए है वो है आपको चाहिए है ये सेमीकंडक्टर, वो स्टार्ट पॉइंट हो जाता है, ब्रेन हो जाता है, जो चिप्स होते हैं। और ये एक खुद बहुत बड़ा, इसमें मैं बोलूंगा कि ये एक इकोसिस्टम है। आज कोई भी देश विश्व में ये टेक्नोलॉजी पूरी नहीं है कि पूरा एक सेमीकंडक्टर चिप वहां पर बन जाए। उदाहरण के तौर पे जो डिजाइनिंग होती है AI, ये जो चिप डिजाइन, ये स्टार्ट कहाँ होते हैं? अमेरिका में। मैन्युफैक्चर कहाँ होते हैं? ताइवान में। उसके पास जो ट्रांजिस्टर लगते हैं वो कहाँ होते हैं? वो होते हैं साउथ कोरिया में। जो चिप की काटना पड़ता है, जो लिथोग्राफी मशीन होती है, वो कहाँ से आता है? नीदरलैंड से। तो ये आप देखिए कितनी इको डिपेंडेंट सिस्टम है। और आपने हाल ही में सुना होगा कि जो एंथ्रोपिक है, ये जो अभी AI का सिस्टम है यूनाइटेड स्टेट्स का, इन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि उसमें फेबल 5 और माइथो 5 वो किसी भी देश को नहीं दिया जाएगा, सिर्फ उनके 5-6 देश हैं। तो कुछ जो ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं वो हर कंट्री अपने देश में रखता है और वो हर देश को अधिकार है, और लेकिन कुछ चीजें जो ओपन डोमेन में है वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा और उसमें हम एक्सपोर्ट करेंगे। डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जो पहले ही बात होती थी ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स, उनको अभी मिक्स करके 7 DPS यूज कर दिया है। लेकिन जो ये आत्मनिर्भर भारत में सबसे बड़ी चीज आई है कि हमने प्राइवेट इंडस्ट्रीज को भी शामिल कर दिया है
0: जी।
1: और इस डिफेंस प्रोडक्शन में ये जो फिगर आई है 1.78 लाख करोड़ की इस साल, उसमें 24% है प्राइवेट इंडस्ट्री का
0: जी। PPP की हम बात करते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप।
1: तो आप देखिए प्राइवेट इंडस्ट्री, आप याद करिए अमेरिका जैसे है, वहाँ GE है या जितने भी इनके टॉप कंपनीज हैं सिलिकॉन वाली, वो सब मतलब प्राइवेट प्लेयर्स थे, गवर्नमेंट के तो वहाँ किसी का नाम ही नहीं पता थे। आज इंडिया में भी यही हो रहा है कि जैसे अभी आपने देखा कि एक हैदराबाद में कंपनी है, उन्होंने नाग शस्त्र 150 ड्रोन बनाया है जिसकी रेंज है 1000 किलोमीटर। वो उसकी स्पीड मैक्सिमम है 3 to 3 km/h। मैं ये क्यों कोट कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो नाग शस्त्र हमने जो ड्रोन बनाया 150, ये इंडिया की इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है। और हाँ, दूसरा जो एक और अच्छा सवाल आपने उठाया था और इन्होंने भी बोला था, देखिए जहां तक डिफेंस एक्सपोर्ट्स का सवाल है
0: जी,
1: वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि डिफेंस एक्सपोर्ट्स भी हम उन्हीं चीजों का कर सकते हैं जो हम दे सकते हैं। लेकिन हर चीज को डिफेंस एक्सपोर्ट नहीं करेंगे
0: जी।
1: और आपको पता होगा कि जो इस साल जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं, जो टोटल फिगर्स हैं, वो है मतलब अगर मैं करोड़ में बोलूं तो 38423 करोड़, और ये एक टाइम पे 2000 करोड़ होता था, दैट मीन्स आज से एक डिकेड पहले, तो 19 टाइम्स गुना बढ़ गया है
0: जी।
1: आपको अभी पता है AI की, अब मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि AI तो सबसे बड़ी चीज आज की तारीख में आ जाती है, उसमें क्या है कि एक हमारी खुद की ऑटोनोमी होनी चाहिए, मतलब टोटल कंट्रोल होना चाहिए, जिसमें हम सॉवरन AI होना चाहिए, मतलब जो हमारे सर्वर्स, जो हमारे डाटा सेंटर्स, जो क्लाउड कंप्यूटिंग, सब कुछ वो सॉवरन होना चाहिए। और उस लिहाज से मैं बोलना चाहूंगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कुछ बड़ी अच्छी चीजें की हैं। देखिए, मैंने सेमीकंडक्टर से स्टार्ट किया है, आज हमने माइक्रोन जो सिलिकॉन वैली से है 800 मिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं गुजरात में, और ये सारी जो आपके चिप्स वो है उसमें जो उसकी असेंबली टेस्टिंग मार्किंग पैकेजिंग यहाँ पर होगी, और वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी मैं बोलूंगा क्लीन फैक्ट्री होगी, और सबसे ज्यादा आई थिंक वो 5000 स्क्वायर फीट का वो इलाका है, इतना वो बड़ा है।
0: यानी जब हम रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण की बात कर रहे हैं तो इसमें प्राइवेट सेक्टर भी है, एमएसएमई भी है, साथ ही एफडीआई भी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, जो पॉलिसी प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है, उसके थ्रू भी हम कहीं ना कहीं से बढ़ावा दे सकते हैं। आपसे पूछना चाहूंगी डॉक्टर अश्मिंदर, हमने ये देखा कि बहुत सारी आपदाओं के समय भारत ने अपने पड़ोसी देश जो हैं उन्हें राहत सामग्री भेजी, मदद भेजी, और कोविड के समय भी हमने देखा कि हमारी एयरफोर्स ने जो हमारे स्टूडेंट्स फंसे हुए थे अलग अलग देशों में, हमारे नर्सेज थी या और भी इस तरह के हमारे सिटीजन्स थे, उनकी भी मदद की, और हमारे बहुत सारे जो मित्र देश हैं उनके नागरिकों को भी अलग अलग देशों से निकाला। आपसे जानना चाहूंगी जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, अगर हम वायुसेना की बात करें तो एक आत्मनिर्भर देश एक मजबूत देश भी होता है, आप क्या समझते हैं इस नजरिए से, अगर हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करें तो?
2: बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है नीलम जी आपने, इसमें बड़ी सारी चीजें आती हैं।
0: सब
2: एक बात आपने मेंशन की, ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस, यानी कि जैसे नेपाल में 2015 में जो अर्थक्वेक हुआ था, तो भारत ने उस समय बहुत जल्दी से उनकी मदद के लिए जहाजों में रिसोर्सेज और रसायन भेजे थे। आपको याद होगा तुर्की में हुआ था तब भी हमने भेजे, आपको याद होगा भी वेनेजुएला में जो हुआ इतना बड़ा, उसमें भी हमारे C-17 ग्लोब मास्टर जहाज 70 टन का करीब जो है रसायन को लेके गए थे एड देने के लिए। अभी वहां भूकंप के झटके चल रहे हैं और भारतीय वायुसेना के जहाज लैंड कर रहे हैं, हमारे देश के रसायनों को वहां ले जाके उनकी मदद के लिए दे रहे हैं, जहां हजारों लोग फंसे हुए हैं इस समय। तो कहीं ना कहीं देश का अपना स्टेटस जो होता है वो तभी उभरता है अगर आत्मनिर्भरता हो, तभी उभरता है अगर स्ट्रॉन्ग आर्मी नेवी और एयरफोर्स हो, तभी उभरता है जब हमने 74% एफडीआई बना दिया आज डिफेंस के अंदर, जो आप बात मेंशन कर रहे थे, उससे ये हो गया है कि जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है उसको जैसे अब हम कर रहे हैं, हमने क्या किया है कि साफरान के साथ जो इंजन का हम बना रहे हैं 120 से 140 किलोटन न्यूटन, देखिए सबसे मुश्किल चीज जो है दुनिया के अंदर एरो इंजन बनाना है, वो बहुत कम देश है दुनिया के जो बना सकते हैं। हमारा भी कावेरी इंजन अब बना है जिसको हम अनमैंड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स जैसे घाटक है उसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो एक एरो इंजन फाइटर जहाज में खासकर 5th generation या 6th generation जहाज में इस्तेमाल होना है, वो जो टेक्नोलॉजी अभी दुनिया में डेवलप हो रही है, जापान में हो रही है और फ्रांस में हो रही है, वो मिलके भारत बनाएंगे तो इसमें ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, सोर्स कोड नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि बना हम मिल करके रहे हैं, को डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, जैसे हमने ब्राह्मोस को डेवलप किया, को डेवलप किया। और एक और चीज आ जाती है, जब हम एक साउथ एशिया में या इंडो पैसिफिक में या इंडियन ओशन के रीजन की हम जब बात करते हैं तो भारत को एक बहुत बड़ा देश का तरफ देखा जाता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पॉलिटिको इकोनॉमिक वेट, जो भारत का है वो सभी को मालूम है। हम बात कर रहे थे इससे पहले भी, हम कहते थे कि अफगानिस्तान में कुछ लोग हैं वो, या फिर जो बलूचिस्तान में है वो भारत आना चाहते हैं, उनके लिए पेरिस भारत है और कुछ नहीं है, वो फॉरन नहीं जाना चाहते। तो कहीं ना कहीं जो ये हमारा इमेज है एज अ स्टेबलाइजर, वासुदेव कुटुंबकम, वैसे मेरे स्कूल का मोटो था ये, तो कहीं ना कहीं ये जो मोटो है कि पूरा वर्ल्ड एक फैमिली है, भारत ने तो कब से बुद्धिज्म के टाइम से ये फॉलो करता आ रहा है, भारत

0: हिंदुइज्म या वैदिक लिटरेचर है उसके अंदर भी ये चीजें की मेंशन होती है। तो कहीं ना कहीं अगर हमारी एयरफोर्स आर्मी और नेवी मजबूत रहती है और हम सहायता यमन में आपने देखा
1: जी
0: सबसे पहले भारत पहुंचा था पाकिस्तानी सोल्जर्स को। अरे मेरे को आपको एक अच्छी कहानी सुनानी है इसके अंदर क्योंकि इतनी सारी टेक्निकल बातें हो गई, एक कहानी रह गई
1: जी।
0: ये है 2005 की, कांगो के अंदर यूएन पीस कीपिंग स्टेबिलाईजेशन मिशन चल रहा था। वहां पे पाकिस्तानी भी थे, बांग्लादेशी भी थे और भारतीय भी थे। वैसे मैं एक चीज आपको बताऊं, सबसे ज्यादा जो यूएन पीस कीपर्स होते हैं वो इन्हीं तीन देशों से आते हैं इस समय। सबसे ज्यादा 5600 जो है बांग्लादेश से हैं, 5200 से 500 भारत के हैं और 2600 के करीब हैं पाकिस्तान के। उस समय 5 बांग्लादेशी को मार दिया गया, उधर के जो मिलिशिया थी उन्होंने मार दिया था कांगो के अंदर। तो इस इतिहास करके एक जगह थी जहां मारा उनको
1: जी।
0: उस समय पाकिस्तान के सोल्जर्स को भेजा गया था कॉर्डन एंड सर्च करने के लिए गांव के अंदर। वो बेचारे फंस गए, चारों तरफ से गोलियां चल रही थी, तब उन्होंने भारत से मदद मांगी थी। और भारत के जो Mi-25/35 अटैक हेलीकॉप्टर है वो गए, उन्होंने सप्रेशन किया, 50 के करीब मिलिशिया के लोगों को मारा। फिर हमारे Mi-17 गए और उन्हीं पाकिस्तानी सोल्जर्स की कैजुअल इवैक्यूटीज या जिनको वहां से इवैक्यूएट करना था उनको लेके आए ताकि उनको बचा सके। ये है भारत। हम ये नहीं देखते कि हमारा दुश्मन कौन है। मदद में जब भी कोई पुकार करता है सबसे पहले भारतीय और भारतीय वायुसेना के जहाज वहां लैंड कर रहे होते हैं, भारतीय सेना वहां पे कर रही होती है ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस और भारतीय नेवी के जो जहाज हैं वो लार्ज स्केल इवैक्यूएशन कर रहे हो।
1: जी बहुत अच्छी बात आपने बताई और यही वजह है शायद कि माननीय प्रधानमंत्री जी हर देशवासी से ये उम्मीद करते हैं कि वो अपनी अपनी भूमिका निभाता रहे। और कहा भी है प्रधानमंत्री जी ने कि हम जो है देश के लिए मरने का मौका सबको नहीं मिलता लेकिन देश के लिए जीने का जो अवसर मिलता है उसमें हम अपने देश पर गर्व करते हुए जिए। मैं आपसे जानना चाहूंगी कमांडर विक्रमजीत सिंह, भारतीय नौसेना को तो बिल्डर्स नेवी कहा जाता है और बहुत सारी उपलब्धियां जुड़ी हुई हैं। ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हम जब इसकी कमर्शियल एक्टिविटीज की बात करते हैं या हम बात करते हैं अपनी मर्चेंट नेवी की, क्या उसमें भी स्वदेशीकरण के कुछ लाभ हो सकते हैं? क्योंकि सीधे तौर पर इसे हम दो बिजनेस से जोड़कर देखते हैं, क्या उसमें भी लाभ होता है स्वदेशीकरण से?
2: बिल्कुल सही नीलम जी। देखिए हम जैसे मैंने आपको पहले हिस्ट्री बताई थी तो 60s, 70s और थोड़ा अर्ली 80s तक हम एक बायर्स नेवी थे, जो मैं अभी इंडियन नेवी की बात कर रहा हूँ, और फिर हमारा ट्रांजिशन हुआ टू बिल्डर्स नेवी जैसे आपने बताया। और इतना पूरा एक तरह से एक इकोसिस्टम क्रिएट हुआ शिप बिल्डिंग को लेके
1: जी,
2: क्योंकि शिप बिल्डिंग का एक अलग इकोसिस्टम रहता है, एक अलग टाइप के MSME सपोर्ट रहते हैं, एक अलग टाइप का क्लस्टर रहता है। आपने देखा होगा अभी जो हमारे कुछ मैरिटाइम क्लस्टर्स बन रहे हैं डेफिनेटली कोस्टल स्टेट्स में, महाराष्ट्र में अगर आप वेस्ट में देखें, महाराष्ट्र में, गुजरात में, नीचे आइए आप तो फिर ईस्ट में तमिलनाडु, विशाखापट्टनम, ओडिशा
1: जी,
2: तो इन स्टेट्स में हमारे क्लस्टर्स बन रहे हैं जहां पे इंडिजनाइजेशन और शिप बिल्डिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन जो हमारे जो मेनली अभी हमारी जो वॉरशिप बिल्डिंग हो रही है वो हो रही है हमारे DPSU में
1: जी,
2: यानी कि डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग शिपयार्ड्स में, और एक ऑफकोर्स हमारा PSU शिपयार्ड जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहा है केरला में। तो 4 DPSU हैं, 1 PSU है, तो ये अपना एक अलग इकोसिस्टम बना के चल रहे हैं। इस इकोसिस्टम को और इसका महत्व समझते हुए हमारी गवर्नमेंट ने और प्रधानमंत्री जी ने जो एक क्लैरियन कॉल दिया था कि कमर्शियल शिपिंग में भी
1: जी
2: अब हमारा आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। आपको डेफिनेटली याद होगा कि उन्होंने दो एक MIV दिया, एक विजन दिया है 2030 के लिए, यानी कि 2030 तक इंडिया को कमर्शियल शिपिंग में कहाँ पहुंचना है दुनिया में। आज हम बिल्कुल ही जिसको कहते हैं ऑलमोस्ट निग्लिजिबल हमारी प्रेजेंस है, 2030 तक हम चाह रहे थे कि हम top 10 नेशंस में आ जाएं
1: जी।
2: तो ये उन्होंने एक लक्ष्य दिया था जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज जिसको जो स्टीयर कर रही है, और 2047 जो हमारा अमृतकाल विजन दिया था उन्होंने 100 साल हमारे इंडिपेंडेंस के कि हम top 5 नेशंस में आ जाएं। तो ये कहना बहुत ही सरल है और करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन सारी एजेंसीज को इस तरह से मोटिवेट किया और इस तरह से चैनलाइज किया, कोऑर्डिनेट किया कि हम उस तरफ अभी हमें वो होता हुआ धीरे धीरे नजर आ रहा है
1: जी।
2: तो इसके लिए सरकार ने बहुत सारे प्रोत्साहन भी दिए हैं, उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स दी हैं, फाइनेंशियल एड्स दिए हैं जो कि आपको अगर आप शिप बिल्डिंग इंडिया में करवाते हैं तो आपको कुछ डायरेक्ट एड्स मिलती हैं, डायरेक्ट कॉम्पेंसेशन मिलता है, और जो शिपयार्ड हैं जिनको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है चाहे ब्राउन फील्ड हो ग्रीन फील्ड हो उनके लिए भी अलग जिसको मैरिटाइम डेवलपमेंट फंड है, तो काफी पैसा सरकार ने ईयर मार्क किया और इसके ऊपर भी बहुत सारा थ्रस्ट है
1: जी।
2: किसी भी शिप बिल्डिंग एक्टिविटी में कई ऐसी चीजें होती हैं जो आप क्रॉस यूटिलाइज कर सकते हैं। एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे इंटरनेट था वो बेसिकली पहले यूएस मिलिट्री के यूज के लिए बनाया गया, और उसके बाद वो इंटरनेट अब देखिए अब किस स्तर पे पहुंच गया जब उसको पब्लिक के लिए ओपन किया गया और कहां वो पहुंच गया। सेम चीज मोबाइल के साथ हुई। तो इसी तरह से जब ये कमर्शियल शिप बिल्डिंग और नेवल शिप बिल्डिंग वॉरशिप्स बिल्डिंग है, इसमें जब समन्वय होगा, थोड़ी कोऑर्डिनेशन होगी, तो कई इक्विपमेंट ऐसे हैं जो कि हमारे क्रॉस यूटिलाइज हो जाएंगे और हमारी कॉस्ट ऑफ शिप बिल्डिंग जो है वो ग्लोबली कम्पेटिटिव हो जाएगी। तो वो एक क्लैरियन कॉल दिया है अभी प्राइम मिनिस्टर ने और भारत सरकार ने, और आपने देखा होगा अभी रिसेंटली जो ईरान कॉन्फ्लिक्ट में जो कि हमारे जो मर्चेंट मरीनर्स थे जो चुपचाप अपना काम करते रहते थे, महीनों महीनों घर से दूर रहते थे, किस कंडीशंस में उन्होंने शिप्स को लेके जाते थे, इतनी हाई सीज रफ सीज, तो उनको कोई मतलब सब भूल गए थे जब तक कि ये हुआ। ये एक बात है, आज की डेट में करीब इंडिया में करीब 0.1% ग्लोबली शिपिंग हमारी इंडिया की है, इंडियन ओन्ड। तो इसको अब हमने बोला था टॉप 5 और टॉप 10 में लेके जाने के लिए, मतलब बहुत ही ये कठिन कार्य है, लेकिन ये तभी संभव है जबकि हम सारी शिप्स ओन करने लग पड़े
1: जी।
2: और सारी ये जो पॉलिसीज हैं, ये इंसेंटिव्स हैं, ये इसी की तरफ हैं कि इंडियन बिल्ट, इंडियन फ्लैग्ड एंड इंडियन ओन्ड वेसल्स को बढ़ाने के लिए इसका भी एक टारगेट दिया हुआ है कि इतने मिलियन टन्स जो है वो हमारी मतलब शिपिंग हमारी हो जानी चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया 2030 तक और 2047 तक। एंड जो हमारे मेन इक्विपमेंट होते हैं नीलम जी, मैं ये लास्ट चीज कहना चाहूंगा, जैसे इंजन, तो इंजन जो हवाई जहाज के भी बहुत ही स्पेशलाइज इक्विपमेंट है, सिमिलरली जो इंजन जहाज के होते हैं वो भी स्पेशलाइज इक्विपमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि आप सारी चीजों को इंडिजनाइज कर पाए क्योंकि उसका आपको कॉस्ट बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपके उतने नंबर्स नहीं है। तो दुनिया में कई लोग ही हैं जो बनाते हैं, किंतु अगर हम ये चीजें कमर्शियल शिप में भी लगती हैं और कई ऐसी चीजें वॉरशिप्स में भी लगती हैं, तो ऐसे इक्विपमेंट हमें लेके मान के चलना पड़ेगा कि ये तो कई चीजें हमें बाहर से मंगानी पड़ेंगी। इसमें एक ही एडवांटेज है, जब आप बाहर के जो OEMs हैं आप इंडिया में उनको ला सकें, जो कि अभी हम बोल रहे हैं कि आप यहां आके बनाइए, मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, तो उससे जो हम बोलते हैं स्पिन ऑफ इफेक्ट्स, यानी कि जो मल्टीप्लायर इफेक्ट्स इकोनॉमी को लेके, एम्प्लॉयमेंट को लेके, उसका फायदा हमें हो सकता है।
1: जी बहुत अच्छा आपने बताया, और जैसा कि आपने कहा कि मरीनर्स आराम से काम करते रहते थे शांति से, ज्यादा लोगों को उसके बारे में पता भी नहीं था, इसी तरह से हमारी पनडुब्बियां भी कितने कितने महीने पानी के अंदर ही काम कर रही हैं लगातार, लेकिन इन्हीं प्रयासों से हम सुरक्षित भी हैं। और हिंद महासागर में भारत की जो बढ़ती उपस्थिति है और दमदार होती उपस्थिति जो है वो भी हमारी नौसेना के बलबूते ही है। सर मैं आपसे अब आपकी पसंद का कोई गाना जानना चाहूंगी जो आप श्रोताओं को सुनवाएंगे।
3: फौजी में इमोशंस बहुत होते हैं
1: जी,
3: तो गाना है संदेशे आते हैं, और इसका कारण ये है, ये बॉर्डर पिक्चर का है, और मेरे दोनों छोटे जो बेटे थे उस समय
1: जी
3: वो स्कूल में थे, लेकिन ये मूवी देख के उनको बहुत मोटिवेशन हुआ और आज वो भारतीय सेना में दोनों ऑफिसर हैं।
1: बहुत अच्छी ये बात आपने हमें बताई, हमारे श्रोता जरूर प्रेरित होंगे इस बात को सुनकर, और ये प्यारा सा गाना हम सुनवा रहे हैं अपनी ऑडियंस को।

0: तो जोश जगाते इस गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। हमारे तीन विशेषज्ञ इस समय स्टूडियो में हमारे साथ हैं। हम बात कर रहे हैं रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की, स्वदेशीकरण की हम बात कर रहे हैं, और अपने विशेषज्ञों के बहाने आज हम अपनी सेनाओं को और नजदीक से जान रहे हैं। जो हमारे मन में आदर भाव है, सम्मान है, वो और बढ़ता जा रहा है ये जानकर कि किस तरह से हमारी सेनाएं लगातार देश की सेवा में लगी रहती हैं और किस तरह से हम जिसे अपना विकास कहते हैं उसमें मील का पत्थर होते हैं हमारे फौजी, हमारी सेनाएं। सर, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी संजय मेस्टन जी, जब हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं तो मेक इन इंडिया को अगर बढ़ावा मिलेगा, जिसमें कि हम अपने त्योहारों में इस्तेमाल होने वाले दिए और मोमबत्ती से लेकर अब हम अपने फाइटर जेट्स तक की बात कर रहे हैं मेक इन इंडिया की, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये कहीं हमारे शिक्षा जो है उसे भी प्रभावित करेगा, हमारे शिक्षा के क्षेत्र में भी थोड़ा विस्तार होगा इस बहाने?
1: बिल्कुल, शिक्षा में तो बहुत विस्तार होगा। देखिए, पहली बात, ये जो भी मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट चल रहा है
0: जी,
1: हर चीज में, ओवरऑल नेशन बिल्डिंग में
0: जी,
1: हर भारतीय को फख्र होगा कि मैं भारत देश को बिलोंग करता हूं। और आज मैं आपको बताना चाहूंगा, हम चार लोग यहाँ बैठे हैं और हम चारों बाहर जा रहे हैं, कई देशों में जाते हैं, हमें बहुत फख्र होता है कि सब बोलते हैं आप इंडिया के हैं। तो इंडिया का जो आज एक ग्लोबल रीच बढ़ गई है
0: जी,
1: जो उसके भी कई कारण है। देखिए, सबसे बड़ा कारण है, तीन फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, लीडरशिप, इकोनॉमिक ताकत और मिलिट्री ताकत। ये तीन चीजें कॉम्बिनेशन है, ये देश की एक नेशनल पावर को डिफाइन करता है
0: जी।
1: जब ये सब पावर मिलती है एक देश को, अपने आप दिखती है। और आपने देखा है G20 समिट में जिस प्रकार भारत ने लीडरशिप लेके अफ्रीकन यूनियन को शामिल करवाया, वो एक मास्टर स्ट्रोक था। उसी G20 समिट में IMEC कॉरिडोर जो हमने अनाउंस करवाया, जिसमें प्रेसिडेंट बाइडेन थे और जिसमें आप देखिए मल्टीलेटरल कंट्रीज हैं, यूरोप, इजराइल, पूरा गल्फ कंट्रीज और भारत। तो आप ये देखिए कि ये मास्टर स्ट्रोक्स है। अब जब ये सब होता है तो भारत का जब एक आइडेंटिटी पूरे विश्व में बढ़ती है और आज सारा विश्व भारत की तरफ देख रहा है, एक राइजिंग पावर है। मैं तो बोलूंगा जो ग्लोबल साउथ के हम कैपिटल हैं इंडिया, अगर ये हो रहा है तो जाहिर है कि एडुकेशन का विस्तार बहुत होगा, उस पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। एक कर्तव्य, एक प्राइड कि मैं भारतीय हूँ। कुछ साल पहले हमारे कई बच्चे बाहर जाना चाहते थे, अब वो चेंज हो रहा है, क्योंकि जब एक सेल्फ रिलायंट इंडिया है, आज हमारी रोड्स देखिए फर्क पड़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में फर्क पड़ रहा है, और आज की तारीख में टेक्नोक्रेट्स को ज्यादा वजूद दिया जा रहा है हमारे सिस्टम में। अगर वो दिया जा रहा है तो ऑब्वियसली जो यंगस्टर्स हैं, और जो प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दिया हमने
0: जी,
1: तो यंगस्टर्स आज उनको समझ में आ रहा है। आपका स्टार्टिंग पॉइंट था ये प्रोग्राम में कि लोगों को पता होना चाहिए भारतीय सेना क्या है
0: जी,
1: और अब कैसे पता चल रहा है, भारतीय सेना जब ये सारी प्राइवेटाइज हो गई है ये आत्मनिर्भर भारत में, तो कितनी सारी MSMEs आ चुकी है, उसमें काम करने वाले कौन है, यूथ, हाईली टैलेंटेड यूथ, AI एक्सपर्ट्स, सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स, उनको एक्सपोजर मिल रहा है। तो वो जब देखेंगे तो फिर वे बाहर क्यों जाएंगे, और जब इंडिया में हम इतना प्रोड्यूस करते जा रहे हैं, चाहे AI हो, चाहे मिसाइल्स हो, चाहे ड्रोन्स हो, चाहे सब कुछ हो, चाहे एयरक्राफ्ट इंजन हो, सब कुछ अगर हम जब इंडिया में कर रहे हैं

0: तो जहाँ पर जॉब्स हैं और जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज हैं और
1: जी
0: जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है और जहाँ सैलरीज अच्छी हैं, तो ऑब्वियसली लोग को फिर और बढ़ावा मिलेगा एडुकेशन की तरफ ध्यान देने को, जो हमारा पहले ब्रेन ड्रेन होता था ना,
1: जी
0: बाहर जाते थे।
1: जी
0: अब मेरे को लग रहा है अगले 10 साल के अंदर या 2047 तक मैं बोलूंगा, इंडियंस विल रिमेन इन इंडिया और आप देखिएगा हमारा विस्तार बहुत होगा, तो एडुकेशन से इस पे प्रभाव पड़ेगा।
1: यानी जब हम स्वदेशीकरण की बात करते हैं तो ऐसा दिखता है कि सेनाएं मजबूत हो रही हैं, लेकिन इससे अपने आप रोजगार भी मिल रहा है लोगों को और शिक्षा के क्षेत्र का भी विस्तार हो रहा है। और जैसा कि हमें बताया डॉक्टर अश्विंदर ने कि जब सुरक्षित देश है तो मजबूत देश भी है, जरूरत पड़ने पर हम अपने जो पड़ोसी देश है उनकी मदद भी कर सकते हैं। ऐसे में अब मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगी, आप अपने अनुभव से बताएं, आपने इतने सारे देशों में देखा है, उनको काम करते हुए देखा है, कई यात्राएं आपने इस दौरान की हैं, जो भारतीय सेना है बेहद सम्मान के साथ देखा जाता है भारतीय सेना को, और हमारे बहुत सारे इस तरह की एक्सरसाइज होती हैं जिसमें अन्य देशों की सेनाएं सब मिलकर काम करते हैं, वो एक्सरसाइज में भाग लेते हैं। ऐसे में भारतीय सेना जो है उसकी स्थिति दुनिया में क्या मानी जाती है, और जो अगर मजबूती है तो क्यों मानी जाती है वो?
0: मैं बहुत घमंड के साथ बोल सकता हूँ नीलम, भारतीय सेना की जो छवि है वो विश्व में नंबर वन है।
1: जी
0: मैं कई कंट्रीज में गया हूँ, 23 कंट्रीज ऑफिशियली गया था ऑन ड्यूटी।
1: जी
0: टॉप कंट्रीज हैं, अमेरिका है, इसराइल है, टर्की है, जापान है, फ्रांस है, मलेशिया है, मतलब चाइना है। चाइना में मैं खुद एज अ इंडियन डेलीगेशन लीडर गया था, जो चाइना में फर्स्ट SCO पीस कीपिंग एक्सरसाइज हुई थी 2005 में, मैं उसको विटनेस करने गया था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह सारा तजुर्बा देखते हुए और हर कंट्रीज में आज विश्व की सारी सेनाएं चाहती हैं कि भारत के साथ बाइलेटरल, मल्टीलेटरल, ट्राइलेटरल एक्सरसाइजेस करना चाहती हैं, क्योंकि जो हमारी एक एक्सपीरियंस है काउंटर इंसर्जेंसी में डील करने की,
1: जी
0: काउंटर इन्फिल्ट्रेशन में डील करने के लिए, टेररिज्म को डील करने के लिए, ह्यूमैनिटेरियन एड वगैरह देने में, रिस्पांस सिस्टम में, हमारी जो लॉजिस्टिक सप्लाई चेन है, जो एक एक्सपर्टीज है। और भारतीय सेना एक वो सेना है जो ऐसी जगह डिप्लॉयड है, सियाचिन ग्लेशियर से लेके नागालैंड तक से लेके डेजर्ट तक, और नेवी के साथ भी हमने इतनी फंक्शनिंग करते हैं, एयरफोर्स के साथ भी। तो कहने का मतलब है जो हमारी काबिलियत है, हमारी कैपेबिलिटीज है, वो कैपेबिलिटीज को देख के पूरा विश्व, मैं बोल सकता हूँ वी आर नंबर वन, पूरा विश्व आज चाहता है कि भारत सेना के साथ ट्रेनिंग करें। और मैं क्योंकि अफगानिस्तान में था तकरीबन 3 साल, वहां 53 कंट्रीज मैंने देखी थी अमेरिका द्वारा लेड किए हुए। मेरे को वो हर मीटिंग में बुलाते थे, चाहे वो नेटो सेक्रेटरी जनरल आता था, चाहे इनके आर्मी चीफ आते थे हर कंट्री के साथ। तो मेरे को तब इतना फख्र होता था कि इंडियन व्यू पॉइंट वो सुनना चाहते हैं, और इंडिया की जो छवि है इंडियन आर्म फोर्सेस की
1: जी
0: बहुत ही सॉलिड है। और एक और चीज मैं इसमें बोल रहा हूँ, रेजिमेंटेशन, जितने फॉरेन चीफ्स आते थे इंडिया में वो बताऊं क्या बोलते थे, आपकी जो एक रेजिमेंटेशन स्पिरिट है
1: जी।
0: आज अगर मैं जाट रेजिमेंट का हूँ तो मेरे जो जाट रेजिमेंट वाले वो जवान है वो बिल्कुल मतलब अपनी रेजिमेंट के नाम पे मर जाएंगे। मैं वैसे महार रेजिमेंट का हूँ, तो महार रेजिमेंट वाले जो मेरे जवान है उनका एक अलग जज्बा होगा, डोगरा का अलग होगा, मराठा का अलग होगा
1: जी।
0: तो ये रेजिमेंटेशन है, ये सिर्फ इंडियन आर्मी में है, ये यूनिकनेस है। मैंने अमेरिकन फॉरेन चीफ जो यहाँ पर आए थे आर्मी चीफ, उनसे खुद सुना था कि दिस इज द मोस्ट यूनिक थिंग अबाउट द इंडियन आर्मी। तो ये हमारी जो कामरेडरी है, भाईचारा है, आपसी संबंध है, जवान और ऑफिसर के जो रिश्ते हैं
1: जी।
0: तो ये सारी चीजें ये विश्व वाले देखते हैं, इंक्लूडिंग चीनी, ये भी चाहते हैं हमारे साथ एक्सरसाइज करने के लिए, और हमने किए हैं चीन के साथ भी, SCO के साथ एक्सरसाइज। तो मैं घमंड के साथ बोल सकता हूँ, मेरे को इस पे कोई वो नहीं है, एज अ फौजी वी आर नंबर वन एंड मोस्ट रिस्पेक्टेड आर्म फोर्सेस, नॉट आर्मी, आर्म फोर्सेस इंक्लूडिंग नेवी, इंक्लूडिंग एयरफोर्स। नेवी के साथ जो वाइजैक में शायद आपने भी कवरेज किया था उस एक्सरसाइज को,
1: उसमें
0: ईरानियन शिप भी थी और यूनाइटेड स्टेट्स की शिप भी थी।
1: ऐसे में बताएं, बहुत रोचक बात आप बता रहे हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि नो फर्स्ट यूज हमारी पॉलिसी रही है, तो जब हम अपने डिफेंस बजट को बढ़ाते हैं तो कुछ लोग क्रिटिसिज्म भी करते हैं और कुछ हमारे पड़ोसी देश हैं जो थोड़े नाराज भी हो जाते हैं और बार बार ये बात लेकर आते हैं कि डिफेंस बजट क्यों बढ़ाया जा रहा है, और अब तो हम स्वदेशीकरण की बात कर रहे हैं आत्मनिर्भरता की, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे?
0: मेरे ख्याल डिफेंस बजट तो और बढ़ना चाहिए
1: जी,
0: क्योंकि देखिए सिक्योरिटी जो इकोनॉमिक्स है, और देखिए अगर डिफेंस सॉलिड है तो इकोनॉमिक आपकी सॉलिड बढ़ेगी
1: जी।
0: ये बहुत कोरिलेटेड है और चीन एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। 2050 का उसका विजन था कि हम कोई लड़ाई वड़ाई के पंगे नहीं फंसेंगे, हम

0: मिलिट्री कंसोलिडेशन, इकोनॉमिक कंसोलिडेशन, आज भारत भी वही कर रहा है। क्योंकि मेरा तो इसमें विचार है डिफेंस बजट और बढ़ना चाहिए, गवर्नमेंट दे रही है, और कैपिटल एक्विजिशन पे भी हमें थोड़ा ज्यादा जोर देना चाहिए, क्योंकि खासकर एयरफोर्स और नेवी के लिए ये जरूरी है। कैपिटल एक्विजिशन मतलब ये नहीं कि हमने बाहर से खरीदना है, उसको हम इंडिजिनाइज भी कर सकते हैं।
1: तो डॉक्टर अश्विंदर आपसे मैं जानना चाहूंगी, जैसे दूसरे देशों से सीखने की बात करें तो जापान में तो SDF अभी तक रहे, सेल्फ डिफेंस फोर्सेस रही, सिर्फ आत्मरक्षक बल थे, कहते हैं कि हमें कहीं आक्रमण नहीं करना, तो सेनाओं की हम क्या जरूरत है उतना बजट देने की। आपसे जानना चाहूंगी मैं कि ये जो पॉलिसी होती है कि हमें क्योंकि लड़ाई नहीं लड़नी है इसलिए हम सेनाओं को मजबूत नहीं रखेंगे, आप इस बारे में क्या कहेंगे?
2: देखिए, डिटरेंस का मतलब ही ये होता है कि आपकी आर्म फोर्सेस इतनी स्ट्रांग है कि कोई भी देश विश्व का सोच नहीं सकता आपके ऊपर हमला करना। अगर हम एक ऐसी सिक्योरिटी एनवायरमेंट प्रोवाइड करते हैं जिसमें पूरी इकोनॉमी फ्लावर करती है हमारे देश की, तो वो सिक्योरिटी एनवायरमेंट देती है हमारी आर्म फोर्सेस, तीनों आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। हम कह रहे थे ना कि हम दूसरों से क्या सीखते हैं। अभी आपने सेल्फ डिफेंस फोर्सेस की बात करी, आपको पता है कि उनका डिफेंस बजट मल्टीफोल्ड हो गया जापान का। अब उन्होंने रियलाइज कर लिया है कि उनको अमेरिका की अम्ब्रेला नहीं मिलने वाली, और वो अपनी जो उनकी इंजिन की कैपेबिलिटी है, जो उनके जहाजों को बनाने की कैपेबिलिटी है, आपको ये भी मालूम होगा कि 6th जनरेशन ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम में इटली और यूके के साथ मिलकर अहम रोल प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर शिप्स में देखें, वो कमांडर साहब ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, लेकिन उसमें भी और जो इंजन्स है उसके अंदर तो उन्होंने बहुत अच्छी माहिरता प्राप्त कर ली है। दूसरी चीज आ जाती है, अगर हम अपना एनवायरमेंट देखें आसपास का, हम लोग प्रेडेटरी नहीं है, हमें दूसरों की टेरिटरी नहीं चाहिए, हमें दूसरों की जमीन नहीं चाहिए, लेकिन अपने आप को और आसपास के एरिया को अगर प्रोटेक्ट करना है, इंडियन ओशन को प्रोटेक्ट करना है, तो बहुत जरूरी है कि हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स बहुत स्ट्रांग हो। अभी भी हमारी आर्मी 50,000 से ऊपर 3,488 किलोमीटर बॉर्डर पे डिप्लॉयड है, लद्दाख में है, दूसरी जगहों पे है, अरुणाचल प्रदेश, कितनी मुश्किल कंडीशंस में वो पूरे पूरे साल रहते हैं, जहां पे टेम्परेचर -20-30 तक पहुंच जाते हैं, और फिर जब गर्मी आती है तो फिर कहां, आपको पता है रेत में कहां पे इनके टेम्परेचर 50 डिग्री से ऊपर। तो उसी तरीके से हमारी तीनों सेनाएं जो डिप्लॉयड है हर जगह, ये इसलिए डिप्लॉयड है ताकि दूसरा आंख उठाकर भी हमारी धरती पे ना देख सके। और अब आप देखिए यूक्रेन का हाल, उनकी सेनाएं उतनी स्ट्रांग नहीं थी, उनकी इतनी बर्बादी हो चुकी है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी आर्म फोर्सेस स्ट्रांग होगी तब आप हर लड़ाई जीत लोगे, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आपने अमेरिका के साथ देखा, उन्होंने उसके भी तोड़ देख लिए, वो सरवाइव कर रहे हैं अटैक्स के अंदर उन सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हुए जिससे कॉस्ट इफेक्टिव रहे, चाहे वो ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं, या उनका ज्योग्राफिकल जो उनका पूरा का पूरा टेरिटरी है डिफेंस की ओरिएंटेड की तरफ, ओरिएंटेशन की तरफ। तो कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी होता है कि हमें तो नहीं किसी की टेरिटरी चाहिए, हमने कई बार बहुत क्लियरली किया, हाँ हमें सिर्फ अपना जो जेन्युइन लीगल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो वापस चाहिए, आज नहीं तो वो खुद अपने आप, हमने तो कोई लड़ाई नहीं की अभी, हम तो अपने भेज नहीं रहे लोगों को, इसका मतलब है हमारी ऑफेंसिव इंटेंशन नहीं है, लेकिन डिफेंसिव होने के लिए भी आपकी क्षमता इतनी स्ट्रांग हो कि दूसरा देश 10 बार सोचे कि वो आप पे हमला करे कि नहीं करे। एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूं, अगर आप परमिट करें, एक चीज कहते हैं हम सिविल मिलिट्री फ्यूजन, हम जो सीख सकते हैं दूसरों से, तो हम चीन से ये चीज सीख सकते हैं। उन्होंने क्या किया, आप बात कर रहे थे ना एजुकेशन की, तो उनका एक है 7 Sons of National Defense, जैसे बेजिंग की यूनिवर्सिटी या बेजिंग की इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गई, या दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटीज हैं जो बेजिंग के अंदर, कुछ ऐसी हैं जिनको वो फंड भी करते हैं ताकि क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के ऊपर वो फोकस कर सकें। तो ये चीज हमने शुरू कर दी है। अब ये जो बुलेट प्रूफ वेस्ट हैं जो आर्मी यूज करती है हाई ऑल्टीट्यूड्स में, उसमें कहीं ना कहीं रोल रिसर्च का यूनिवर्सिटीज का भी रहा है, और ये इनोवेशन सेल्स जो बन रहे हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर। लेकिन जिस संख्या में अगर हम इसको थोड़ा और तेज गति लेके आए, एक सिविल मिलिट्री फ्यूजन हो, तो हमारा देश और भी स्ट्रांग बनेगा।
1: जी, यही कामना सभी की। और मैं कमांडर विक्रमजीत सिंह, चलते चलते क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका मैं जानना चाहूंगी।
3: बिल्कुल सही, अगर आप एक स्ट्रांग मिलिट्री पावर नहीं है तो ऑब्वियसली आपका अस्तित्व हमेशा खतरे में है। ये अभी बहुत क्लियरली विश्व में वापस लोगों को समझ में आने लगा है, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद और कोल्ड वॉर के बाद बिल्कुल जिन्होंने बोला था नहीं हमें नहीं लड़ाई लड़नी, हमें नहीं करना, हमें न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं चाहिए
1: जी।
3: अब आपने देखा सब लोग धीरे धीरे यू टर्न मार रहे हैं। जापान सबसे पहले उन्होंने अपनी एक नई फ्रिगेट लॉन्च कर दी है कि भाई ये प्रोग्राम हम लॉन्च कर रहे हैं
1: जी।
3: फ्रांस बोल रहा है मैं न्यूक्लियर वेपन अपना फिर से प्रोग्राम शुरू कर दूंगा। तो जैसे जैसे जियो पॉलिटिक्स चेंज होता जा रहा है, लोगों ने अपने अपने जो उनके डिसीजन हैं विद रिस्पेक्ट टू सोवरेनिटी एंड डिफेंस ऑफ द नेशन, तो वो उन्होंने बदले हैं बिल्कुल इसमें। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम बात करते आ रहे हैं अभी तक, कि जब तक आपका स्ट्रांग मैन्युफैक्चरिंग सेटअप नहीं होगा नीलम जी, आप एक स्ट्रांग मिलिट्री भी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आत्मनिर्भरता का मतलब है आपका खुद का स्ट्रांग मैन्युफैक्चरिंग सेटअप होना
1: जी।
3: आज तक इंडिया ने पूरे विश्व में अपना झंडा गाड़ा था सॉफ्ट सर्विसेज में, यानी कि सर्विसेज में, सॉफ्टवेयर में हम नंबर वन है, चिप डिजाइन में आप देखें अमेरिका में तो इंडियंस हैं उसमें
1: जी।
3: और एआई में भी ऑब्वियसली फिर इंडियंस हैं, बहुत आगे आगे हैं और बहुत वेल पेड है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में कहीं ना कहीं जो हम थोड़ा पिछड़ गए थे, जिसकी इम्पोर्टेंस देश ने समझी है और इसके ऊपर भी एक प्रधानमंत्री जी ने अलग से क्लैरियन कॉल दिया है कि हम अपने ब्लू कॉलर वर्कफोर्स को कैसे और स्ट्रेंथन करें, हमारे मैन्युफैक्चरिंग कैसे स्ट्रेंथन हो, ये सारे कॉरिडोर्स वगैरह उसी की ओर एक कदम थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये भी हो जाता है तो हम वाकई कह पाएंगे जी हाँ हम सेल्फ रिलायंट हैं, आत्मनिर्भर हैं। क्योंकि पीछे अगर आपको याद हो हमने देखा था कि कई ऐसी कंट्रीज हैं कि पहले बात हो रही थी कोविड के बाद ये बात शुरू हो गई थी कि चाइना को आप सप्लाई चेन से हटा दीजिए, फिर आपने देखा होगा कि वो चाइना प्लस वन पॉलिसी आ गई वर्ल्ड में। चाइना को हटाना इतना आसान नहीं है क्योंकि वो हर एक के मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन में है। तो प्लस वन, तो प्लस वन में आज की डेट में अगर आप विश्व में देखें स्टेबिलिटी वाइज, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वाइज, इंडिया इज द लीडिंग कंटेंडर। तो उससे क्या फायदा होगा, विश्व का भी फायदा है और भारत का भी फायदा है। आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया फॉर इंडिया एंड मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड।
1: फॉर द वर्ल्ड, बहुत अच्छी बात आपने बोली। और हम ट्रेड बास्केट की बात जो कर रहे थे कि हमारे आत्मनिर्भर होने से उसमें भी संतुलन बना रहेगा। तो ये है भारत, समुद्र से आकाश तक, सुरक्षित भी, आत्मनिर्भर भी। और जिनकी वजह से सुरक्षित है उनके लिए ये दो पंक्तियां, देश की मिट्टी माथे से लगा लेता हूँ मैं हर त्योहार कुछ इस तरह मना लेता हूँ। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आज हमने बात की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की, स्वदेशीकरण की। और हमारे विशेषज्ञ इसके लिए थे कार्यक्रम में मेजर जनरल संजय मेस्टन, भारतीय थल सेना से आप हमारे बीच आए, हमारा मार्गदर्शन किया, बहुत रोचक जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। हमारे साथ रहे एयर कमोडोर डॉक्टर अश्मिंदर सिंह बहल, वायुसेना से आप, आपने बहुत रोचक बातें हमें बताई। कमांडर विक्रमजीत सिंह नौसेना से आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों विशेषज्ञों का। और मैं यही कहना चाहूंगी अपने श्रोताओं से कि INS विक्रांत हो, तेजस हो, प्रचंड हो, अर्जुन टैंक हो, पिनाका रॉकेट या ब्रह्मोस, ये सिर्फ नाम नहीं, ये भारत का गर्व है। और इस गर्व को और बढ़ाने की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात करके। आज पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में हमारे तीनों विशेषज्ञों ने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के संयोजक थे प्रमोद कुमार वत्स और कार्यक्रम प्रोड्यूसर शाहनवाज खान और तुषार पराशर के साथ मैं नीलम मलकानिया इस कार्यक्रम से अब आप सभी से लेती हूं अनुमति। नमस्कार, जय हिंद।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।

0: Zoo, ooh, ooh, what a catchy rhythm, and Shakira never disappoints with her beautiful voice and her lovely dance moves. And it's time for us to take a break, and we will be right back. Do not touch the dial, please.
1: माँ हमें जीवन देती है और पेड़ उस जीवन को सांसें देते हैं। इस बार
2: माँ के सम्मान में, धरती माँ के उत्थान में,
1: दिल्ली वन एवं वन्य जीव विभाग लेके आ रहा है मिशन 70 लाख पौधारोपण अभियान, एक पेड़ माँ के नाम।
2: दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ा वन भागीदारी पौधारोपण अभियान, जिसका शुभारंभ 7 जुलाई को माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के कर कमलों से होगा।
1: अधिक जानकारी या पौधारोपण स्थल पर अपना स्लॉट बुक करने के लिए www.greendrive.delhi1mahotsav.in पर जाएं या 8588999799 पर कॉल कीजिए।
2: अगर आपके पास पौधा लगाने की जगह है तो वृक्ष रथ को बुलाइए या नर्सरी लोकेटर की मदद से अपनी नजदीकी सरकारी नर्सरी से निशुल्क पौधा प्राप्त कीजिए।
1: और अगर आप चाहते हैं कि आपका ये संकल्प सिर्फ एक पौधे तक सीमित ना रहे, तो बनिए एनवायरमेंटल सेवियर और दिल्ली सरकार के साथ जुड़कर दिल्ली को और ज्यादा स्वच्छ, हरित और स्वस्थ बनाए।

0: We should all take our health very, very seriously because, you know, staying healthy is all about building that inner strength. And with inner strength comes a lot of resilience, power, and courage to live this life. Yes. And with that thought, while you soak in that thought, it's time for us to take the last break of the show. We promise we will be right back.
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
4: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
3: क्या ये जांच उपलब्ध है?
5: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
6: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
5: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
6: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
7: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
8: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
9: पता का चाय, गजब का स्वाद।

सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं, रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सवेरे लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली मंच उपस्थिति और विशिष्ट कथा शैली से तीजन बाई ने पंडवानी को न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दी। महाभारत की कहानियों को मंच पर जीवंत करने की उनकी अद्भुत क्षमता ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रशंसित प्रस्तुतकर्ताओं में से एक बना दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: हेलो हेलो हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। संडे हो या मंडे, हर दिन म्यूजिक के नाम है। और अगर प्रोग्राम हो रिक्वेस्ट बेस्ड तो आई एम श्योर आप सब बिल्कुल रेडी होंगे, क्योंकि अगले एक घंटे तक बजेंगे वही गाने जो आप दिल से मांगेंगे। और आई एम श्योर दिल से तो आते ही हैं गाने अब उन लोगों के लिए जिन्हें आप प्यार करते हैं, याद करते हैं या बस एक मुस्कान देना चाहते हैं। 102.6 FM रेनबो प्रोग्राम शुरू हो गया है, मेरा वाला सॉन्ग विद योर आरजे खुशी, जहां आप सुनेंगे आपके ही रिक्वेस्टेड सॉन्ग जिनके साथ आई एम श्योर कोई ना कोई कहानी या याद जुड़ी हो सकती है। सो लेट्स स्टार्ट दिस म्यूजिकली सफर। 9868107070 यानी कि 9868107070 पर आप मैसेज कर सकते हैं अपना नाम, रिक्वेस्टेड सॉन्ग, अगर कुछ बात उसके साथ आप बोलना चाहते हैं छोटी सी एक लाइनर तो वो भी। आई एम श्योर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, श्योरिटी नहीं दे रही, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी।

कहते हैं ना, जो दोगे वही मिलेगा। भाई जिंदगी से प्यार करोगे तभी तो जिंदगी प्यार के और मौके देगी। आपके आसपास ऐसे लोग जुड़ेंगे जिनसे आप प्यार कर सकते हैं और वो भी आपको प्यार करेंगे। इसका मतलब है जो बोगे वही पाओगे। और मैंने जो बोया था वो था एक नंबर, और उस नंबर से मैंने पाए हैं बड़े सारे मैसेजेस। तो मेरे पास मैसेज आया है मोहम्मद इम्तियाज़ और सलमा बेगम का, कीर्ति नगर जवाहर कैंप से मैसेज कर रहे हैं। बॉर्डर या धुरंधर फिल्म से ये कोई गाना सुनना चाहते हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ बॉर्डर या धुरंधर से आपको कोई गाना सुनाऊं। नमस्कार मैडम जी, राजू मल्होत्रा और रानी मल्होत्रा जम्मू एंड कश्मीर से लिख रही हैं। रोटी कपड़ा और मकान से ये गीत सुनना चाहते हैं। हाय हाय ये मजबूरी और ये मौसम और ये दूरी। बताना भाई कौन सा, भाई मौसम तो इतना अच्छा हो रहा है, दूरी कौन सी बनी हुई है लोगों के बीच में। गुड्डू धाकड़ मध्य प्रदेश से उज्जैन जिले से चांदनी फिल्म का गाना रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और मेरे पास उत्तम नगर दिल्ली से जयराम, सचिन, अमन, दीपांशु खोरवाल का मैसेज आया और ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं पैडमैन फिल्म का गाना। तो बड़े सारे रिक्वेस्ट है भाई, लेकिन मजबूरी तो हमारी भी है कि हम कुछ ही गाने चला सकते हैं। तो फिलहाल ये वाला गाना आप सभी लिसनर्स के लिए।

दिस ट्रैक वॉज फ्रॉम द मूवी बैडमैन, अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना था। और मैसेजेस आ रहे हैं, अंजलि हापुड़ से लिख रही हैं, आठ पर्चा गाना सुनना चाहते हैं। अंजलि मुझे ना ये गाना समझ में नहीं आया, कौन सी मूवीज है प्लीज मुझे जरूर बताना, मैं कोशिश करूंगी इस गाने को चलाने की या ढूंढने की। तेज कुमार गुप्ता जी जनता विहार दिल्ली से बिच्छू मूवी का गाना सुनना चाह रहे हैं। और मेरे पास मैसेज आया है, पंकज लिख रहे हैं अमरावती महाराष्ट्र से, मेरे वाला सॉन्ग सुन रहे हैं ये प्रोग्राम और लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून। और ये लिख रहे हैं नरसिम्हा मूवी को आज रिलीज हुए 35 साल हो गए हैं, तो उस मूवी का ये कोई एक गाना सुनना चाहते हैं। नमस्कार खुशी जी, मैं मेरा नाम कृष्ण कुमार मिश्र है और मैं दिल्ली में रहता हूँ। आप वो लम्हे फिल्म का तू जो नहीं है सॉन्ग चला दीजिए। ठीक है, मेरी कोशिश रहेगी इनमें से कुछ गाने सुनाने की। फिलहाल जो धुरंधर मूवी का कोई एक गाना रिक्वेस्ट हुआ था तो पहले मैं वो चलाती हूँ, और फिर जैसा कि नरसिम्हा मूवी के बारे में अब बोला है तो आगे पीछे कभी पुराने गाने कभी नए गाने सारे मूड और सारे टेस्ट के गाने सुनने तो बनते ही हैं। जैस्मीन सेंटलास और सत्येंद्र की आवाज़ में ये ट्रैक फ्रॉम द मूवी धुरंधर।

0: अब जान तो हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन हाँ आपके इतने सारे रिक्वेस्ट आ रही हैं सॉन्ग्स की, तो मैं पहले नाम पढ़ देती हूँ। नीरज ध्यानी और आलोक गंगोत्री रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, ये गाना सुनना चाहते हैं। और उत्तम नगर से कमला रानी, गीतिका भानु लिख रहे हैं, जब प्यार किसी से होता है से, ये गाना सुनना चाहते हैं 100 साल पहले। ईशा पावर लिखना चाहती हैं, बारिश चालू है तो चांदनी मूवी का आप गाना चला दीजिए। वैसे इस गाने की रिक्वेस्ट मुझे किसी और ने भी की है, तो ये गाना मैं आप लिसनर्स को सुनवाती हूँ। लेती हूँ छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपके रिक्वेस्टेड सॉन्ग्स आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो बने रहिए रेनबो स्टेशन के साथ।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
4: पता का चाय, गजब का स्वाद।
5: माँ हमें जीवन देती है और पेड़ उस जीवन को सांसें देते हैं। इस बार
6: माँ के सम्मान में, धरती माँ के उत्थान में,
5: दिल्ली वन एवं वन्य जीव विभाग लेके आ रहा है मिशन 70 लाख पौधारोपण अभियान, एक पेड़ माँ के नाम।
6: दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ा वन भागीदारी पौधारोपण अभियान, जिसका शुभारंभ 7 जुलाई को माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के कर कमलों से होगा।
5: अधिक जानकारी या पौधारोपण स्थल पर अपना स्लॉट बुक करने के लिए www.greendrive.delhi1mahotsav.in पर जाएं या 8588999799 पर कॉल कीजिए।
6: अगर आपके पास पौधा लगाने की जगह है तो वृक्ष रथ को बुलाइए या नर्सरी लोकेटर की मदद से अपनी नजदीकी सरकारी नर्सरी से निशुल्क पौधा प्राप्त कीजिए।
5: और अगर आप चाहते हैं कि आपका ये संकल्प सिर्फ एक पौधे तक सीमित ना रहे, तो बनिए एनवायरमेंटल सेवियर और दिल्ली सरकार के साथ जुड़कर दिल्ली को और ज्यादा स्वच्छ, हरित और स्वस्थ बनाए।

जहाँ बारिश नहीं हो रही है वहाँ लोग बोल रहे हैं तू जो नहीं है, और जहाँ बारिश हो रही है वहाँ बारिश वाले गानों की रिक्वेस्ट की तो भरमार ही आई हुई है। भागवत नई दिल्ली से लिख रही हैं, टिप टिप बरसा पानी, और इसी गाने की रिक्वेस्ट और भी कई जगह से आ रही है। रवि मेरठ से लिख रहे हैं, कोई भी गाना बारिश पर चला दीजिए, शायद यहाँ पर भी बरस जाए। सात समुंदर पार सुनना चाहते हैं प्रदीप सलूजा जी जनकपुरी से ये मैसेज कर रहे हैं। राजकुमार के संतानी महाराष्ट्र से लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून जी, आप कैसे हो, कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, एक रोमांटिक सॉन्ग टिप टिप बरसा पानी। भाई बहुत रिक्वेस्ट आ गई है इस गाने की, ये तो चलाना ही पड़ेगा। और ये अपनी प्यारी पत्नी नंदिनी जी के लिए एफएम रेनबो पर डेडिकेट भी करना चाहते हैं ये सॉन्ग, तो ठीक है भाई यही गाना सही। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में आप सभी लिसनर्स के लिए।

सोच रही हूँ मैं भी आ ही जाती हूँ ताकि इस म्यूजिक के बीच में मैं और भी मैसेजेस ले सकूँ, और लोगों की अगर रिक्वेस्ट नहीं चला सकती तो उनके नाम तो बोल ही सकती हूँ। गुड आफ्टरनून खुशी मैम, कैसे हैं आप? प्लीज़ प्लीज़ सॉन्ग फ्रॉम द मूवी फिल्म राज वन से ये गाना सुनना चाहते हैं। अफशा खानम धामपुर डिस्ट्रिक्ट बिजनौर UP से ये मैसेज कर रहे हैं। और कसगंज से मास्टर राधेश्याम शाक्या लिख रहे हैं, बंजारन सॉन्ग चला दीजिए, तेरी बंजारन रास्ता देखे। अच्छा जी, ठीक है, हम कोशिश करते हैं। डियर आरजे जी नमस्कार, मेरा गांव मेरा देश मूवी से गाना कुछ कहता है ये सावन सुना दीजिए। मेरठ से ये मैसेज कर रहे हैं। मुरादाबाद जिले से अच्छा मैसेज आया, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह ये कह रहे हैं भाई हमारे

0: नाम ले दीजिए, गाने किसी भी गाने में हमें शामिल कर लीजिए। ठीक है जी, आपको तो हर गाने में शामिल कर लिया, देख लो आपके सारे नाम बोल दिए मैंने जितने भी आपने रिक्वेस्ट किए थे। शिव नारायण उत्तर प्रदेश नोएडा से लिख रहे हैं, मौसम है आशिकाना आए दिल कहीं से उनको ढूंढ लाना, ये सुनना चाह रहे हैं। और एक और बागेश्वर निषाद जी का मैसेज आया है यूपी से, और ये गुरु फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं क्योंकि इनके यहाँ पर बारिश हो रही है। तो ठीक है, हम पहले गुरु फिल्म का ही गाना चला देते हैं, ले दी एक छोटा सा ब्रेक, और छोटे से ब्रेक के बाद फिल्म गुरु से बरसों रे मेघा।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

इसी गाने की रिक्वेस्ट दिनेश नार सिंह ने दिल्ली से भी की थी, और इसी के साथ हम काफ़ी सारे मैसेजेस में ये भी लिखा हुआ है कि प्लीज़ हमारा नाम ही शामिल कर लीजिए। तो शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी, पूरा परिवार आ गया है। तो अब्बासी परिवार के लिए जितने भी गाने बज रहे हैं भाई, आप भी सुनते रहिए। थैंक यू सो मच। पंकज अमरावती महाराष्ट्र से लिख रहे हैं कि उनकी रिक्वेस्ट का हमने ये गाना बजाया। और सिस्टर, क्या आज हमारा नंबर आ जाएगा? क्या इन दोनों में से कोई ये गाना आप सुना सकते हैं? अरे, मेरठ कैंट से ये मैसेज लिखा है दिग्दर्शन और कविता गौड़ ने। भाई बहन मान लिया आपने, बहन गाना नहीं चलाएगी, बताओ, आपने सिस्टर बोल दिया हमें। तो ये गाना आपकी रिक्वेस्ट का, द ग्रेट गैम्बलर मूवी से, आशा भोसले की आवाज़ में आप सभी लिसनर्स के लिए।

0: सॉरी भाई, पूरा गाना तो मैं नहीं सुना पाऊंगी, नहीं तो काफी सारे लोग नाराज हो जाएंगे कि भाई सबके गाने चला रहे हो, हमारा गाना क्यों नहीं चला रहे। लेकिन मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि आप सभी के जो रिक्वेस्टेड सॉन्ग है उनमें से कुछ ना कुछ जो कॉमन रिक्वेस्ट आ रही है वो गाने जरूर चलाएं। वैसे गाने तो हर जगह बजते हैं, लेकिन जब उन गानों के पीछे अपना नाम लग जाता है या वो किसी नाम से जुड़ जाते हैं तो वो सिर्फ एक गाना नहीं रह जाता, वो एक याद बन जाता है, बातें करने का बहाना बन जाता है। लेती हूँ मैं छोटा सा ब्रेक, और छोटे से ब्रेक के बाद फिर से आप सभी लिसनर्स की रिक्वेस्ट आगे बढ़ेंगी। लेकिन उससे पहले मैं नंबर बता देती हूँ। नंबर बीच में मैं बताना ही भूल गई क्योंकि मैसेजेस ही इतने सारे ऑलरेडी हैं, लेकिन फिर भी नंबर बता देती हूँ। 9868107070, यानी कि 9868107070। इस नंबर पर मैसेज करके आप अपना नाम लिख सकते हैं, कोई गाना जो आप सुनना चाहते हैं, अगर उसके पीछे कोई याद हुई है, जो आप सिर्फ अपना नाम नहीं सुनना चाहते, चलो मैं एक लाइन की याद भी लिख देता हूं, तो वो भी आप लिख सकते हैं, बट शॉर्ट एंड क्रिस्प। लेती हूँ छोटा सा ब्रेक और मिलती हूँ आप सभी लिसनर से ब्रेक के बाद। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग आपकी आर से खुशी के साथ।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार।

0: एक से दो बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।

ये देखिए, तो अब ऐसा लग रहा है कि इस मैसेज पर है, क्योंकि मैसेजेस तो काफी सारे आ रहे हैं, लेकिन ये वाला मैसेज, मैंने ऐसा वाला मैसेज तो नहीं देखा। आकाशवाणी एफएम रेनबो दिल्ली के नाम पर ये चंद लाइनें यश शिंदे ने भेजी है मुंबई से। धड़कने थम सी जाती हैं इसके तान पर, दिल से आ जाता है रेनबो के हर एक गान पर। सदियां बीत जाए चाहे बदलते दौर में, जादू आज भी वही है एफएम के इस शोर में। रास्ते खूबसूरत हैं और हम सफर है रेनबो रेनबो, और गम सारे भूल गए जब साथ मिला ये वो। आरजे दोस्तों की बातों में छुपा है वो अपनापन, जिससे महक उठता है दिल्ली का हर एक मन। लव यू आकाशवाणी एफएम रेनबो दिल्ली के लिए ये चंद लाइनें यश शिंदे ने भेजी है मुंबई से। तो इनकी भाई रिक्वेस्ट, भाई प्लीज़ रिक्वेस्ट तो बनती है, इतना अच्छा इतना खूबसूरत मैसेज लिखा है, भाई रिक्वेस्ट तो बनती है। तो ये गाना इन्होंने रिक्वेस्ट किया है फिल्म लुटेरे से, मोनाली ठाकुर की आवाज़ में, सवार लो।

मैसेजेस तो मेरे पास काफ़ी सारे हैं, लेकिन आई एम सॉरी, मैं सारे तो मैसेजेस इंक्लूड नहीं कर पाऊँगी भाई, ढेर सारे मैसेजेस हैं। और श्याम सुंदर जी गोवा से लिख रहे हैं, ये भी गाना सुनना चाहते हैं और लिख रहे हैं, इन्हीं सब में छोटी छोटी सी खुशियाँ छुपी हुई हैं। और मैसेजेस हैं, थैंक यू मैम, कैन यू प्लीज़ से प्ले अ सॉन्ग छू कर मेरे मन को, क्या गाना है, बहुत ही बढ़िया गाना है, टाइम होता तो मैं ज़रूर प्ले करती। उर्मिला ये लिख रही हैं वेस्ट बंगाल से, मैडम जी थोड़ा भोपाल वालों पर भी ध्यान दे दो। अरे भोपाल वाले जी, आपने देखो इतने सारे मैसेजेस, ये पता है क्या होता है, आप एक मैसेज लिखते हो ठीक है, उसके बाद आप 10 मिनट के बाद पेशेंस लूज करके दोबारा लिख देते हो, तो आपका मैसेज अब क्यू से हटके वो फिर दूर कहीं पहुंच जाता है। तो थोड़ा पेशेंस रखा करो, एक मैसेज लिखने के बाद वेट किया करो, नहीं तो वो मैसेज गायब हो जाता है। तो भोपाल वालों पर मैं अगली बार ज़रूर ध्यान दूंगी। और ये गाना बहुत ही लंबे टाइम के बाद एक रिक्वेस्ट हुआ है, और ये मारिया जो क्लास 6 में है ये सुनना चाहती हैं मेरठ से। और ये गाना भी है, मोहित का मैसेज आया है विकासपुरी से, दिल्ली से, और ये गाना सोनू निगम की आवाज़ में। अब सारे गाने तो नहीं चल सकते, लेकिन आई एम श्योर ये गाना आपको अच्छा लगेगा, बहुत लंबे टाइम के बाद मैंने भी सुना है, फ्रॉम द मूवी चॉकलेट। बस इसी उम्मीद के साथ कि आज हर गाना आपके दिल को थोड़ा सा छू गया होगा, मुस्कुराने की वजह दे गया होगा। दिस इज़ आरजे खुशी साइनिंग ऑफ फॉर द डे। अपनों के साथ संडे बिताइए, मुस्कुराते रहिए, और याद रखिए कि जिंदगी की प्लेलिस्ट में ना खुशियों का वॉल्यूम हमेशा हाई।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: हेलो नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त गीते कौनियाल और लेकर आई हूँ आपके लिए आप ही का अपना प्रोग्राम जिसे आप कहते हैं छोटे उस्ताद। जब हमारे आशियाने का जिक्र होता है तो हमारे

नन्हे उस्ताद हमेशा हमारे दिलों में राज करते हैं और हम जहाँ कहीं भी क्यों ना हो उनका जिक्र जरूर करते हैं कि हमारे घर के उस्ताद, हमारे घर के बच्चे ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, क्योंकि भाई वो होते ही इतने प्यारे हैं कि हर वक्त जबान पर उनका नाम रहता है। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल और आज आपसे बात करूँगी अपने घर के उस्तादों के बारे में कि कैसे जब हम उनके साथ कदम पर कदम मिलाकर आगे बढ़ते हैं तो उनके लिए एक रास्ता बन जाता है। चलते वो हैं लेकिन सिर्फ हाथ पकड़कर हम उन्हें उन्हें रास्ता दिखाते हैं। कहते हैं कि जब हम बच्चों के साथ ना खुद परफॉर्म करने लगते हैं तो बच्चे ऑटोमेटिकली वो सब करने लगते हैं जो हम चाहते हैं। तो जो हम चाहते हैं बच्चे वो करें, उसके लिए ज़रूरी है कि हम भी वो सारे काम करें जिनकी उम्मीद हम अपने बच्चों से करते हैं। तो आज इसी टॉपिक पर आपसे बातें होंगी बहुत सारी। तो आपके घर के उस्ताद हमेशा उड़ने के लिए तैयार रहते हैं, तो आप भी अपने पंख फैलाइए और कहिए फिर से उड़ चला।

पता है हमारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हमारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम जो जीवन में नहीं हासिल करना चाह कर पाए और जो करना चाहते थे वो ताउम्र अपने दिल में एक रिग्रेट लेकर जीते हैं, और इसी वजह से कहीं ना कहीं हमारे उम्मीद, हमारे अरमान हमारे बच्चों पर निकलते हैं और हम ये सोचते हैं कि मैं वो हासिल ना कर सका तो क्या हुआ, मैं अपने बच्चे को वो हासिल करने के लिए मजबूर करूंगा। आए हाय, बस यहीं पर आपने कत्ल कर दिया अपने अरमानों का और अपने बच्चों के अरमानों का, जहाँ आप मजबूर कर देते हैं बच्चे को वो काम

हैं, ये कहते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे। क्या सक्सेस का पैरामीटर आप खुद भी जानते हैं कि क्या है? क्या आप जानते हैं कि ऐसा करने से, यानी कि जो आप सोच रहे हैं वैसा करने से सक्सेस मिल जाएगी? कभी सोचा है? आप जब वो सपने देखा करते थे तब जिंदगी कुछ और थी, कंपटीशन कुछ और था। आज समय बदल गया है, आज प्रायोरिटीज़ बदल गई हैं, पढ़ने का, पढ़ाने का, ज़िंदगी में चीज़ों को लेने का तरीका बदल गया है, आप बदल गए हैं, ये दुनिया बदल गई है। और आपके बच्चे वो कैसे बदलेंगे जनाब? वो तो बस इस दुनिया से अपना ताल्लुक रखते हैं, और क्योंकि वो इस दुनिया से अपना ताल्लुक रखते हैं तो इस दुनिया के साथ ही कदम से कदम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैं इतनी सारी बातें क्यों कह रही हूँ? वो इसलिए कह रही हूँ, ये जो अपने बच्चों पर बात बात पर हमें अपने अरमान थोपने की आदत सी जो हो गई है, कहीं ना कहीं हमें फ्रस्ट्रेट करती है और परेशान करती है हमारे बच्चों को। निश्चित रूप से अपने बच्चों पर हमें काम करना होता है, लेकिन काम करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, मजबूर नहीं प्रेरित करने के लिए क्या कुछ करना है ये जानने की आवश्यकता है। आप बस बच्चों पर अपनी चीज़ें थोपकर उनसे पंगा मत लीजिएगा, क्योंकि ये आज की जनरेशन है जिसे आप आगे चलकर, यानी कि आज के दौर में आज की यंगस्टर्स को आप जेन जी कहते हैं। जेन जी से पहले भी वो जीवन में समय आता है जिसे हम स्कूल टाइम कहते हैं, और इसी वक्त में बच्चों पर सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होती है।

0: माँ हमें जीवन देती है और पेड़ उस जीवन को सांसें देते हैं। इस बार
1: माँ के सम्मान में, धरती माँ के उत्थान में
0: दिल्ली वन एवं वन्य जीव विभाग लेके आ रहा है मिशन 70 लाख पौधारोपण अभियान, एक पेड़ माँ के नाम।
1: दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ा वन भागीदारी पौधारोपण अभियान, जिसका शुभारंभ 7 जुलाई को माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के कर कमलों से होगा।
0: अधिक जानकारी या पौधारोपण स्थल पर अपना स्लॉट बुक करने के लिए www.greendrive.delhi1mahotsav.in पर जाएं या 8588999799 पर कॉल कीजिए।
1: अगर आपके पास पौधा लगाने की जगह है तो वृक्ष रथ को बुलाइए या नर्सरी लोकेटर की मदद से अपनी नजदीकी सरकारी नर्सरी से निशुल्क पौधा प्राप्त कीजिए।
0: और अगर आप चाहते हैं कि आपका ये संकल्प सिर्फ एक पौधे तक सीमित ना रहे तो बनिए एनवायरमेंटल सेवियर और दिल्ली सरकार के साथ जुड़कर दिल्ली को और ज्यादा स्वच्छ, हरित और स्वस्थ बनाए।

वेलकम बैक, मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त गीते कौनियाल। प्रोग्राम चल रहा है छोटे उस्ताद, और छोटे उस्ताद में अपने बचपन के दिन ज़रूर याद आते हैं जब इस शो को करती हूँ। याद है आपको किस तरह से बारिश के मौसम में, जैसे ही बरसात शुरू होती, जैसे ही बारिश शुरू होती, और आप एक मौका ढूंढते और घर के बाहर निकल जाते, बारिश में खूब भीगते और भीग कर वापस आने के बाद भले ही माँ से एक थप्पड़ ज़रूर खाते लेकिन क्या खूबसूरत दिन थे वो, बाय गॉड, है ना। कागज़ की कश्तियाँ बनाना और घर के बाहर जो पानी बह रहा होता है उन कश्तियों को चलाना, पहले तो ज़िद करना कि क्या हम बारिश में भीग लें, और दिन के वक्त, ख़ास तौर इस वक्त 2 बजे के दौरान, जैसे कि आज मौसम हुआ हुआ है दिल्ली में और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में, ऐसे में अगर दिन के वक्त माँ सो रही होती है तो आँख मूंद के बाहर निकलाना बिना शोर किए, और बस बारिश में खूब नहाना, इतना नहाना कि जैसे पूरे साल भर की जो बारिश है वो इकट्ठी कर ली, खुशियाँ इकट्ठी कर ली, और उसके बाद जब घर पहुंचना, फिर भले ही डांट फटकार के बाद भी ना सुधरना, कहीं ना कहीं उस बचपन की मिसाल है जो आज कहीं ना कहीं मिसिंग है। हम इतने प्रोटेक्टिव हो गए हैं, इतने पोजेसिव हो गए हैं कि बच्चे को छींक भी ना आए हमेशा उसे रोकते टोकते रहते हैं। क्यों करते हैं हम ऐसा, क्यों अपने बच्चों को गलतियां नहीं करने देते? क्योंकि कहते हैं कि आपका बच्चा जब गलतियां करता है ना तो उन गलतियों से सीखता है। हम गलतियां उनसे करवाएं वो बात दूसरी है, उस बात में हमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन अगर बच्चा खुद डिसीजन लेके कोई गलती कर देता है तो उस

हम इतना फटकारते हैं, इतना डांटते हैं और ये भूल जाते हैं कि हम भी तो कई बार बच्चों पर बहुत सी बातें थोपा करते हैं, और जब उनके नतीजे सही नहीं निकलते तब कहते हैं कि तुमने ही कोई चूक करी होगी। वैसे एक बात कहूँ, अभी अगर आपके बच्चे आपसे ज़िद कर रहे हैं कि हमें बाहर जाने दीजिए, छत पर जाने दीजिए, बालकनी में जाने दीजिए, और हमें थोड़ी देर बारिश के आगोश में कुछ कुछ बूंदें भर लेने दीजिए, ऐसा कीजिएगा, उनके साथ साथ आप भी बाहर चले जाइएगा। क्योंकि कहते हैं कि जब जब हम बच्चे के साथ उसकी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी जो लर्निंग प्रोसेस है ना, उसकी जो सीखने की क्षमता है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। सबसे पहले इसलिए क्योंकि वो आपसे परमिशन लेकर, आपको बताकर पूरी तरह से उस माहौल में अपने आप को डुबो लेता है, और दूसरा जब छोटे बड़ी प्रश्नों के माध्यम से वो आप तक पहुंचता है तो कहीं ना कहीं आप भी उसकी जिज्ञासाओं में उसके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं और बड़े प्यार से कहते हैं चक तुम।

समय हो गया 2:22 में हूँ आपके साथ, आपकी दोस्त गीतिका ओनियाल, और प्रोग्राम चल रहा है छोटे उस्ताद, जहाँ हम जिक्र कर रहे हैं कि कैसे हम अपने बच्चों से बहुत कुछ उम्मीद करते हैं लेकिन ये भूल जाते हैं कि हम अपने सपने अपने बच्चों पर नहीं थोप सकते। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ज़िंदगी में कोई मुकाम हासिल करें, वो सपना पूरा करें, चाहे वो खुद का हो चाहे वो सपना आपका देखा हुआ हो, लेकिन कहते हैं कि प्लान को अगर एग्जीक्यूट ढंग से किया जाता है तो सक्सेस यानी कि सफलता निश्चित होती है। अब हमारी आदत है कि हम वो सब अपने बच्चों से करवाना चाहते हैं जो हम खुद नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे खूब किताबें पढ़ें लेकिन हम क्या करते हैं, खुद भी किताबें कभी नहीं पढ़ते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे टीवी मोबाइल ज़्यादा ना देखें लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा आधा से ज़्यादा वक्त टीवी मोबाइल में जाता है, रील्स देख देख के स्वैप करते रहते हैं। और जब फ़ोन हमारे बच्चे के हाथ में होता है तो हम यही कहते हैं, जब देखो फ़ोन पर अपना वक्त ज़ाया करते हो, कुछ और नहीं करते हो। यकीन मानिए, ये जो सीख आप अपने बच्चे को दे रहे हैं, कभी अगर आपका बच्चा आपसे पूछे कि आप जब देखें मोबाइल पर रहते हैं हमें समय नहीं देते हैं, क्या आपके पास इस बात का कोई जवाब होगा? नहीं होगा। आप उल्टा उन्हें फटकारेंगे और ये कहेंगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने माता जी पिताजी को, अपने पापा मम्मी को इस तरह से बोलने की, जबान अपनी कंट्रोल में रखो। गलत बात है ना, आप भी तो कुछ गलत कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आपका बच्चा खुद को ट्रांसफॉर्म करे, खुद को चेंज करे। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा खूब स्पोर्ट्स के लिए घर से बाहर निकले लेकिन आप खुद भी क्या करते हैं, घर के अंदर बंद रहते हैं। क्या कभी सोचा है कि अगर हम भी वो सब काम करें जिन्हें हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा करे, तो आपको लगता है कि इसके परिणाम आपके हित में होंगे? बिल्कुल होंगे। कुछ दिन किताबें पढ़कर देखिए, एक तो खुद को सुकून मिलेगा और जब आपका बच्चा आपको किताबें पढ़ते हुए देखेगा तो उसके मन में क्षण भर के लिए जिज्ञासा ज़रूर होगी कि ऐसा तो कुछ ज़रूर है इन किताबों में जो पापा मम्मी जब देखो ये किताबें पढ़ते रहते हैं। आपको गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक है तो आप पौधों को पानी दीजिए, आपके बच्चे को ज़रूर इस बात का इल्म होगा कि कुछ तो ऐसी बात है इन पौधों में जो पापा रोज़ इन पौधों में पानी देते हैं। तो जो काम हम निरंतर करते रहते हैं वो काम कहीं ना कहीं हमारे बच्चों की आदतों में शुमार हो जाते हैं। तो अपने बच्चों को ये कहना कि ये काम करो, इससे बेहतर ये है कि आप अपने बच्चे को कहने से पहले ही उस काम को करना शुरू कर दीजिए। उसके बाद हो सकता है कि आपके बच्चे को आपको पुश करना पड़े, उसके बाद भी आपका बच्चा ना माने आपकी बात, लेकिन जब आप खुद करेंगे तो उसके फ़ायदे आप अपने बच्चों को ज़रूर बता पाएंगे। और निश्चित रूप से बच्चा जब आपको करता हुआ देखेगा तो उसे महसूस होगा कि हाँ, ये जो काम माता जी पिताजी कर रहे हैं, पापा मम्मी कर रहे हैं, इसमें कुछ तो बात है। और क्योंकि आपके बच्चों में कुछ तो बात है, जब वो उस काम को करेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि अपनी सोच समझ का जब इस्तेमाल करेंगे, तो आपको एक बदलाव खुद ब खुद नज़र आने लगेगा। आपका बच्चा खुद ब खुद

हमको करने लगेगा। हो सकता है कि आज ना करे उस काम को, वो 4 साल, 2 साल, 10 महीने बाद करे, लेकिन करेगा ज़रूर, क्योंकि कहते हैं कि हम अपने माता पिता का ही अक्स होते हैं। तो माता पिता का अक्स बनने के लिए ज़रूरी है कि पहले माता पिता अपने ऊपर खूब काम करें, जिससे कि बच्चा भी आपकी तरह आपकी राह पर चले।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

वेलकम बैक, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका। ऑनियल प्रोग्राम चल रहा है छोटे उस्ताद, और छोटे उस्ताद में हम तमाम तरह की बातें आज डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके जो बच्चे हैं, आपके जो उस्ताद हैं, आपके आशियाने का एक अहम हिस्सा है, इन पर आप पूरा पूरा ध्यान दें, क्योंकि कल चल कर जब ये एक बेहतर इंसान, एक बेहतर नागरिक बनेंगे, तो सबसे पहले यही कहेंगे मेरे माता पिता ने मुझ पर बहुत काम किया है। कहते हैं कि कभी कभी ना हम परोक्ष, कभी कभी अपरोक्ष रूप से जो है अपनों पर या दूसरों पर प्रभाव डालते हैं। अब एक बच्चे के लिए उसके माता पिता उसकी लाइफ के हीरो हीरोइन होते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि हमारे माता पिता हमारे लिए सब कुछ करते हैं, और दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं जो वो नहीं कर सकते। हम कहते हैं हमें ये चाहिए तो वो तुरंत हमारे लिए वो काम कर देते हैं, और हमारी उम्मीदें, हमारा बस हमारे माता पिता पर चलता है। साइकोलॉजी के मुताबिक ये कहा जाता है कि वो पिता जो घर में ब्रोकन चीज़ें, टूटी हुई चीज़ों को जोड़ने में विश्वास रखते हैं, वो कुछ अलग तरीके के फादर्स होते हैं। वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं भले ही वो चीज़, वो सामान बहुत तुच्छ सा हो, लेकिन पिता को जब ये लगता है कि इस सामान को भले ही एक नए सामान से रिप्लेस किया जा सकता है, एक नया सामान, एक नया गैजेट या कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी हमें ज़रूरत है और वो ख़राब हो गई है घर पर, उसको हम रिप्लेस कर पैसे देकर ज़रूर खरीद सकते हैं, लेकिन वो पिता जो ये मानते हैं कि रिप्लेस करने से अच्छा अगर हम उस ऑब्जेक्ट को ठीक कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने बच्चे की याददाश्त, उसकी मेमोरीज़ और जो एक परिवार का ताल्लुक होता है अपने फेलो मेंबर्स के साथ, और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है। कहीं ना कहीं उस पिता की अपने बच्चे के साथ इमोशनल बॉन्डिंग हो जाती है। अब जब मैं ये बात आपसे कह रही हूँ, सोचिए किस तरह से बचपन में जब आपके पापा घर पर किसी टूटी हुई चीज़, मान लीजिए साइकिल, जब उसे घर पर खुद रिपेयर करते थे, आँखों के आगे वो चित्र याद आ रहा है ना, टीवी जब ख़राब हो जाया करता था, घर की ट्यूबलाइट, टेस्टर, जब ट्यूबलाइट ना जलती हो तो टेस्टर से चेक करते और देखते कि ट्यूबलाइट ख़राब हुई है, क्या दिक्कत है, कोई भी घर की इलेक्ट्रिक चीज़ जिसको ठीक करने में वो अपना जोर लगा देते, भले ही बाद में उसे खरीद कर लाया जाता अगर वो ठीक ना हो पाती, लेकिन पहले कोशिश क्या की जाती कि उसे ठीक की जाए। तो साइकोलॉजी ये कहती है कि जिस घर में पिता चीज़ों को रिप्लेस करने के बजाय उन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, वो अपने बच्चे की थिंकिंग पर, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग पर, उसकी इमोशनल वेलबींग पर, यानी कि उसकी भावनात्मकता पर बहुत गहरा असर डालते हैं। वो बच्चा अपने घर से बहुत ज़्यादा जुड़ाव रखता है, चाहे वो ज़िंदगी में आगे चलकर एक बड़े मुकाम पर क्यों ना पहुंच जाए, घर से दूर रहकर काम क्यों ना करे, लेकिन कहीं ना कहीं पिता की इस तरह की गतिविधि इमोशनल बॉन्डिंग का कारण बनती है, इस बात का प्रतीक होती है कि चीज़ों को जो इस घर में, एक घर में स्थापित की जाती हैं, जो एक घर में होती हैं, वो कितने मायने रखती हैं। जब एक चीज़ जिसको रिपेयर किया जाता है, नई चीज़ नहीं लाई जाती, पुरानी चीज़ को ही ठीक किया जाता है, उसका अर्थ सीधे सीधे ये होता है कि हमें अपने घर के परिवारजनों के साथ मिलजुल कर रहना, इमोशनल बॉन्डिंग कहीं ना कहीं क्रिएट करती है पिता की ये ताकत, पिता का ये तरीका। और जब बच्चा करते हुए देखता है पिता को, तो कहीं ना कहीं एकता की भावना उसके मन में उमड़ घुमड़ कर पहुँचती है, उसके जहन से उसके काम में, और जब उसके काम में वो चीज़ समृद्ध हो जाती है, तो आगे चल के वो एक मुकाम हासिल करता है, और यही कहता है, जी बिल्कुल यही कहता है कि पापा मुझसे ना बहुत उम्मीदें रखते थे, और मुझे मालूम था कि मैं कहीं पहुँचूंगा तो ज़रूर, क्योंकि पापा जो जो करते गए मैं उनके साथ वो करता गया। हालांकि बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि माँ का गहरा असर होता है, पर यकीन मानिए माता और पिता दोनों का बच्चे के जहन पर, उसकी परवरिश पर, उसकी सोच पर असर होता है।

जी बिल्कुल, आपका बच्चा बड़ा नाम करेगा, बड़ा काम करेगा, लेकिन इनिशियल स्टेज पर, यानी कि जब आप प्रारंभिक दौर में होते हैं अपने बच्चे के साथ, आप भी होते हैं, यकीन मानिए आप भी होते हैं अपने बच्चे के साथ प्रारंभिक दौर में। उम्र अपने हिसाब से बढ़ती है, लेकिन उसका एक हर दौर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब बच्चा जन्म लेता है, दुनिया में आता है, उसकी हर एक गतिविधि आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब होती है, क्योंकि आप ये मानते हैं कि आप कि सबसे प्रिय जो खोज है, जो क्रिएटिविटी है, जो संरचना है, आपका बच्चा है। इसलिए उसकी हर गतिविधि, उसकी पहली बार चलने से लेकर ज़िंदगी में आगे बढ़ने तक आपके दिल में एक अहम जगह रखती है। आपके दिल का कोना हमेशा आपके बच्चों की हर छोटी बड़ी बात से प्रफुल्लित रहता है, और हम यही कहेंगे कि आपके लिए तो वो यादें बन जाती हैं, क्योंकि बच्चा हर रोज़ कुछ नया सीखता है, कुछ नया करता है और फिर अपने लिए ज़िंदगी मुकाम हासिल करता है। कुछ बातें हो सकता है बच्चे के मन में रह जाएं, कुछ बातें वो भूल जाए, लेकिन आपके लिए हर वो क्षण, हर लम्हा, हर साल बहुत महत्वपूर्ण होता है। हर क्लास, हर ग्रेड यहाँ तक कि फिर कॉलेज, फिर उस जिस जिस संस्था में वो काम करता है, जिस जिस मुकाम को हासिल करता है, उसकी शादी, कल चलकर उसके बच्चे, सब कुछ महत्वपूर्ण होता है ना। तो जब इतना कुछ हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो क्यों महत्वपूर्ण नहीं है वो क्षण जिस क्षण में आपके बच्चे को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है आपकी। हमेशा कहा जाता है कि माँ प्रथम गुरु है, माँ बच्चे को हर वो बात सिखाती है जिसके लिए बच्चा अपनी माँ के पास सबसे पहले जाता है। चोट भी लगती है तो माँ के पास जाता है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि पिता का दबदबा ज़्यादा होता है, या यूँ कह लीजिए कि पिता अपने कंधों पर सारा भार

उतार लेते हैं, ख़ास तौर पर वहाँ जहाँ पर सिंगल पेरेंट्स होते हैं, एक ही पिता है या माता ही है जो अपने स्पाउस का भी रोल अदा कर रहे होते हैं, तो वहाँ बच्चे के लिए पापा में ही मम्मी या फिर मम्मी में ही पापा दोनों मौजूद होते हैं, तो वहाँ जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पर सवाल यहाँ पर ये है कि हम अपने बच्चों पर अपने सपनों को ना थोपें, हम अपने बच्चों को आज़ादी दें कि वो अपने लिए सपने खोज सकें। सोचिए सपने बुनना कितना ज़्यादा ज़रूरी, उसके लिए ज़रूरी बताऊँ क्या है, उसके लिए हम ना अपने बच्चों के साथ बातें कर सकते हैं, उन्हें सपने दिखाने का काम कर सकते हैं। सपना क्या देखेगा ये उसकी अपनी क्रिएटिविटी है, लेकिन उस क्रिएटिविटी में आपका बहुत बड़ा योगदान होगा कि आपने अपने बच्चे से किस तरह की कहानियाँ बुनी हैं, किसका जिक्र किया है, किनका जिक्र किया है। जब अकेले में आप अपने बच्चे के साथ समय गुजारते हैं तो आप किस बात का जिक्र सबसे ज़्यादा करते हैं, यकीन मानिए आपका उन बातों का जिक्र करना जो कल उसके भविष्य का निर्माण करेगा या फिर उसको सपने बुनने में मदद करेगा, आपकी कहानियों पर निर्भर है। किन लोगों को सम्मिलित करते हैं, किन जगहों को सम्मिलित करते हैं, किन चीज़ों को सम्मिलित करते हैं। और सच बताऊं, अब वो ज़माना गया, वो दौर गया जब हम ये सोचते थे कि रट्टा मारा और पास हो जाएंगे, लेकिन ज़िंदगी की ये जो किताब है, यहाँ अपने बच्चे को आपको हमेशा सफलता दिलानी है और उसको लाइफ स्किल सिखाने हैं और सिखाना है। सिर्फ रट्टा मार देने से ही ज़िंदगी नहीं चलती, ज़िंदगी को समझने के लिए, ज़िंदगी से जीतने के लिए ज़रूरी है कि हम चीज़ों में इन्वॉल्व हों और उनके आउटकम्स को जाने, उनके आउटकम्स को समझें। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप खुद इन्वॉल्व हों, यकीन मानिए, यकीन मानिए, बहुत बड़ा बदलाव आप खुद देखेंगे अपने बच्चे के अंदर।

जैसे सही बताएं कि वो बच्चे जो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो सोचते हैं, समझते हैं और इंटेंसिव एक्सटेंसिव रीडिंग करते हैं, उनको रट्टा मारने की भी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और जब इनिशियल स्टेज पर आप अपने बच्चे की राइटिंग स्किल्स पर बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तब तो आपके बच्चे को रट्टा मारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए कहती हूँ कि आप नियमित रूप से ना लिखते रहिए। अब आप कहेंगे कि इसका ताल्लुक हमारे बच्चे के साथ क्या है? जब आपका बच्चा ये देखेगा कि आपको लिखने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो कहीं ना कहीं वो भी अपनी आदत में शुमार कर लेगा लिखने को, यानी कि वो भी लिखेगा। जब वो देखेगा रोज़ रात आप सोने से पहले कुछ लिखते हैं, आप कविताएं लिखते हैं या कुछ ना कुछ आपको लिखने की आदत है, तो बच्चे के अंदर भी ये भावना उत्पन्न होगी, इंस्टिल होगी कि हमें भी लिखना चाहिए, और उससे फ़ायदा सबसे ज़्यादा आपके बच्चे को होगा। बहुत से बच्चे रट्टा मारते हैं, लेकिन जिस तरह से अब एजुकेशन पॉलिसीज आने के बाद आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप चीज़ों को समझें और उसको अपने शब्दों में बयां कीजिए, और सच मानिए ये कहीं ना कहीं आपके बच्चे के लिए मददगार साबित होता है। जब आपका बच्चा पूरा पूरा चैप्टर आपको सुना देता है, होता है होगा आपके साथ, आप अपने बच्चे को वो 10 आंसर्स लर्न करने के लिए ना बोलें, आप ये कहिए कि पूरा चैप्टर पढ़ो और फिर मुझे सुनाओ, और उससे ना छोटे बड़े क्वेश्चंस फ्रेम कर पूछिए, देखिए कैसे आपका बच्चा तुरंत आप तक पहुंचाएगा वो बात जिसे सुनने के लिए आप आतुर हैं। यानी कि सही आंसर, हम यही तो चाहते हैं हर वक्त अपने बच्चों से कि बस उनका जो जवाब होना हमेशा सही हो। बस खुद ये भूल जाते हैं कि हमने कितने सवालों का जवाब उन्हें दिया है या नहीं दिया है। हमेशा याद रखिए, आपका बच्चा जो भी सवाल आपसे पूछे उसका जवाब ज़रूर दीजिए उसे।

वेलकम बैक, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीते का अनियाल। प्रोग्राम चल रहा है छोटे उस्ताद, और छोटे उस्ताद हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी वजह से ही हमारे घरों में रौनक है। और हमारा फर्ज बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। अब ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने के लिए ज़रूरी है कि हम उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बात करें। कभी कभी तो हमारी उपस्थिति ही बिना बात किए ही उनके जहन में एक अमिट छाप छोड़ती है। हम जो करते हैं, हम जो कहते हैं, हम जैसे व्यवहार करते हैं दूसरों के साथ, कहीं ना कहीं उनके जहन में एक दृश्य बनाती है, एक चित्र बनाती है जो उनके लिए आगे चलकर बहुत कारगर साबित होता है। तो सोच कर समझ कर अपने मुख से, अपने मुंह से शब्द निकालिए, क्योंकि शब्द मायने रखते हैं। और ख़ासतौर पर जब घर में बच्चे छोटे हों तो आपकी बात को बहुत जल्दी कैच करते हैं, और क्योंकि आपकी बात को जब वो कैच करते हैं तो आप अक्सर उनके मुंह से कुछ ना कुछ शब्द सुनते हैं। यकीन मानिए, वो शब्द उनके अपने नहीं, आपके हैं। इसलिए थोड़ा ध्यान देकर

आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी ब्लेसिंग आपके बच्चे हैं। उनकी परवरिश के साथ साथ आपको उनकी सुरक्षा का बेहद ख्याल रखना है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि भले ही आप जो जीवन में चाहते हैं, आपकी जो एम्बिशंस हैं, आप निश्चित रूप से उन्हें पूरा कीजिए, लेकिन कभी भी अपने एम्बिशंस के चलते अपने बच्चों की सिक्योरिटी को सेकंड पोजीशन पर ना रखिए, क्योंकि आपके बच्चे हैं तो आपका जीवन है। और अगर हमारे घर में हमारे बच्चे ना हो तो जीवन कुछ नीरस सा है। तो याद रखिए, यकीन रखिए कि आपके बच्चों को आपकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। फिलहाल गीतिका आपसे लेती है इजाज़त, होगी आपसे फिर मुलाकात। मुलाकात का समय जी 4:05 से हम आपके साथ हाजिर होंगे। वैसे 4:05 से आपके लिए स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम रहेगा और उसके बाद आपका पसंदीदा रिनबू जीनियस लेकर आएगी नाचीज गीतिका। और फिलहाल आपसे लेती है इजाज़त, होगी मुलाकात एक घंटे बाद। टेक केयर।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।

0: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। नमस्कार, रेडियो डॉक्टर के साथ आ गई है आपकी दोस्त शालिनी मित्तल। स्वीकार करिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। प्रतिदिन आप जुड़ते हैं हमारे साथ आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल पर 102.6 पर और साथ ही साथ प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी आप सुनते हैं। क्या सुनते हैं? प्रतिदिन रेडियो डॉक्टर सुनते हैं ना। और बिल्कुल हमारे साथ कैसे जुड़ते हैं ये तो आप जानते हैं। और आपको बता दें कि आज का जो अंक है बहुत खास इसलिए है कि हम फिटनेस की बात करेंगे। लेकिन कैसे जुड़ेंगे, आप अपने प्रश्न कैसे पूछेंगे वो भी आपको थोड़ी देर से बताएंगे। क्या है फिटनेस आपके हिसाब से? क्या शारीरिक रूप से आप स्वस्थ हैं या पतले दुबले हैं तो आप फिट कहेंगे अपने आप को, या मेंटली अगर आप फिट हैं तो फिट कहेंगे अपने आप को? क्या डेफिनेशन होती है एक फिट आदमी की? ये सारी बातें आज हमें लगता है इस कार्यक्रम के बाद आप पूर्ण रूप से समझ जाएंगे। और ये समझाने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है दो ऐसे विशेषज्ञ जो अपने अपने क्षेत्र के जानकार हैं। तो आपका इंट्रोडक्शन कराना चाहेंगे हमारे दो गेस्ट से। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मधु खुराना, आप योग स्पेशलिस्ट हैं, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग में आप काम करती हैं। आप पिछले 13 साल से थेरेपी और योग टीचिंग के साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार।
1: धन्यवाद मैम।
0: और हमारी दूसरी आज गेस्ट हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट डॉक्टर रीता गंगवानी, आप पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट कोच हैं। आपको ऑनर किया जा चुका है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा। नमस्कार और स्वागत।
1: शुक्रिया मैम, थैंक यू।
0: तो अपने श्रोताओं को बता दें कि आज का हमारा विषय है फिटनेस मंत्र। इंटरनेशनल डे ऑफ योग का महत्व क्या है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और सारी बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एक दिन की एक महीने की बात नहीं है, फिटनेस हमारे जिंदगी का जीने का तरीका है। और सबसे पहले मैं चाहूंगी डॉक्टर मधु खुराना आप बताइए व्हाट इज फिटनेस अकॉर्डिंग टू यू।
1: जैसे कि मैम अभी आपने कहा कि क्या फिटनेस सिर्फ शरीर की आकृति से सीमित है कि आप दुबले पतले हैं तो क्या फिट हैं? ऐसा नहीं है। आपने बहुत बार ऐसे इंस्टेंसेस देखे होंगे कि लोग बहुत ज्यादा जिमिंग करते हैं, वो दिखने में तो दुबले पतले दिखते हैं बट मानसिक रूप से तनाव से ग्रसित हैं। और बहुत ज्यादा आजकल हार्ट अटैक और इस प्रकार की जो है आप देखेंगे लोगों में लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डायबिटीज, हाई बीपी, इस तरह की समस्याएं आ रही हैं, चाहे लोग दुबले पतले क्यों ना हो। जैसे PCOD जिसे अब PMOS बोला जा रहा है, इस तरह की समस्याएं महिलाओं में बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल रही हैं, चाहे वो दुबली पतली ही क्यों ना हो। तो मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। हमारे आयुर्वेद में भी कहा गया है समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना स्वस्थ इति विधीयते। यानी जब कि आपके समदोष यानी दोषास वात पित्त कफ बैलेंस हो, समअग्नि आपके अंदर अग्नि जो है डाइजेस्टिव फायर है वो बैलेंस्ड हो, समधातु सप्त धातु से हमारा शरीर बना है वो बैलेंस्ड हो, मलक्रिया प्रॉपर एक्सक्रीशन हो, प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना दैट इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि प्रसन्न है हम आत्मा से, इंद्रियों से, सेंसेस हमारी कंट्रोल्ड है मन से, तभी हम कह सकते हैं स्वस्थ कि हम फिट हैं, स्वस्थ हैं। ऐसे ही अगर हम देखें जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO ने भी कहा है कि अगर आप सोचते हैं कि आपको कोई बीमारी नहीं है सिर्फ तो आप फिट नहीं है। अगर आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से जो है स्वस्थ हैं तभी हम कह सकते हैं कि आप फिट हैं। इसमें एक फोर्थ कंपोनेंट आध्यात्मिक भी ऐड किया गया
0: जी,
1: है
0: बिल्कुल
1: जी। तो अगर आप इन सब से अगर आप समझ पाते हैं कि आप फिजिकली भी अपने आप को फिट समझते हैं कि आपके अंदर कोई रोग नहीं है, ठीक है, और ऐसा फील कर रहे हैं आप, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके रिपोर्ट्स में ऐसा दिख रहा है, आप ऐसा अनुभव भी करते हैं, मानसिक रूप से भी आप खुश हैं, तनाव नहीं है आपको, कोई भी समस्या हो लाइफ में आप उसे जो है हैंडल कर पा रहे हैं, मैनेज कर पा रहे हैं,
0: ये भी इम्पोर्टेंट है।
1: इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि तनाव तो देखिए सिचुएशंस तो ऐसी रहेंगी हमारे आसपास, बट क्या आप उसमें समत्वम जिसे हम बोलते हैं योग में उसे अटेन कर पा रहे हैं कि सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, जय हो, पराजय हो, आप बैलेंस्ड हैं। इसे भगवद गीता में स्थित प्रज्ञ भी कहा जाता है। क्या आप उस स्थिति के आसपास भी हैं और आप सामाजिक रूप से उससे जुड़ पा रहे हैं? जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि योग जो है वो एक एक्सरसाइज नहीं है, योग जो है वो खुद से जुड़ना, उसके बाद आप विश्व से जुड़ रहे हैं और प्रकृति से जुड़ना है। तो क्या आप इस प्रकार इस हर लेवल पर जुड़ पा रहे हैं तो ही हम कह सकते हैं कि हम फिट हैं, हम स्वस्थ हैं।
0: जी, बहुत बहुत जरूरी बातें आपने यहाँ पर बताई हैं कि योग को भी आपने बताया, हम फिटनेस को एज अ होल लेके चल रहे हैं। बहुत तरीके होते हैं लोगों के अपने फिट रखने के लिए, कई लोग जिम जाते हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं, कुछ योग करते हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम सारी बातें चाहेंगे हमारे श्रोताओं तक पहुंचे। और डॉक्टर रीता हमारे साथ हैं। रीता जी ये बताइए आपके हिसाब से व्हाट इज फिटनेस।
2: मैं मधु जी के साथ बहुत सहमत हूं कि लोग यही समझते हैं कि जिम जाना, डाइट करना, वेट लॉस, यही आप फिटनेस को मानते हैं। इन्हीं के

0: जो इन्होंने डिस्क्राइब की अलग-अलग धारणाएं, उनमें मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि धरती पांच तत्वों से बनी है, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश और अग्नि। और आप देखें कि भगवान ने पांचों के पांचों जो भी तत्व हैं वो बराबर रखे हैं। एक ज्यादा होता तो हम रहने लायक यहां नहीं होते धरती पे। वैसे ही एक इंसान की एज अ पर्सनैलिटी कोच जो मैं देखती हूँ, वो ये देखती हूँ कि फिटनेस के भी पांच तत्व हैं, फिजिकल यानी कि अच्छा दिखना, इमोशनल अच्छी सोच रखना, स्पिरिचुअल खुद पे विश्वास होना, कल्चरल ऊंच नीच का भेदभाव न करना, और साथ में सोशल लोगों के बीच में उठने बैठने की तमीज। मैं कुछ इस हिसाब से देखती हूँ कि ये पांचों भी बैलेंस होने चाहिए, क्योंकि आजकल के जमाने में ये चीजें भी देखी जाती हैं जो फिटनेस में ही आती हैं। तो फिटनेस मेरे हिसाब से इन पांचों तत्वों का, फिजिकल तत्वों का बैलेंस है जो आपको जिंदगी में बहुत आगे लेके जाएगा। बस आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि तत्व कौन सा कम है मुझ में।
1: जी, जी।
0: ये पता कर लेंगे जिस दिन और बैलेंस कर लेंगे तो डेफिनेटली जिंदगी में बहुत आगे जाएंगे।
1: जी, तो अगर ऐसा कोई तरीका है कि इसको कैसे जज करना है तो वो भी हम आज डॉक्टर रीता से जरूर जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे श्रोता हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं और हमारी कोशिश यही होती है कि हर तरह से हम उनको स्वस्थ रहने की दिशा में प्रोत्साहन दे सके। आपका कोई फिटनेस मंत्र है या आपकी कोई डेफिनेशन है फिटनेस की, वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो यहां पर एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे और एक प्यारा सा गीत सुनकर वापस आएंगे, लेकिन आप हमारे साथ रहिए क्योंकि बहुत सी बातें फिटनेस से रिलेटेड आज आपको जानने को मिलेंगी। सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर।

0: वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर और मैं हूं शालिनी मित्तल और मेरे साथ मेरे दो एस्टीम गेस्ट हैं डॉक्टर मधु खुराना और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट डॉक्टर रीता गंगवानी. बहुत सारे मैसेजेस भी आप लोगों के आ चुके हैं और फोन कॉल्स पर भी हमारे गेस्ट हमारे लिसनर्स मौजूद हैं. तो पहले फोन कॉल ले लें मैम.
1: जी
0: चलिए. हेलो
2: हेलो
0: जी नमस्कार स्वागत कार्यक्रम में आपका.
2: राजेंद्र मेरा नाम है और मैं करमपुरा दिल्ली से बोल रहा हूँ.
0: जी पूछिए अब सवाल.
2: हाँ पहले तो शालिनी मैम को शालिनी भाई नमस्कार.
0: जी नमस्कार.
2: और बॉस मैम को भी नमस्कार. मेरे ना तीन चार छोटे छोटे सवाल हैं प्लीज. पहला सवाल मेरा ये है कि चूंकि ये मशीनी युग है तो जाहिर सी बात है महीनों काम सेकंडों मिनटों में करके देने हैं, तो इसके लिए हमें कुछ ऐसे टिप्स बताएं कि क्वालिटी और स्पीड और कंसंट्रेशन के साथ हम काम कर सकें, कोई डाइट कोई एक्सरसाइज. दूसरा सवाल मेरा ये है कि दिमागी तौर पर फिटम फिट गुडम गुड रहने के लिए कई लोग अखरोट खाते हैं और बादाम खाते हैं, कई लोग पिस्ता खाते हैं और केसर खाते हैं, तो इसमें से बेस्ट डाइट कौन सी होगी. तीसरा सवाल मेरा ये है कि मैंने ये नोट किया कि कई ऐसे शख्स होते हैं मैम कि वो होते पतले दुबले हैं पर फिर भी 25-25 किलो वेट उठा लेते हैं, और कई लोग होते हैं हट्टे कट्टे मुड़े तगड़े फिर भी उनसे 5 किलो वेट भी नहीं उठता, तो इस तरफ हमें क्या करना चाहिए. और चौथा और आखिरी सवाल वो ये है कि मैम क्या कहती है वॉइस जो हमारी आवाज होती है तो इसको मतलब मेलोडी में मधुर करने के लिए क्या कोई डाइट को एक्सरसाइज भी होती है क्या, जरा ये बताएं.
1: बहुत लोग ऐसे होते हैं जो दिखने में लगता है कि हट्टे कट्टे हैं बट उनमें इतना स्ट्रेंथ नहीं होता है. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस कि आपकी बॉडी में कितना फैट है, कितना मसल मास है, कितना फैट फ्री मास है, कितना वाटर कंटेंट है, और ओवरऑल आप कितना ज्यादा आपकी मसल स्ट्रांग है, आपकी बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल है. फिटनेस के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं कि कितना एंड्योरेंस है आपकी बॉडी में, कितना स्ट्रेंथ है आपकी मसल्स में और कितनी फ्लेक्सिबल है, तो इन सब लेवल पर हम फिटनेस को मेजर कर सकते हैं. तो हो सकता है कोई दिखने में ऐसा लग रहा हो बट दैट कैन बी एन इल्यूजन. जब तक कि आप डेली अभ्यास ना करें, रेगुलरिटी ना रखें अपनी रूटीन में दिनचर्या में, तब तक हम नहीं कह सकते. किसी को सिर्फ आउटर अपीयरेंस से हम जज नहीं कर सकते हैं. कई लोग बहुत दुबले पतले दिखते हैं बट वो जैसे कि उन्होंने बोला बहुत हैवी वेट भी उठा लेते हैं, तो उनका मेटाबॉलिज्म कैन बी गुड हाई एंड दिस इज पॉसिबल कि उनकी बॉडी में ज्यादा स्ट्रेंथ हो और मोर एंड्योरेंस हो. तो

0: इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपकी रूटीन आपके लाइफस्टाइल के ऊपर ये निर्भर करता है, सिर्फ जेनेटिक्स ही नहीं।
1: तो क्या होनी चाहिए रूटीन और लाइफस्टाइल जिससे कि हम इतने स्ट्रांग बन जाए?
0: जी, मैं तो योग एक्सपर्ट हूँ। योग ही सबसे पहले मेरे मन में आता है कि आप अगर रेगुलर जो है योग प्रैक्टिस करते हैं, जरूरी नहीं है कि आप 1 घंटा करें। अगर आपके पास आधा घंटा है, आप आधा घंटा करें, 45 मिनट्स है 45 मिनट्स करें, और अगर वो भी नहीं है तो 5 मिनट्स का वाइब ब्रेक जो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने जो है बनाया है, जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है। 5 मिनट का अभ्यास भी अगर आप करें तो आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, एनर्जी लेवल्स इम्प्रूव कर सकते हैं, यू कैन रिफ्रेश रिफोकस योर सेल्फ। तो अगर उतना भी नहीं तो आप अपने सिर्फ श्वास पे ध्यान दीजिए और रिलैक्स कीजिए, तो भी आप अपने आप से जुड़ रहे हैं और आप बेटर फील कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन नॉट जस्ट ऑन द बॉडी बट ऑल्सो ऑन द ब्रेथ, ऑल्सो ऑन द माइंड। तो उन सभी लेवल्स पे वर्क करना जरूरी है।
1: तो माइंड के लिए क्या कर सकते हैं, मेडिटेशन या कुछ?
0: जी मैम, हमारा ना जो पंचकोश का थ्योरी आता है जो उपनिषद से लिया गया, तित्री उपनिषद से, जिसमें माना गया है कि हमारा जो शरीर है वो सिर्फ फिजिकल आउटर बॉडी नहीं है। मॉडर्न साइंस तो ये समझती है कि हम सिर्फ ये आउटर बॉडी फिजिकल बॉडी है। योग कहता है कि हमारे 5 कोशास हैं, दे आर 5 लेयर्स ऑफ आवर एक्सिस्टेंस, जिसमें जो आउटर है वो अन्नमय है, विच इज मेड अप ऑफ फूड, कि हम कैसा आहार खाते हैं उस पर डिपेंड करता है। देन उसके बाद आ गया प्राणमय कोश, विच इज अ प्राणिक शीथ इन साइड अस, कि हमारे अंदर जो प्राणों का प्रवाह है वो किस प्रकार हो रहा है, कितना बैलेंस्ड है हमारी नाड़ीज में। देन आफ्टर दैट देर इज अ मनोमय कोश, विच इज अ मेंटल लेयर, मेंटल शीथ। उसके बाद एक विजडम लेयर आती है विज्ञानमय, एंड द इनर मोस्ट इज द आनंदमय, विच इज वेरी मच क्लोज टू अवर ट्रू नेचर, सच्चिदानंद, ब्लिसफुल शीथ हमारी आती है। तो ऐसा माना जाता है, योग वशिष्ठ में ऐसा कहा गया है कि जो डिजीज की शुरुआत होती है वो मनोमय कोष से होती है, मन से होती है। और जब हमारे हम मन से तनाव में होते हैं, चिंता में होते हैं या दुविधा में होते हैं किसी भी, तो लॉन्ग टाइम तक जब ऐसा रहे तो वो हमारे प्राणिक लेयर को इम्पैक्ट करता है नेगेटिवली, यानी आपकी ब्रीदिंग का तरीका बदल सकता है। आप गलत तरीके से श्वास ले रहे हो ऐसा संभव है, और फिर अल्टीमेटली वो रिफ्लेक्ट करता है एज अ डिजीज। तो आज जो हम किसी को कोई समस्या देख रहे हैं उसकी शुरुआत कई साल पहले से हो सकती है। ऐसा हो सकता है उस व्यक्ति को बहुत समय से तनाव रहा हो और उसने ध्यान ना दिया हो, उसकी प्राणिक शीत भी इम्पैक्ट हो गई हो, उसकी ब्रीदिंग हैफिजर्ड हो, पैल्पिटेशंस हो। आपने सुना होगा लोगों को कि बहुत ज्यादा हार्ट बीट बढ़ जाती है, एंग्जाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, नींद नहीं आ रही है ठीक से, और अल्टीमेटली वो रिफ्लेक्ट करता है एज अ डिजीज। तो अगर हम इन सभी लेयर्स पे काम करें, नॉट जस्ट ऑन द आउटर बॉडी, हम प्राणिक जो है शीत, उसके लिए प्राणायाम की प्रैक्टिस है, मनोमय के लिए हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो ध्यान के अभ्यास हैं उस पे प्राणायाम एंड ध्यान बोध, इस तरह की प्रैक्टिस, विजडम शीत जो हमारी जो है उसके लिए काउंसलिंग इज इम्पॉर्टेंट, योगिक काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी हम जो है अपने क्लोजेस्ट जो हमारा ट्रू नेचर है आनंद में उससे जुड़ सकते हैं, और हर परिस्थिति में हम जो है आनंद की स्थिति में रह सकते हैं, जो कि हमें स्वस्थ भी रख सकता है। और साथ ही साथ जो योग के विभिन्न कॉम्पोनेंट हैं, जिसमें कि हमारा आसन आ गया जो हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ पे काम करता है, आसन इन भवे दृढ़म ऐसा कहा गया हठ योग में, कि आसन करने से शरीर में दृढ़ता आती है, घृण संहिता के टेक्स्ट में इसका वर्णन मिलता है। और आसन इन रुजोहंती, यानी डिजीज को दूर करता है, और कुर्यात तदासनम स्थैर्यम आरोग्यम च लाघवम, यानी आसन करने से स्थिरता, आरोग्यता, डिजीज लेसनेस और लघुता, शरीर में लाइटनेस आती है। इस प्रकार और ततो द्वंद्वान विघातः, ऐसा हमारे पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है कि आसन करने से आपके फिजिकल, मेंटल सब तरह के कॉन्फ्लिक्ट जो है वो दूर होते हैं। तो इस तरह से हम अगर अष्टांग योग की प्रैक्टिस, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और अल्टीमेटली विच इज समाधि, तो अगर हम इसको फॉलो करते हैं, इस रूटीन को, हम डेफिनेटली इन सभी कॉम्पोनेंट्स का ध्यान रख सकते हैं।
1: जी, तो सुनिए श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कि ये फिटनेस इतना एक छोटा सा या ऊपर दिखने वाला एक वर्ड नहीं है, ये कितना डेप्थ रखता है। बहुत सारी बातें डॉक्टर मधु ने बताई, बहुत सारे हमारे श्रोता फोन लाइन पर भी वेट कर रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। हेलो।
2: हेलो
1: जी, अपना नाम बता दें।
2: मेरा नाम विश्व आसिफ खान है मैम।
1: जी, कहाँ से बोल रहे हैं?
2: यूपी मेरठ से बात कर रहे हैं।
1: जी, क्या पूछना चाहते हैं?
2: जैसे कि मैं खाना खाता हूँ ना, तो मेरे को गैस की जब खाना बनता है, तो इसके लिए बताइए क्या कोई उपाय है?
0: अगर आप खाने में अत्यधिक मसाले का प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत सारी समस्याएं, जैसे गैस, एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स की समस्या हो सकती है। तो पहले तो आपको मिताहार लेने की आवश्यकता है। तो आप किस तरह की डाइट लें? सुस्निग्ध मधुराहार चतुर्थांच विवर्जते भुजते शिव संप्रते मिताहार से उच्चते, यानी पहले तो भूख से कम, 1/4 भूख से कम आपको खाना खाना है, और सरल सिंपल फूड आपको खाना है। सात्विक आहार की बात कही गई है भगवत गीता में भी, कि अगर आप बहुत ज्यादा तामसिक या फिर राजसिक भोजन, जैसे मिर्च मसाले युक्त भोजन करते हैं, तो ये डेफिनेटली शरीर में रोग और इस तरह की बीमारियां, एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन, इस तरह की प्रॉब्लम्स को जन्म दे सकता है।
1: समय भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहते हैं कि बिल्कुल खाए और आप सो गए या मूवमेंट नहीं किया,
0: जी बिल्कुल,
1: वो भी इंपॉर्टेंट,
0: ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने कि खाना खाते ही ना लेते, अगर आप डिनर कर रहे हैं तो अर्ली डिनर की बात कही गई है कि समय पर भोजन ले लें और उसके बाद 2-3 घंटे का कम से कम गैप रखें कि खाना खाते ही लेटेंगे तो वो डेफिनेटली एसिड ऊपर की तरफ आएगा और इस तरह की समस्याएं जैसे चेस्ट में आपको बर्निंग सेंसेशन इस तरह की फील हो सकती है। और साथ ही साथ योगाभ्यास करें कि आपके कोर मसल स्ट्रांग हो, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बेटर काम करें। आप आयुर्वेद की दिनचर्या भी फॉलो कर सकते हैं, आपके किस समय खाना है, कितना खाना है, ठीक है, वो अपने प्रकृति अनुसार खाना है आपको कि क्या भोजन मौसम के अनुसार
1: फॉलो। और हम यहाँ पर समय समय पर आयुर्वेद पर भी आधारित कार्यक्रम करते हैं तो आप उनको भी आप सुनते रहिए। अच्छा, हमारे साथ डॉक्टर रीता गंगवानी हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी रीता जी कि जैसे एक फिटनेस की जब हम बात करते हैं और जब किसी पेशेंट में देखते हैं, हम किसी सेलिब्रिटी को देखते हैं, तो उनकी फिटनेस और फिटनेस नॉर्मल फिटनेस में क्या फर्क आप देखती हैं, क्योंकि आप उनको कोच करती हैं?
3: उनकी जो आप देखेंगे लाइफस्टाइल बहुत ही स्ट्रेसफुल होता है, सारा दिन कैमराज के आगे, मेकअप रूम्स में, इधर से उधर भागना इवेंट्स में, तो डेफिनेटली उनको बहुत ज्यादा जरूरत है अपने फिटनेस की तरफ ध्यान रखने का। तो ऐसे में उनको सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे मधु जी ने कहा, डाइट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि चलते फिरते कुछ भी खा लेना, फास्ट फूड खा लेना, तो वो उनको इफेक्ट करता है। तो ऐसे में मैंने देखा है कि बहुत से ऐसे जो बच्चे हैं, सेलिब्रिटीज हैं, वो सुबह काफी जल्दी उठते हैं, इससे पहले कि वो अपनी दिनचर्या शुरू करें वो अमृत वेले में उठते हैं, क्योंकि उनको फिजिकल तकलीफों से कहीं ज्यादा मेंटल तकलीफों की तरफ ज्यादा, क्योंकि स्ट्रेस इतना होता है, तो इसीलिए पहले तो खुद को डी स्ट्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है उनके लिए। तो मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जो वो सुबह अमृत वेले में करते हैं, और इसके साथ साथ जो मैं देखती हूँ और जो मैं सिखाती भी हूँ वो है ग्रैटिट्यूड। जिंदगी में अगर आप शुक्रगुजार हैं किसी चीज के लिए, और हम लोग ज्यादातर कंप्लेंट्स में लगे रहते हैं और कंपैरिजन में लगे रहते हैं, क्योंकि ये जो ग्लैमर वर्ल्ड है वहां पे बस यही है कि आज आप हैं और कल नया चेहरा आया तो आपको कोई नहीं याद रखता, तो ये चीज होगी, होती रहती है,
1: इनसिक्योरिटी
3: में रहते हैं, तो आपको खुद को बहुत ही बैलेंस करना पड़ता है। तो खुद के लिए एटलीस्ट मेरे पास है क्या, अब जैसे कुछ मेरे स्टूडेंट हैं जो इंटरनेशनल गए थे और वहां बोला मैम इतना टफ रूटीन है, आई एम जस्ट बर्नड आउट, हमें सोने को भी नहीं मिलता, एक घंटा भी नहीं मिलता है, तो फिर उनको मैंने कहा ठीक है तुम ये सोचो कि कितने ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे शूज में होना चाहेंगे, तुम्हारी जगह होना चाहेंगे, ग्रेटफुल रहो कि भगवान ने तुम्हें ये मौका दिया। तो ये लोग बहुत सारा मेडिटेशन करते हैं, ग्रेटिट्यूड करते हैं, और डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी लाइफ में, क्योंकि टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, और कितने ऐसे हैं जो टाइम पर अपने फोन भी बंद कर देते हैं, तो डिटॉक्सिंग करना अपने आप को डिजिटल मीडिया से, क्योंकि अगर हर चीज अपने बारे में पढ़ने लगे तो और ज्यादा टेंशन में आते हैं। तो मेंटल फिटनेस ज्यादा उनके लिए इंपॉर्टेंट है रादर देन फिटनेस। ऑफ कोर्स बॉडी इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि आप एक ग्लैमर वर्ल्ड में है, तो जिम के साथ साथ, डाइट के साथ साथ मेंटल फिटनेस बहुत मैटर करती है, स्पेशली ग्लैमर वर्ल्ड में।
1: जी, तो बहुत इम्पोर्टेंट बात डॉक्टर रीता ने हमें बताई। हमारे एक लिसनर हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। हेलो
4: जी, नमस्ते
1: जी। नमस्कार, बताएं क्या नाम है आपका?
4: नमस्ते, कमलेश है, ग्रेटर नोएडा।
1: अच्छा जी, कमलेश जी बताइए क्या पूछना है।
4: ये पूछ रही हूँ कि हम जैसे हम खाना खा लेते हैं उसके बाद वो पेट में दर्द हो जाता है, और जैसे जैसे रात का भोजन बचा हुआ होता थोड़ा बहुत, सोचते क्या पैकेंगे इसको खा ही ले, आजकल महंगाई बहुत है, सही रहता है नहीं
1: खाना। न्यूट्रिशन पे हम बात करें, कमलेश जी जरूर सुनिए हमारा प्रोग्राम, और सही न्यूट्रिशन के बारे में हमारे जो विशेषज्ञ आपको बता रहे हैं। एक जो इनका प्रश्न है बहुत कॉमन है और ज्यादातर लेडीज इस चीज को करती हैं कि कोई चीज बची, और जो उन्होंने कहा वो भी सही है कि इतनी महंगाई है और कोई चीज को फेंकना भी ठीक नहीं, क्या कहेंगी इस तरह का खाना खाया जा सकता है और कितने घंटों तक बना हुआ खाना खा सकता है आदमी?
0: मैं तो यही कहूंगी कि अपने शरीर को जो है डस्टबिन ना बनाए, और जो है भोजन हमेशा फ्रेश खाना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि 3 घंटे के बाद जो खाना बना हुआ है उसको 3 घंटे के बाद नहीं खाना चाहिए, वो तामसिक होने लगता है। तो जो सात्विक आहार भी आपको लगता है आप हेल्दी फूड खा रहे हैं, अगर आपने उसको फ्रिज में रखा और नेक्स्ट डे खाया तो उसके गुणों में बहुत चेंजेस आ जाते हैं। तो उतना ही बनाएं जितनी आवश्यकता है, और अगर बच जाता है तो किसी गरीब को दे दें, पर कोशिश करें कि आप हेल्दी फ्रेश फूड खाएं।
1: जी जी, तो कमलेश जी आपको जवाब मिल गया, और कुछ मैसेजेस भी हैं हमारे पास। ये हमें लिखकर भेजा है हमारे श्रोता हैं युवराज चौहान जी, कहां बुरहानपुर एमपी से इन्होंने मैसेज किया है कि मेरी उम्र 30 इयर्स है और हाइट 5'9" है, वेट 52 है, वैसे मुझे कोई परेशानी नहीं है पर लोग बोलते हैं कि कुछ खाया पिया कर, वैसे मैं 50 kg की बोरी उठा लेता हूँ।
0: वेट तो कम है बट अगर इतना हैवी वेट भी उठा लेते हैं, हमारे किसान हैं तो डेफिनेटली बहुत शक्तिशाली हैं और अपना डाइट और बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब हो सकता है वो डाइट कम ले रहे हो, अगर उन्हें कमजोरी फील हो रही होती तो हम डेफिनेटली

0: ये समझते कि कोई समस्या है उनके साथ, पर वो
1: हुँ.
0: हेल्दी फील कर रहे हैं, अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, तो हम उनको ये तो नहीं कह सकते कि इन्हें कोई समस्या है। तो डेफिनेटली आप योगाभ्यास भी कर सकते हैं और साथ में डाइट को थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट बढ़ाई जा सकती है, इसमें प्रोटीन्स बढ़ाए जा सकते हैं, तो समत्वम एक बैलेंस स्टेट में पहुंच जाएंगे। योग जो है सिर्फ वो वेट लॉस के लिए नहीं है, आप एक समत्वम एक बैलेंस स्टेट पे पहुंच जाते हैं उसे करके। तो योग के अभ्यास आसन वगैरह कर सकते हैं,
1: कर
0: बॉडी में स्ट्रेंथ
1: सकते
0: भी आएगी
1: हैं
0: जी। और अपने
1: जी.
0: डाइट पर थोड़ा और ध्यान दें, जो हाई कार्ब्स फूड है, जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स फूड है, मिलेट्स, ये सब जो हाई एनर्जी फूड जो है, वो सब डेफिनेटली अपनी डाइट में शामिल करें तो मदद मिलेगी।
1: मधु जी ने जैसे कहा कि अगर उनको कोई तकलीफ नहीं है तो हो सकता है बॉडी कॉम्पोजिशन भी वैसी हो, पर इन्होंने जो ये बात कही ना कि लोग कहते हैं कि तुम बहुत पतले हो पतले हो, तो इन्हें मैं कहना चाहूंगी कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. जब भी लोगों को कोई काम होता नहीं, वो कुछ भी डिफरेंट देखते हैं, या हो सकता है आप इतने फिट दिखाई देते हो कि कुछ जेलस भी फील करते हैं लोग. और अगर कोई आपको ऐसा कह रहा है, मेरा तो ये मानना है कि जेलसी एक किस्म की इनडायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, कि कोई आपको बोल रहा है कि आप फिट दिखाई दे रहे हैं. तो लोगों की बातों में मत आइए, खुद को एक्सेप्ट कीजिए, कबूल कीजिए, मैं ऐसा हूं. आप फिट है सोचने की कोई बात ही नहीं, अगर आपको प्रॉब्लम होती तो अलग बात थी, पर अगर आप फिट है तो कबूल कीजिए कि मैं ऐसा ही हूं. बार बार अगर आप इसके बारे में सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे, मैं पतला हूं मैं पतला हूं, तो कहीं ना कहीं आप अपने ही शब्दों से, अपने ही थॉट से खुद को बीमार कर देंगे. और कई बार बीमारी हमारी सोच से ही आ जाती है. हम
0: जी
1: जब नेगेटिव सोचने लगते हैं, बाहर से किसी ने कुछ कहा और वो हमने सुना और वो हमारी बॉडी में नेगेटिविटी के रूप में बाहर निकलता है. तो आप बिल्कुल फिट हैं, बढ़िया हैं, आप लोगों की बातों पे ध्यान मत दीजिए, कबूल कीजिए कि आपकी बॉडी ऐसी है और आप खुश रहेंगे.
0: अच्छा, एक चीज और बताइए डॉक्टर गीता, जैसे हम जब सेलिब्रिटीज की बात करते हैं, और कुछ लोग तो जैसे साइज जीरो की बात भी करते
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: बहुत बहुत दुबले होते हैं, और वो लोग कोशिश भी करते हैं अपने को दुबला रखने की, तो वो फिट होते हैं? जैसे अभी आप कह रही हैं कि बहुत पतले हैं, तो कोई बात नहीं,
1: हाँ
0: अच्छी
1: जी
0: बात है,
1: हाँ जी
0: तो फिटनेस और एक लुक्स,
1: हाँ
0: ये कहां पर बैलेंस कर सकता है, कैसे कर सकता है?
1: हाँ आपने बोला साइज जीरो वाले लोग फिट हैं, तो मैं कहूंगी फिट हैं।
0: है,
1: पहली
0: ओके.
1: बात तो ये कि जब आप फिटनेस की बात करते हैं, तो कभी आप खुद से ये चीज शुरू मत कीजिए, आपको ऊपर से किसी गुरु की जरूरत है, जो आपको
0: ओके.
1: प्रॉपर डाइट बताए, प्रॉपर आपका रूटीन बताए, तब आप जीरो में जाएंगे। अगर आप अपने आप को भूखा रख के साइज जीरो के चक्कर में पड़ते हैं, या किसी कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको एनोरेक्सिया की बीमारी होती है, वो खाना खाती हैं फिर उंगली डाल के उल्टी कर देती हैं कि हाँ मेरे को पतला दिखना है, खाना अंदर नहीं रखना चाहिए, तो ये सब भी एक किस्म की बीमारी है। तो आपको पहली चीज, अगर इस तरीके से अपनी बॉडी को मेंटेन करना है, तो पहले किसी विशेषज्ञ को ढूंढे जो आपको प्रॉपरली गाइड सके, आपके खाने में, आपकी जिमिंग में, आपके हर चीज में। प्लस इसके अलावा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन में रहेंगे और चीटिंग नहीं करेंगे, अब सामने खाना आ गया, आपसे कहा गया है कि आपको पेस्ट्री नहीं खानी है और आपको मना किया गया, लेकिन पेस्ट्री सामने है और आपसे रहा नहीं गया और आपने पेस्ट्री खा ली, तो फिर डेफिनेटली आप साइज जीरो पे नहीं पहुंचेंगे। तो आप देखेंगे कि ये जितने भी लोग अपने को मेंटेन करते हैं, वो बहुत ही डिसिप्लिन में रहते हैं,
0: जी
1: मतलब आगे कुछ भी हो सामने नहीं तो नहीं। तो डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है एक अच्छी परफेक्ट लाइफस्टाइल में। और डिसिप्लिन कैसा, सुबह से लेके रात तक, आपके जगने से लेके सोने तक, हर पहर आपको अपने आप को डिसिप्लिन में रखना पड़ेगा, तभी जाके आप अपने फिटनेस के गोल को अचीव कर पाएंगे। आसान नहीं है, बट होगा, एक दिन जरूर होगा। हिम्मत मत हारें, क्योंकि जब बीज बोया जाता है तो उसको पेड़ बनने में थोड़ा वक्त तो लगता है।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने बोली, समय लगेगा पर होगा जरूर,
1: बिल्कुल,
0: अगर आपका निश्चित दृढ़ है तो। हमारे एक कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो
2: हेलो, नमस्कार शालिनी
0: जी।
2: जी
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत बेदी जी, कैसी हैं आप?
2: ठीक हूँ, सबसे पुराने योग की मैं ही हूँ।
0: नहीं, आपसे भी पुराने बहुत सारे लोग हैं।
2: अच्छा, मेरे को 27वां साल है।
0: अच्छा, आप योग करती हैं रेगुलरली?
2: हाँ, मैं वो थी जो दो कदम नहीं चल सकती थी, तो फिर अब मैं 22 साल से उसी सेंटर की हेड हूँ।
0: चलिए बहुत अच्छी बात, लेकिन
2: हाँ,
0: आपको भी कुछ पूछना है क्या, कोई
2: मैं
0: प्रश्न
2: ये
0: है?
2: नहीं, प्रश्न ऐसे है कि मैं इनके थ्रू एक मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि लोग जो टीवी देख के करते हैं वो ना सीखें, क्योंकि ये कहेंगे तो लोग मान जाएंगे, हम गलत को करते हुए भी टोकेंगे तो कोई हमारी बात नहीं मानता,
0: तो जैसा
2: कहते हमें आता है।
0: जैसा अभी रीता मैम कह रही थी कि किसी को गुरु मान के और उनकी ही बात को
2: हाँ,
0: देखे दिखाई मत करिए, तो ये बात कन्वे हमारी हुई है यहाँ पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप कार्यक्रम में जुड़ी हुई हैं और इसी तरह से बात करती रहा करिए। चलिए, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन हम ये बता दें अपने श्रोताओं को कि हमारे जो गेस्ट हैं वो बहुत अच्छी सिंगर्स भी हैं, दोनों की दोनों। तो पहले डॉक्टर रीता आप कुछ सुनाएंगी
1: जी बिल्कुल, मेरा फेवरेट गाना।
3: हाँ सुनाइए प्लीज।
1: किसी

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: आप हैं रेडियो डॉक्टर में और आज हम बात कर रहे हैं फिटनेस पर, फिटनेस मंत्रा। कुछ मैसेजेस हमारे पास हैं। एक मैसेज हमें किया है रवि जी ने और इन्होंने लिखा है दिल्ली से ही कि व्हाट लिमिट्स फ्लेक्सिबिलिटी मोर, मसल्स और नर्वस सिस्टम। और दूसरा इन्होंने पूछा है कि जनरली विच इज मोर इम्पोर्टेंट इन योग, ब्रीदिंग या स्ट्रेचिंग, आप बताएं।
2: जी, आई वुड से कि योग में जो है नर्वस सिस्टम रेगुलेशन जो है विच इज मोर इम्पोर्टेंट देन फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि इट विल फॉलो। अगर आपका मन शांत है, आपकी ब्रीदिंग जो है वो कोऑर्डिनेटेड है, तो डेफिनेटली आपकी मसल्स भी रिलैक्स होंगी।
1: अच्छा।
2: और दे आर इंटरलेटेड, बेसिकली हमारा जो माइंड और बॉडी है वो एकदम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और अगर आप तनाव में हैं, आप देखेंगे आपकी मसल्स टाइट हो जाती हैं, आप उतना फ्लेक्सिबल फील ही नहीं करते हैं। आपका मन शांत हो जाए तो डेफिनेटली आप देखेंगे आपके नेक मसल्स, शोल्डर मसल्स, ये सब रिलैक्स हो जाते हैं, आपको बॉडी में पेन्स, इस तरह की समस्याएं।
1: रिलैक्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ब्रीदिंग एंड स्ट्रेचिंग,
2: तो अगर हम क्या करते हैं, जब हम कोई आसन कराते हैं किसी को, तो हम उसमें कहते हैं आप श्वास के साथ करें इसे। तो आप आसन में सिर्फ फिजिकल कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, आप साथ में उसको श्वास को लेके चल रहे हैं। तो हम इसमें, अगर मैं योग सूत्र की बात करूं, तो उसमें यही है कि स्थिर सुखम आसनम, आसन क्या है जिसमें हम स्थिर हैं और सुखी हैं। तो महर्षि पतंजलि ने कहीं भी यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी एज सच वर्ड की बात नहीं करी, स्थिरता की बात करी है और कम्फर्ट की बात करी है। तो जब आप स्थिर हैं, सुखी हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी विल फॉलो। एंड देन प्रतन शिथिल्य अनंत समापत्ति, यानी प्रतन के शिथिलता, मतलब रिलैक्स्ड वे में करने की बात की गई। आप जब रिलैक्स्ड वे में एक ही अभ्यास को बार बार बार बार करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी फ्लेक्सिबिलिटी फिजिकल लेवल पर इम्प्रूव होती है। एंड देन आफ्टर दैट आपके जो फिजिकल लेवल पर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो मस्कुलर टेंशंस हैं, जैसे कि जनरली तनाव में हमारी जो नेक मसल्स हैं, सब ऑक्सीपिटल्स, SCM मसल्स, ये सब टाइट हो जाते हैं, या सोआस मसल जो है जिसे हमारी इमोशनल मसल भी कहा जाता है, इनको स्ट्रेस रहता है, उनकी मसल्स टाइट हो जाती हैं। तो जब आप ब्रीदिंग पे काम करते हैं, श्वास पे काम करते हैं, मेंटल लेवल पर काम करते हैं, अभ्यास करते हैं, योग निद्रा इस तरह के अभ्यास करते हैं, तो आप देखेंगे उसमें एक एक मसल को, प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन इज देयर, एक एक मसल को हम रिलैक्स करते हैं। तो मन पे काम करके भी हम शरीर पे काम कर सकते हैं और शरीर पे काम करके हम मन पे काम कर सकते हैं।
1: जी जी, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात भी थी। और देखिए, हमारे जो श्रोता है हमारे साथ जुड़ते हैं, वो बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीखते हैं इस कार्यक्रम से। और ऐसे ही कुछ हमें बताया है हमारी इस श्रोता ने, परिधि है दिल्ली से लिख रही है, ग्रेट इन्फॉर्मेशन, वेरी गुड टॉपिक, मच नीडेड फॉर आर बिजी lifestyle. Thank you so much, Shalini ji. My takeaways from program so far is discipline and gratitude is very important for overall fitness, both physical and mental. तो ये हमारे श्रोता जब हमें बताते हैं कि हमारा प्रोग्राम जिस पर्पज से हम कर रहे हैं वो सही दिशा में जा रहा है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और आप भी अगर शेयर करना चाहें कि आप क्या सीख रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम से और आपका फिटनेस मंत्रा क्या है, क्योंकि कुछ लोगों का अपना अलग तरीका होता है फिट रहने का। कुछ लोग जिम जाते हैं, कुछ लोग वॉक करते हैं, कुछ लोग रन करते हैं, कुछ लोग साइकिलिंग करते हैं, कुछ योग करते हैं। तो आप अगर हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं और आप शेयर करना चाहते हैं कि आप किस तरह से अपने आप को फिट रखते हैं, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। एक लिसनर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो।
3: हाँ, हेलो मैम। नमस्ते
1: जी। नमस्कार।
3: और डॉक्टर साहिबा को भी नमस्ते मैम।
1: अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
3: जी, मैं गुरु चंद्र बोल रहा हूँ, उत्तराखंड से।
1: जी जी, बताइए क्या पूछना है आपको।
3: तो मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मेरा एक्सीडेंट में एक पांव कट गया था, घुटने से ऊपर से कटा हुआ है, तो योगा के लिए जैसे मेरे को थोड़ा बलगम वगैरह बनता, कफ बनता है ना मेरे को, तो वो स्मोकिंग वगैरह थोड़ा करता हूँ तो कफ वगैरह बनता है, तो इसके लिए कुछ योगा है हमारे लिए मैम?
1: चलिए, मधु जी बता रही हैं आपको।
2: जी, डेफिनेटली योग सभी के लिए है, आप डेफिनेटली योग कर सकते हैं। योग में बहुत सारे ऐसे अभ्यास है, जैसे यौगिक सूक्ष्मयाम की क्रियाएं हैं, वक्षस्थल शक्ति विकासक क्रियाएं कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो षटकर्म के अभ्यास हैं, जिससे हमारी शुरुआत भी की जाती है हठ योग में, तो कुंजल का अभ्यास बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। जैसे बोल रहे बलगम बनती है, उसे बाहर निकालने में दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। तो आप जो है हमारे मोरारजी साई राष्ट्रीय योग संस्थान में भी आ सकते हैं, वी हैव अ ओपीडी हेयर स्पेशली फॉर पेशेंट जिन्हें तरह तरह की प्रॉब्लम्स हों। सभी आयु वर्ग के योग और सभी हेल्थ इश्यूज कंडीशन, जो नॉन कम्युनिकेबल जिन्हें है वो पेशेंट्स हमारे यहाँ आते हैं, उन्हें बहुत बेनिफिट होता है। तो हम योग की विभिन्न टेक्निक्स के थ्रू ने जो है हम ठीक उनको कोशिश करते हैं कि वो क्योर हो पाए, उन्हें हीलिंग हो पाए बेसिकली। तो वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। पर हाँ, एक और बात यह है कि आपको स्मोकिंग छोड़ना होगा, तो आप उसको धीरे धीरे जो है कम करें। विड्रॉल सिम्टम आते हैं कभी कभी एकदम से छोड़ने पर, तो आप उसके लिए जो है डॉक्टर की हेल्प लें। और साथ ही साथ जो है अगर आप यौगिक जो है दिनचर्या जो है उसको अपनाते हैं, यौगिक रूटीन फॉलो करते हैं, तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल।
1: और आपने बोला कि एक रिलैक्सेशन की जरूरत होती है और मेंटल रिलैक्सेशन से फिजिकल वेलबींग हो सकती है. तो मैं हमने सुना है कि कुछ चैंट्स भी होते हैं जिसको बोलते हैं कि आप इसको सुने या आप उसके साथ कुछ चैंटिंग करें, तो उस तरह के कुछ मंत्र के बारे में या चैंट्स के बारे में बताएं या कुछ डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सके हमारे श्रोताओं को.
2: जी बिल्कुल, मैं तो ये कहूंगी कि जो मंत्रास हैं वो जो है आसन है माइंड के लिए. तो अगर हम कहीं भी हमें एंग्जाइटी होती है, कोई परफॉर्मेंस एंग्जाइटी लाइक बिफोर एग्जामिनेशन या बिफोर एन इंटरव्यू, या आप सोचिए कोई प्रोग्राम ही टीवी में आपका शुरू होने वाला है लाइव, तो उससे पहले अगर आप ओम चैंट कर लें.
1: यहाँ किया है आपने
2: मन ही मन कर लेते
1: चलिए
2: तो बहुत ही हेल्पफुल होता है. इसके अलावा जो है हमारा जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से प्रेरित जो मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखिना, मैं यहाँ पे चैंट करना चाहूंगी. तो वो अगर करें तो आप देखेंगे कैसे अब ब्रीदिंग एकदम रिलैक्स हो जाती है. जी
1: हम्म.

0: बहुत
1: वाह
0: बढ़िया,
1: वाह,
0: बहुत
1: क्या
0: बढ़िया।
1: बात है। सच में एक अभी ही ऐसा फील हुआ कि हाँ, इसको और सुना जाए, ये एक
0: सुनते रहे
1: अलग सी
0: सुनते रहे,
1: अनुभूति दे रहा
0: बहुत खूब
1: है
0: जी।
1: ना। तो अभी तो हम नहीं ये ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद हमारा प्रोग्राम खत्म होगा तो हम एक सेशन आपके साथ
0: जी
1: जरूर लेंगे।
0: सर,
1: और ये इस तरह के जो आप चैंटिंग्स करते हैं, मुझे लगता है ये काफी रिलैक्स करता है अगर हम इसको बार बार
0: जी
1: सुने, बार बार सुने। इस तरह का कुछ आप लोग क्या भी किया जाता है डॉक्टर रीता? आप लोग जब कोचिंग करते हैं
0: जी
1: तो इस तरह का कुछ चैंटिंग्स भी उसमें आप इंक्लूड करते हैं?
0: जी चैंटिंग्स के साथ साथ हम लोग कुछ ब्रेथ एक्सरसाइजेस भी करते हैं, जिसमें मधु जी भी जैसे बोली थी योगिक एक्सरसाइजेस, क्योंकि टेंशन जब हम लोग होती है हम अपने लंग्स को पूरा नहीं यूज करते, हम सिर्फ ऊपर ऊपर से सांस लेते हैं, लेकिन लंग की कैपेसिटी क्यों कम से कम 5 लीटर ऑक्सीजन ले सकता है, हम बस 1 लीटर में काम चला रहे होते हैं। तो जब बच्चे स्टेज पे जाते हैं और वो ब्लैंक हो जाते हैं, बिल्कुल उनको समझ नहीं आता क्या करना होता है, तो ऐसे सिचुएशन में हम उनको योगिक ब्रीदिंग सिखाते हैं, जब पेट को आप बलून की तरह फुलाते हैं, हाथ रखवा के उनको महसूस करवाते हैं, क्योंकि हम अपना चेस्ट बॉक्स ठीक से यूज नहीं करते। एक तो वो कराते हैं, ऑफकोर्स ओम का उच्चारण कराते हैं, ताकि जैसे पहले भी किसी श्रोता ने बोला था कि आवाज को कैसे मधुर
1: जी
0: करें,
1: जी
0: तो आवाज को मधुर करवाने के लिए भी यही हम टेक्निक्स यूज करते हैं। प्लस उनको कुछ छोटी छोटी चीजें जैसे बांसुरी बजाना, क्योंकि उसमें आपका फोर्स लगता है जब आप बांसुरी को बजाते हो, तो आवाज को ठीक करने के लिए आपकी आपको ठहराव देने के लिए मेंटली, जैसे कि आप स्टेज पे ब्लैंक नहीं हो जाएं। प्लस इसके बाद एक होती है प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, मतलब पैरों से उनको भींचना पड़ता है, पैरों के टोज से भींचते हुए ऊपर की तरफ आए और फिर पूरी बॉडी को एकदम टाइट करके फिर धीरे धीरे एक एक बॉडी पार्ट करके छोड़ा, और लास्ट में जब शरीर से आपके पैरों के नीचे से वो अर्थ हो जाती है नेगेटिव एनर्जी। तो बेसिकली यही टेक्निक्स मैम थोड़ी योगिक भाषा में बता रही हैं, मैं थोड़ी मॉडर्न भाषा में बता रही हूँ, बट बेसिकली यही टेक्निक्स हैं जो आपको रिलैक्स कर सकती हैं। प्लस इसके साथ साथ बच्चों को ये भी सिखाया जाता है, क्योंकि यंगस्टर्स हैं, दिन में बहुत चीजें होती हैं उनके साथ, आजकल रिलेशनशिप इश्यूज है, ये है वो है, तो उनको ये भी सिखाते हैं हम लोग कि रात को सोने से पहले आपको अपने दिमाग को खाली करके सोना बहुत जरूरी है।
1: जी जी
0: क्योंकि अगर आप दिमाग को खाली नहीं करते हैं और वही चीजें लेके सोचते हैं, परेशानी आती रहेगी आती रहेगी, ठीक नहीं होंगे। तो उनको लिखाते हैं कि किस तरीके से आपको दिन में पहला तो अच्छा क्या हुआ, दिन में बुरा क्या हुआ, अच्छा क्या हुआ उसके लिए थैंक यू, बुरा क्या हुआ वो पढ़ के, पढ़ना जरूरी है क्योंकि शरीर से निकालना है, जोर से एक बार बोल दो उसको, और फिर हम उसको टुकड़े टुकड़े करवा के उस कागज को हवा में फेंकवा देते हैं कि भाई ये गई अब तुम्हारी, अब इसकी तरफ मुड़ के नहीं देखना।
1: डज इट वर्क?
0: इट डज वर्क।
1: ओके,
0: बट देखिए फेथ, भगवान को किसने देखा? नहीं देखा, पर हमें फेथ है कि भगवान है। तो ये सारी की सारी जितनी भी मॉडलिटीज हैं वो फेथ पर चलती हैं। आप फेथ से करोगे तो आप कुछ भी पा सकते हैं। तो यस, ये चीजें भी हम लोग भी पैजेंट के या मॉडलिंग के वर्ल्ड में जरूर करवाते हैं।
1: जी जी और देखिए, हमारे कुछ श्रोता जो हमारे साथ जुड़े हैं वो अपने फिटनेस मंत्र भी हमें भेज रहे हैं, जैसे हमने उनसे इन्वाइट किया था। आलोका जी लिख रही है, 54 ईयर्स की है, नोएडा में रहती है। आई एम प्रैक्टिसिंग योगा एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस डेली फॉर 45 मिनट्स। आई एम फीलिंग सम पेन इन माई शोल्डर्स, बट आई एम वेरी डिसिप्लिन एंड प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। तो ये सारी चीजें ये फॉलो कर रही हैं। इन्होंने लिखा है कि मैं मॉर्निंग वॉक भी करती हूँ, कुछ थोड़ा एलर्जी है परफ्यूम डस्ट एंड पॉल्यूशन से, पर आपका सेशन मुझे बहुत इन्फॉर्मेटिव लग रहा है। तो थैंक यू सो मच आलोका जी। और आपके गाने की तारीफ आई है सिलचर आसाम से।
0: थैंक यू सो मच
1: जी। हमारे लिखने वाले श्रोता है मीरा सिंह, लिख रहे हैं कि बहुत अच्छा गीत आपने सुनाया और एक्सलेंट वॉइस, मुझे बहुत पसंद आया ये गीत।
0: शुक्रिया,
1: बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। और ये नरदेव सिंह चौहान जी ने लिखा है कोटद्वार उत्तराखंड से कि अगर प्रेम से रहा जाए और पर पीड़ा को समझा जाए, जिसका बहुत आजकल अभाव है, तो भी और शुद्ध पर्यावरण हो, तो ये सारी चीजें भी हमें फिट रख सकती हैं। क्या कहेंगे?
0: बिल्कुल, इनको मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, इंसानों की आदत होती है कि हम पास्ट को साथ में लेके बहुत चलते हैं, कल क्या हुआ, इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, इतना पास्ट को जब हम साथ में लेके चलते हैं, वो तो बीत गई, अब उस पे मुड़ के तो हम जा नहीं सकते, तो आज क्यों खराब करना है पास्ट के बारे में सोच सोच के। तो कई बार वो भी हमारे हेल्थ को खराब करता है जब हम पास्ट में लोगों को फॉरगिव नहीं करते या खुद को ही फॉरगिव नहीं करते, गिल्ट की फीलिंग में रहते हैं। तो कई बार खुद को भी फॉरगिव अगर आप करेंगे और आप खुद ही देखेंगे कि आपकी हेल्थ में भी बहुत परिवर्तन आएगा।
1: जी, यहाँ पर एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, खूबसूरत सा गीत सुनकर वापस आते हैं। आप हमें यूं ही लिखते रहिए, बताते रहिए अपना फिटनेस मंत्र, और रेडियो डॉक्टर के साथ जुड़े रहिए।

0: इस भागती दौड़ती जिंदगी में भी तन और मन को निरोग किया जाए।
1: क्यों ना रेडियो डॉक्टर सुनकर स्वस्थ रहा जाए।
0: रेडियो डॉक्टर प्रतिदिन दोपहर 3 बजे FM रेनबो 102.6 MHz पर।
1: कार्यक्रम का फीडबैक और सुझाव भेजें healthairdelhi@gmail.com पर। आप हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में और थोड़ा सा ही समय बाकी है लेकिन बहुत सारे आपके मैसेजेस हैं। यशपाल जी हमें द्वारका दिल्ली से लिख रहे हैं, वेरी नाइस टॉपिक शालिनी जी। फॉर माय फिजिकल फिटनेस आई ट्राई टू फॉलो अ डिसिप्लिन्ड लाइफ, बैलेंस्ड प्रॉपर डाइट, मेंटल लेवल पे ओवर थिंकिंग नहीं करता हूं, एंग्जाइटी इश्यूज पर कंट्रोल करता हूं, मेडिटेशन एंड ब्रीदिंग भी मैं करता हूं। बहुत सारी चीजें ये करते हैं, इसके अलावा भी कुछ छूट गया तो बताइए।
2: मेरे हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा छूट गया है, लोग उसको इग्नोर ही करते हैं इसलिए किसी ने बोला नहीं इसके बारे में।
1: अच्छा बताइए।
2: हाइजीन,
1: ओके,
2: हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ सफाई हमारे शरीर की बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए अगर आप हाइजीन नहीं रखेंगे आपके बालों में, आपके स्किन में, आप मुंह से बात करेंगे तो आपके मुंह से स्मेल आ रही है, आपके हाथ गंदे हैं, पहली चीज तो लोग ही आपको इग्नोर करने लगेंगे। फिर आप सोचेंगे लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं, फिर आप लोनलीनेस में चले जाएंगे, फिर मेंटल हेल्थ इश्यूज के आएंगे। और इसके अलावा इतना खूबसूरत शरीर भगवान ने हमें दिया जिसमें हमें ना जाने कितने साल रहना है, करोड़ों का शरीर है। सोचिए जिनके पास शरीर के कुछ हिस्से नहीं होते वो उनके लिए कितना तरसते हैं। हमारा एक एक हिस्सा करोड़ों का है और हम उसको इस तरीके से निग्लेक्ट करते हैं कि लोग कई बार ध्यान नहीं देते। तो हाइजीन बहुत जरूरी है ताकि लोग भी आपके साथ बात करना चाहें, आप साफ सुथरे दिखें और नेचुरली ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक अच्छी पर्सनालिटी का भी होने का। तो हाइजीन का भी ध्यान ऊपर से नीचे,
1: बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने ऐड की। और समय हमारे पास थोड़ा सा कम है लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं करना चाह रही थी क्योंकि हमने जो आज का जो विषय रखा है वो बिल्कुल तो एक इंटेंशन है करने का कि 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं और इस पूरे साल में हम जो गतिविधियां करते हैं उसमें तेजी आती है। तो इस बार जब हम ये 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, डॉक्टर मधु खुराना हमारे साथ हैं, किस तरह के बदलाव या किस तरह के अचीवमेंट्स पे आप बात करना चाहेंगी या कुछ नए इनिशिएटिव्स लिए गए उसके बारे में बताना चाहेंगी?
3: जी मैम, इस बार जो है हमारे जो योग महोत्सव में 13 मार्च को जो मनाया जाता है विच इज द काउंट डाउन टू 100 डेज, लाइक वहां से शुरुआत हो जाती है, बिल्कुल बच जाता है, तो उसमें एक हमारा कैंपेन है आयुष मिनिस्ट्री का, योग 365, वो लॉन्च किया है हमारे माननीय जो आयुष मंत्री हैं उन्होंने। तो उसमें ये है कि आप एक टोल फ्री नंबर है उस पर जाकर विच इज 1-800-315-7008 या फिर आप आयुष मिनिस्ट्री के पोर्टल पे जाकर आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं अपना नेम कॉन्टैक्ट नंबर देकर। वो आपको व्हाट्सएप पर लिंक भेजेंगे जिसमें कि 14 दिन का फ्री आपको योग जो है चैलेंज दिया जाता है, मतलब आप सेशन अटेंड कर सकते हैं। इस तरह की सुविधा दी जा रही है, सभी इससे जुड़ सकते हैं। 50th जो योग डे सेलिब्रेशन 2 मई को हुआ है काना शांतिवनम में, तेलंगाना में, हैदराबाद में, जहां पर एक रिकॉर्ड भी बना है जिसमें 6000 से अधिक लोगों ने भुजंगासन का अभ्यास एक साथ किया है। भुजंगासन इज वेरी गुड आसना फॉर चेस्ट एक्सपेंशन, जो जिनको ब्रीदिंग की समस्या होती है, या फिर इट्स स्ट्रेंथन द बैक मसल्स, जिन्हें कमर दर्द की जो मस्कुलर इश्यूज रहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है, उसे दूर करने के लिए भी और उसकी प्रिवेंशन के लिए भी। तो उसका एक एशियन वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है और इस बार नया यही है कि हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये सिर्फ इंटरनेशनल योग डे तक ही योग सीमित ना रह जाए, आप इसे अपनी दिनचर्या का पार्ट बनाएं, यानी डेली योग अभ्यास करें, ऐसा मैसेज जो है हम देना चाहते हैं। उसी के साथ मैम ने जैसे बात करी हाइजीन की, तो मैं ये कहना चाहूंगी योग में भी हाइजीन का कॉन्सेप्ट आता है, नियम के अंतर्गत शौच की बात की जाती है। हमारे जो षटकर्म के अभ्यास है वो मैम ने जो आउटर जो बात करी कि हाइजीन की वो बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में इंटरनल क्लींजिंग की बात भी योग करता है। और यौगिक जो एटीट्यूड है वो डेवलप करना बहुत जरूरी है लोगों में, जैसे कि ईश्वर प्रणिधान मैम ने करी सरेंडरिंग एटीट्यूड की, एक्सेप्टेंस की, तो योग भी इसी की बात करता है, कर्म योग की बात करता है कि आप कर्म करें और फल की इच्छा छोड़ें। मैं कहूंगी लोग आसन तो कर लेते हैं, प्राणायाम भी करते हैं, हालांकि प्राणायाम उतना ज्यादा नहीं करते हैं, आसन ज्यादा करते हैं, बट उसके साथ यम नियम को फॉलो अगर करें तो जो है उसका रिजल्ट कहीं गुना ज्यादा अच्छा आ सकता है।
1: जी, बहुत ही जरूरी बातें आपने बताई, ये हमारे आज के प्रोग्राम की टेक अवेज हैं। आप भी चलते चलते डॉक्टर रीता क्या कहना चाहेंगी, क्या आपका मैसेज रहेगा हमारे इस कार्यक्रम के?
2: मैं श्रोताओं से ये कहना चाहूंगी कि जिंदगी की रेस जीतने से पहले शरीर को दौड़ने लायक तो बनाना पड़ेगा, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे इस जिंदगी की रेस में। तो मैं एक शायराना अंदाज में कहना चाहूंगी कि काम इतना करो कि हमेशा व्यस्त रहो, और पैसा इतना कमाओ कि हमेशा मस्त रहो, और व्यायाम इतना करो कि हमेशा स्वस्थ रहो, क्योंकि स्वास्थ्य जब तक आपके पास है तब तक सब कुछ है। जिस दिन स्वस्थ नहीं रहेंगे उस दिन आप कुछ भी जिंदगी में पाना चाहेंगे तो भी पा नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर हेल्थ है तो वेल्थ है। किसी टीचर ने बच्चों से एक बहुत सुंदर कुर्सी दिखा के पूछा था कि इसका सबसे इम्पोर्टेंट भाग कौन सा है। किसी ने कहा पीठ, क्योंकि पीठ लगती है, किसी ने कहा हत्था जिसपे हाथ रखते हैं, पैर रखते हैं, अलग अलग चीजें बताई, लेकिन टीचर ने कहा नहीं, ये कुर्सी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है, कुर्सी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो कीलें जो इसे जोड़ के रखती हैं। तो यही बात है कि जिंदगी की कीलें जो हमें जोड़ के रखती हैं, जैसे हैप्पीनेस है, हमारा एनर्जी है, लव है, पीस है, हार्मनी है, गुड रिलेशनशिप्स हैं, वो कीलें हैं जो हमारे शरीर को जोड़ के रखती हैं। शरीर का कितना भी ख्याल रख लो लेकिन अगर कीलें आपकी कहीं ना कहीं ढीली पड़ गई तो कुर्सी गिरेगी ही गिरेगी। तो ये भी
1: बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है और याद रखने लायक है। और हमारे इस प्रोग्राम की कीलें तो हमारे श्रोता हैं जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं और मजबूती से जुड़े रहते हैं, इसीलिए हमारा कार्यक्रम पसंद किया जाता है, हमारे श्रोता हमें लिखते हैं कि उसको पसंद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रविंदर पाठक जी, आशा पाठक जी नीदरलैंड से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, बहुत अच्छा कार्यक्रम है।

0: अजय गोकुलपुरा दिल्ली से आप हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं। किरण जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और इम्तियाज मोहम्मद इम्तियाज सलमा बेगम हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ी रही। बहुत सारे कोमल चंद साहू छत्तीसगढ़ से इस कार्यक्रम में जुड़े रहे। सबके सवाल तो हम नहीं ले पर धन्यवाद देना चाहेंगे। इसी तरह से आप लिखते रहिए, सुनते रहिए और अपना पसंदीदा कार्यक्रम लिखकर हमें बताते रहिए कि कैसा लग रहा है। आप हमें लिख सकते हैं healthaiadelhi@gmail.com पर। अब स्वीकार करिए मेरा नमस्कार और धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे गेस्ट डॉक्टर मधु खुराना को। आप योग स्पेशलिस्ट हैं मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग में और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट डॉक्टर रीता गंगवानी आप पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट कोच हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों यहाँ।
1: शुक्रिया।
2: धन्यवाद मैम।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब

0: है बबई। जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, शाम के 4 बजे हैं और अब पेश है एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के अंतर्गत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की है। हॉर्मूज जल मरुमध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने LNG पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। अमरनाथ यात्रा के पहले 2 दिन में 32,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। भारत असम के गुवाहाटी में कल से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा। गृह मंत्रालय ने कहा है कि यह बैठक ब्रिक्स के सदस्य देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों और वरिष्ठ अधिकारियों को एक मंच प्रदान करेगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। और खेलों में ग्रैंड शतरंज टूर में ब्लिट्स सेक्शन के पहले दिन ग्रैंड मास्टर और प्रज्ञान नंद 4थे स्थान पर पहुंचे। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला होगा। ये थे FM रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका ओनियाल। जुलाई का महीना शुरू हो चुका है, पहला रविवार है और हर रविवार को आपको इंतज़ार रहता है अपने पसंदीदा कार्यक्रम का, और जिसको आप रेनबो जीनियस के नाम से जानते हैं। हम जानते हैं कि आप सभी बहुत मेहनत करते हैं और मेहनत के उपरांत जब आपको नतीजे आपके मन मुताबिक मिलते हैं तो आपको महसूस होने लगता है कि आपको सफलता हासिल हुई। जी, सफलता नित्य प्रति उन्हीं लोगों को हासिल होती है जो कार्य करते हैं, मेहनत करते हैं। कभी जीवन में मुकाम ऐसा ज़रूर आ सकता है कि हमें अपने मन मुताबिक नतीजे ना मिलें, लेकिन हार ना मानना ही तो ज़िंदगी का दस्तूर है, और जो हार नहीं मानते उन्हें निश्चित ही एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जीवन में मंजिलों से बेहतर रास्ते होते हैं। वो इसलिए कि मंजिल प्राप्त करने के बाद फिर व्यक्ति शायद मंजिल पर ठहर सा जाता है, या फिर हो सकता है किसी और नई मंजिल की ओर रुख करे, लेकिन जब तक मंजिल प्राप्त नहीं होती है तब तक ये रास्ते हमें हमेशा हमें जीवंत रखते हैं। और यही नहीं, जीवंत रखने के साथ साथ वो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं, या यूं कह लीजिए ज़िंदगी के अलग अलग फ़लसफ़ों से रूबरू करते हैं। जीत का अर्थ केवल उसी को पता है जो जीतता है, लेकिन जीत का सही अर्थ उसको भी पता है जिसने हार देखी होती है। उसे ये महसूस होता है कि जीत प्राप्त करने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता, कितनी बार हमें असफलताओं का सामना करना पड़ता है। पहली बारी में सफलता मिले ये और बात है, लेकिन अगर सफलता समय लेने के बाद मिलती है तो उसका मूल्य और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। फिलहाल आप सभी से ये गुजारिश है कि आप बनी रहिए, टिकी रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी पर FM रेनबो। फिलहाल आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम का नाम है लम्हे।

नमस्कार दोस्तों, लम्हे कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका आरजे चेतन। सक्सेस मंत्र, सपने देखना न छोड़े, सपने देखेंगे तभी पूरे होंगे। एक शहर में एक लड़का अपने पिताजी के साथ रहा करता था। उसके पिता किसी बड़े आदमी के घोड़े के स्टेबल में काम किया करता था। वह देखा करता था कि किसी तरह उसके पिता पूरे दिन घोड़ों के साथ रहते हैं और इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें वो मान सम्मान कभी नहीं मिलता जो उस घोड़े के मालिक को मिलता है। तभी उस लड़के ने भी सपना देखना शुरू कर दिया कि एक दिन उसके पास भी इतनी ही दौलत होगी और उसके पास भी घोड़ों का एक बड़ा रैंच होगा और वो उनका मालिक भी बनेगा। एक दिन स्कूल में सभी बच्चों से कहा गया कि वो लोग घर जाकर अगली सुबह एक लेख लिखकर लाएंगे जिसमें ये होगा कि वो बड़े होकर क्या करना चाहते हैं और क्या बनना चाहते हैं। तो इस पर उस लड़के ने रात भर जागकर एक बहुत ही बेहतरीन लेख लिखा और साथ ही अपने सपने को उसमें पूरी तरह बताते हुए उसमें 200 एकड़ के अपने सपने वाले रैंच की फोटो भी बना दी और लड़के ने पूरे मन के साथ वो निबंध लिखा और अगले दिन शिक्षक को दे दी। शिक्षक ने सभी कॉपियां जांचने के बाद परिणाम सुनाया तो लड़के को अजीब लगा, क्योंकि उन्होंने उस लड़के द्वारा मेहनत से लिखे गए उस लेख के लिए कोई मार्क्स नहीं दिए थे और उस पर बड़े अक्षरों से फेल लिख दिया। इस पर लड़के ने टीचर से वजह पूछी तो टीचर ने कहा, बेहतर होता वो कुछ छोटा मोटा लेख लिखता, क्योंकि तुमने जो लिखा है वो पूरी तरह असंभव है। तुम लोगों के पास कुछ नहीं है, इसीलिए ऐसा संभव नहीं होता। तो फिर भी मैं तुम्हें चाहे तो तुम्हें दूसरा मौका दे सकता हूँ। तुम इस निबंध को दोबारा लिखो और कोई वास्तविक लक्ष्य बना लो। मैं तुम्हें दोबारा नंबर देने के बारे में फिर से सोच सकता हूँ।

0: दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com।
1: लड़का उस कॉपी को लेकर घर गया और उस पर काफी सोचा, लेकिन उसे पूरी रात नींद नहीं आई। अगले दिन वो टीचर के पास जाकर बोला, आपको जो करना हो कर सकते हैं, क्योंकि मेरा लेख यही है, मैं इसे नहीं बदलना चाहता हूँ। और अगर आप मुझे फेल करना चाहते हैं तो आप अपने फेल को कायम रखिए और मैं अपने सपने को कायम रखता हूँ। 20 साल बाद वही शिक्षक।

कोई अंतर्राष्ट्रीय घोड़ दौड़ देख रहा था। तो दौड़ के पूरे हो जाने के बाद एक आदमी उनके पास आया और बड़े प्यार से उनको अपना परिचय दिया, क्योंकि वह अपनी दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम बना चुका था और यह वही छोटा लड़का था जिसने सालों पहले यह सपना देखा था। इस दुनिया में 90% लोग अपने साथ धोखा कर रहे हैं। जानना चाहोगे कि

अपने आप के लिए झूठी तसल्ली है। इन्होंने समझौता कर लिया है। ये सब डर की वजह से बिना कोशिश किए ही हार मान बैठे हैं। ये लोग आराम से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये अपने जीवन में संतुष्ट नहीं है, क्योंकि ये सब के सब वो नहीं कर रहे हैं जो करने की क्षमता इनमें है। और जब हम हालातों से समझौता कर लेते हैं तो जिंदगी बड़ी नीरस हो जाती है। तो दोस्तों, आइए सुनाता हूँ एक छोटा सा इंसिडेंट हमारे लिसनर का। वह लिखते हैं, पिछले दिनों मैं एक सेमिनार के लिए जयपुर से दिल्ली जा रहा था। ट्रेन में मेरे सामने वाले बर्थ पर रोहित नाम के एक युवक से थोड़ी ही देर में मेरी अच्छी जान पहचान हो गई। उसने बताया वे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है और ये पूरा होते ही कोई जॉब ज्वाइन कर लेगा। जब मैंने उससे पूछा कि आपका सबसे बड़ा ड्रीम क्या है, तो काफी देर सोचने के बाद बोला, मैं पायलट बनना चाहता हूँ। लेकिन क्या, मैंने पूछा, तो उसने कहा कि घर वाले इसकी अनुमति नहीं दे रहे हैं। वे चाहते हैं कि मैं कोई अच्छा सा जॉब करूं, और इतना कहकर वो चुप हो गया। लेकिन जो चमक उसके चेहरे पर पायलट बनने वाले सपने को बहुत वक्त थी, वह अब गायब हो चुकी थी। और लगभग 3 घंटे की बातचीत से मेरा ध्यान उन मुद्दे पर गया जिनकी वजह से हम अपने सपनों को जीना छोड़ देते हैं। खुद पर विश्वास न होना, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से ज्यादातर लोग अपने सपने को सिर्फ सपना समझ हमेशा के लिए भूल जाते हैं। हम सपने तो बड़े बड़े देखते हैं, लेकिन अंदर से हम बहुत डरे हुए हैं और उस सपने को लेकर खुद को ही नहीं समझ पाते हैं कि हम ये कर पाते हैं या नहीं। और जब हम स्वयं ही पूरी तरह से निश्चित नहीं हो पाते हैं, दूसरों को क्या बताएंगे। नतीजा, बिना खुद पर विश्वास के जब हम दूसरों को अपने सपने बताते हैं तो वो आसानी से हमें डरा देते हैं और हम उसी 90% वाली श्रेणी में रह जाते हैं। लोग क्या कहेंगे, व्हाट विल पीपल से, सबसे बड़ा रोग क्या होगा, लोभ। ये हमारे बहुत बड़ा डर है और इस वजह से हम अपने सपनों की दिशा में कदम उठाने से पहले हार मान लेते हैं। हम सोचते हैं क्या होगा जब वह मुझे ये करते हुए देखेगा, क्या जवाब दूंगा, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे। आप जिन लोगों के बारे में सोच रहे हैं वह यदि आप पर हंसते हैं, आपको रोकते हैं, टोकते हैं, तो यकीन कीजिए ये सब भी उस 90% वाले श्रेणी में ही आएंगे जो एक तय दायरे में ही सोच पाते हैं। पर तुम्हारी पहचान उनकी सोच से नहीं, परंतु तुम्हारी सोच से बनेगी। क्या होगा यदि मैं इस काम में सफल नहीं हो पाया तो, क्या होगा यदि मेरा बिजनेस नहीं चल पाया तो, क्या होगा यदि उसने मेरा प्रस्ताव नहीं माना तो, क्या क्या क्या। इतने सारे सवाल और इनकी वजह असफल होने का डर। ये सारे डर जो कि काल्पनिक है, लेकिन हम इन पर इतना ध्यान देते हैं कि ये हकीकत में बदलने लगते हैं। हम में से ज्यादातर लोग तो वो काम शुरू ही नहीं कर पाते हैं, वजह हमारे ये डर की कहीं असफल न हो जाए। आप अभी कौन से सफल हो, जो असफल हो जाओगे, या यदि सफल हो भी तो इतिहास उठाकर देख ले कि क्या सफलता स्थायी है। और इतनी ही नहीं, अपने इस डर की वजह से हम दोष देते हैं हालातों को, जमाने को, और कहते हैं यदि ऐसा नहीं होता तो हम ये कर लेते, वो कर लेते। ध्यान रहे, हम यदि वो चुनते हैं जो आसान है तो जिंदगी मुश्किल होगी, और यदि वो चुनते हैं जो मुश्किल है तो जिंदगी आसान होगी। सपने हमारे भी सच हो सकते हैं यदि इन छोटी छोटी बातों का ध्यान याद रहे। अपने सपनों को लिखे, बड़ा सोचो, कुछ ऐसा जो तुम्हें पसंद हो, कुछ ऐसा जिसे दूसरों को बताते वक्त तुम में जोश आ जाए, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाए, कुछ ऐसा जिसके बारे में तुम बहुत पैशनेट हो, और उसको अपनी व्यक्तिगत डायरी में लिख डालो। एक चार्ट पेपर पर लिखकर अपने कमरे में चिपका दो, और खबरदार जो ये सोचे कि किसी ने देख लिया तो, ये तुम्हें रोज दिखाई देना चाहिए ताकि एहसास दिलाता रहे कि ये तुम्हारा सपना है। तो दोस्तों, With this wonderful information and motivation, this is Chetan signing off. आज की कड़ी यही संपन्न होती है। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी, तब तक आप चेतन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम रेनबो जीनियस में। जी रेनबो जीनियस लेकर आई आपकी दोस्त गीतिका ओनियाल। बने रहिए, टिके रहिए, सुनते रहिए और सुनते सुनते हमें फ़ोन मिलाइए, क्योंकि हो सकता है कि अगर आपने आज दे दिए हमारे पांच सवालों के सही सही जवाब तो आप बन जाएंगे आज के सरताज यानी कि रेनबो जीनियस। तो जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और कोशिश कीजिए कि आप हमसे सही वक्त रहते सही सवालों के सही जवाब दे पाएँ। 2342-1080 या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 2342-1084। इन जादुई नंबर्स पर आप कॉल करेंगे ज़रूर हम तक पहुंचेगी। दिल्ली के बाहर के श्रोताओं को एसटीडी कोड लगाना होगा 011 यानी कि 011-2342-1080 या फिर 2342-1084। ये हैं वो दो जादुई नंबर, तुरंत कॉल कीजिए। आपकी ये दोस्त ही नाचीज गीतिका ओनियाल कर रही है बेसब्री से इंतज़ार आपका यानी कि आपकी कॉल्स का। तो बस मेरे सवाल का कोई जवाब दो, जवाब देने के लिए तैयार हैं आप जानती हूँ मैं। इसीलिए शो शुरू होने से पहले ही यहाँ मेरे पास फ़ोन कॉल्स आनी शुरू हो गई हैं, लेकिन जनाब समझिए ज़रा दस्तूर है प्रोग्राम का। आपका अभिनंदन, आपका स्वागत करना तो बनता ही है। बने रहिए, टिके रहिए, सुनते रहिए और जवाब देते रहिए हमारे शो रेनबो जीनियस में।

0: समय हो गया 4:20 और बहुत नाराज है सर मुझसे कि इतनी देर क्यों भाई हम कॉल्स मिला रहे हैं और हमारी कॉल्स पिक नहीं की जा रही हैं, हमें जल्दी से हमें रेनबो जीनियस बना दीजिए। बिल्कुल ये नाचीज इसीलिए है कि आपके जो सही जवाब है मेरे सही सवाल पूछने के बाद जो मुझे मिलने वाला है निश्चित रूप से आपको बनाएंगे रेनबो जीनियस। हेलो
1: हेलो
0: जी नमस्कार, अपना नाम बताएं कहाँ से बोल रहे हैं।
1: जी नमस्कार जी, मैं रजनेश राठी बोल रहा हूँ महेंद्रगढ़ से।
0: जी बहुत बहुत स्वागत है राठी साहब आपका, ये बताइए बारिश हो रही है वहाँ?
1: नहीं जी, मौसम ऐसा ही हो रहा है बारिश।
0: अरे ऐसा ही हो रहा है जी, यहाँ बारिश हुई है पता है आपको उत्तराखंड में बारिश हुई है, पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश हुई है। अच्छा ये बताइए आप मुझे कि हर साल जो मानसून आता है ना सबसे पहले किस राज्य में दस्तक देता है?
1: केरल में सबसे पहले।
0: वाह क्या बात है क्या बात है, तो आप बताइए मानसून का इंतजार करते हैं या ये लगता है कि अरे बारिश आ गई क्यों आ गई?
1: नहीं जी अच्छा लगता है, हम तो गांव से हैं
0: जी
1: तो
0: जी
1: खेती किसानी
0: बिल्कुल
1: से
0: किसान के लिए
1: तो
0: बहुत ज्यादा बिल्कुल बारिश पर ही निर्भर है। अच्छा ये बताइए कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, किसको कहा जाता है?
1: क्या रेगिस्तान?
0: वाह क्या बात है, बहुत बहुत खूब। तो आप ये बताइए कि खेती बाड़ी के साथ साथ और क्या कुछ चलता है जिंदगी में, पढ़ाई लिखाई?
1: हाँ जी पढ़ाई लिखाई भी चलती है।
0: वेरी गुड बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए कि इसरो, आपने नाम सुना होगा।
1: हाँ जी हाँ जी।
0: ये कहाँ स्थित है?
1: ये बेंगलुरु में इसका।
0: वेरी गुड, तीसरा सही जवाब आपने हमें दिया। अब आप हमें आसान सवाल पूछो कि मुश्किल पूछो?
1: कैसा भी जो भी सामने हो।
0: क्या बात है। अच्छा पृथ्वी का उपग्रह क्या है?
1: चंद्रमा। चंद्रमा मून।
0: हाँ तो चार सवाल हो गए आपके सही
1: जी।
0: वेरी गुड बहुत बढ़िया। अब आपसे अगला सवाल हम पूछने जा रहे हैं जो हर बार की तरह आसान होने वाला है। आप ये बताइए कि वर्ल्ड हेरिटेज डे किस दिन मनाया जाता है?
1: 18 अप्रैल को।
0: वाह बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आप बन गए हमारे आज के पहले रेनबो जीनियस। बहुत बहुत शुभकामनाएं राठी साहब आपको, यूं ही आप रेनबो जीनियस में शामिल होते रहें और सही जवाब देते रहें।
1: जी धन्यवाद
0: जी। तो अगले कॉलर देखते हैं कौन जुड़ गए हैं हमारे साथ, और हम तो यही चाहते हैं कि हमारे साथ बहुत सारे कॉलर्स जुड़े। हेलो,
2: आप जिस व्यक्ति से बात
0: आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपको दूसरी हमें होल्ड अरे हम क्या करें जनाब, हम आपको इंतज़ार ही इतना कराते हैं कि इंतज़ार करते करते आपके पास दूसरी कॉल आ जाती है और दूसरी कॉल आने के बाद हम होल्ड पर। वाह क्या बात है, खैर कोई बात नहीं, तब तक हम दूसरे कॉलर को ले लेते हैं और इनसे बात कर लेते हैं, ज़्यादा इंतज़ार कराने का यही नतीजा होता है। हेलो
3: हेलो
0: हेलो बताइए अपना नाम और कहाँ से बोल रही हैं आप?
3: मेरा नाम जिया मैडली से बोल रही हूँ।
0: जिया बोल रही हैं?
3: जी
0: मैम। जी कैसी हैं आप जिया?
3: मैम बढ़िया।
0: वाह क्या बात है, बढ़िया ही होनी चाहिए। आप हमें बताएं कि वर्ल्ड टूरिज्म डे किस दिन मनाया जाता है? सो स्वीट ऐसा अक्सर होता है ना, हाँ पता होता है बस दिमाग में नहीं आ रहा होता। अच्छा कोई बात नहीं, आपकी प्यारी सी आवाज हमारी जिया को बहुत अच्छी लगी, हमारे दिल को बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सो मच जिया।
3: थैंक यू मैम।
0: थैंक यू। तो जिया से हम यहाँ पर ज्यादा और सवाल तो नहीं पूछ पाए लेकिन इनकी आवाज हमें बहुत अच्छी लगी। हेलो
4: हेलो
0: हेलो नमस्कार, अपना नाम बताएं।
4: मैडम
0: जी नमस्कार, कहाँ से कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं बताइए?
4: मैं उमेश बात कर रहा हूँ हरियाणा से।
0: जी उमेश जी आपका स्वागत है। तो ये पहला सवाल आपके लिए है, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, सुना आपने नाम?

0: बताएं,
1: ये बताइए कहाँ पे, कहाँ स्थित है ये, भारत में कहाँ स्थित है?
0: एक बार हिंदी में रिपीट करेंगे? हिंदी में
1: आपको बताना, आप देखिए हिंदीकरण मुझे यहाँ पर इसका करना पड़ेगा। तो ये जो संस्थान है ये भारत देशों के साथ सांस्कृतिक जो हमारे संबंध हैं उसको सुधारने में कार्यरत है।
0: दिल्ली?
1: हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा जी, अगला सवाल आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि शहनशाह तरन्नुम किसे कहा जाता है? आप संगीत सुनते हैं, संगीत में रुचि रखते हैं?
0: ज्यादा नहीं सुनते
1: मतलब? अच्छा तो क्या कहूँ मैं, अगर आप ज्यादा नहीं सुनते हैं तो कुछ गैस करना चाहेंगे? एक ऐसे सिंगर, एक ऐसे लेजेंडरी सिंगर हैं ये, जाने माने सिंगर हैं, जाने माने
0: मोहम्मद रफी।
1: वाह क्या बात है, किसने प्रॉम्प्ट किया, खुद पता था, किसी ने बताया?
0: नहीं मैडम, मैं तो फोन कान पे लगा के आपसे बात कर रहा हूँ, ना कोई
1: यहाँ। चलिए चलिए, बिल्कुल मोहम्मद रफ़ी साहब को शहनशाह तरन्नुम कहा जाता है क्योंकि आवाज़ कुछ इस तरह से है कि उनके जाने के बाद भी आज हम उन्हें याद करते हैं और याद करते रहेंगे। अब आप हमें ये बताइए कि तीसरा सवाल है आपसे, गंगा नदी किस सागर में जाकर मिलती है, कहाँ जाकर मिलती है? वेरी गुड, तीसरा सवाल भी आपका एकदम सही है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है?
0: 28 फरवरी को मनाया जाता है।
1: बहुत बढ़िया, तो चौथा सवाल भी आपका यहाँ पर सही हुआ। ये बताइए कि बहुत ज्यादा जीके पढ़ते हैं, शौक है आपको पढ़ने का?
0: जी।
1: वेरी गुड, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, किस राज्य में?
0: चमोली
1: जी। बहुत बढ़िया, तो बन गए हैं आप आज के रेनबो जीनियर्स, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। यूं ही आप एफएम रेनबो से जुड़े रहें, अपना प्यार बरसाते रहें और हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनते रहें। अब देखते हैं अगले कॉलर हमारे साथ कौन है। हेलो
2: हेलो
1: हेलो हेलो, नमस्कार, कैसे हैं?
2: नमस्कार मैडम, शंकर वर्मा कटियार
1: जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। तो आपके लिए ये पहला सवाल। अच्छा जी, रिकॉर्ड कर रहे हैं
2: जी, मैम बोलिए।
1: अच्छा, अपने लिए याद बनाने के लिए ना, अपने दोस्तों को भेजेंगे, चलिए कि हम आज रेनबो जीनियस बने, देखो देखो हमें आज ये खिताब मिला है।
2: नहीं, पहले भी मैडम बने हुए हैं, तो मैं जब भी कॉल आता हूं रिकॉर्डिंग करते हैं।
1: हम तो डर ही गए थे कि बीच में से कौन मोहतरमा बोली जिन्होंने हमारी सीट पर कब्जा लिया है। जी अच्छा, अब आप बताइए कि मराठा राज्य इसके संस्थापक किसने स्थापना की, मराठा साम्राज्य की?
2: शिवाजी महाराज
1: जी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला आपके लिए हमारे पास प्रश्न कुछ इस तरह से है, जो बहुत आसान है। आप ये बताइए कि अगर हम भारत की बात करें तो सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो कहाँ है, किस नाम से जाना जाता है?
2: सबसे बड़ा मुंबई में है मैडम।
1: भारत का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो है
2: ये मैडम मुंबई, और दूसरा कोलकाता है मैम।
1: फिर से कहूंगी, सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो है, चलिए एक क्लू और देती हूँ, साउथ में है। चुक गए आप, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अगली मतलब
2: तमिलनाडु में है।
1: आप फिर कोशिश कीजिएगा दोस्त, आपसे यही गुजारिश है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। अगले कॉलर कौन है? हेलो
3: हेलो
1: जी, नमस्कार, नाम बताएं और बताएं कहां से?
3: जी नमस्कार, मैं संजय बात कर रहा हूं।
1: जी संजय, आपका स्वागत है, कहां से बोल रहे हैं?
3: मैम दिल्ली से।
1: दिल्ली से बोल रहे हैं, अच्छा। आप से अभी हमने पिछले कॉलर से प्रश्न किया था कि सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो भारत का अगर हम बात करें कहाँ है,
3: और क्या आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है।
1: मैं तो बहुत तेज बिंदास तरीके से बोल रही हूँ लगता है। आप भी हमारा टेस्ट लेते हैं,
3: अच्छा
1: चलिए बताइए सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो कहाँ है?
3: सबसे बड़ा
1: भारत में सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो,
3: फिल्म स्टूडियो
1: हाँ,
3: ये तो मैं मुंबई में है ना।
1: आप भी चुक गए, आप भी चुक गए। बहुत बड़े सेट्स, बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों का पिक्चराइज वहाँ पे।
3: अच्छा, नहीं नहीं ये नहीं, ये है, बता रहा हूँ ये है शायद एन रामचंद्रन जो थे साउथ के, उन्होंने बनाया था ये। एशिया का सबसे बड़ा भी मेरे ख्याल से।
1: बताइए
3: तमिलनाडु में, मेरे
1: नाम बताइए। नहीं तमिलनाडु नहीं।
3: अच्छा नाम बताना,
1: नाम बताइए, शहर का नाम भी बता सकते हैं आप।
3: चेन्नई में, हमें नाम नहीं पता।
1: आप भी चुक गए जनाब। खैर कोई बात नहीं, यूं ही प्रयास करते रहिए और

सफलता जरूर आपको मिलेगी। हम आपसे बस यही गुजारिश करना चाहते हैं कि आप शिद्दत से, ईमानदारी से सवालों के जवाब दीजिए, क्योंकि हर जीत एक अलग बात है, लेकिन जब आप अपनी नज़रों के आगे जीतते हैं तो मज़ा कुछ और ही होता है। फिलहाल आप सभी के लिए अगला ट्रैक यहाँ हमारे स्टूडियो से निकलता हुआ आपके दिलों तक पहुँचता हुआ।

0: भाई दिल तो सब कुछ जानता है, लेकिन कभी कभी ना दिमाग सही वक्त पर काम नहीं करता। बहुत सही बातें हमें पता होती हैं, लेकिन जब वो सवाल हमसे पूछा जाता है तो लगता है अभी अभी कहाँ स्किप हो गया। ऐसा होता है आपके साथ भी। फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं अगले कॉलर, और जान लेते हैं कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं। हेलो,
1: हेलो, सुधीर बोल रहे हैं मैडम।
0: जी सुधीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: हेलो मैडम जी, पूर्णिया से बोल रहे हैं मैडम।
0: जी बहुत बहुत स्वागत आपका। तो आपके लिए सबसे पहला सवाल ये है कि आपको ये बताना है कि इंडियन एयरफोर्स डे किस दिन मनाया जाता है, भारतीय वायु दिवस। कितना, 8?
1: 8 तारीख मनाया जाता है।
0: 8 कितनी, 8
1: अक्टूबर को।
0: साल भर में 8 12 बार आता है ना। अलग अलग महीनों में। जी
1: 4 दिसंबर को नौसेना मनाया जाता है।
0: वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मत बताइए सारे सवाल पहले से मेरा। अरे पेपर लीक कर रहे हैं आप, पेपर लीक कर रहे हैं। ऐसा करेंगे पेपर लीक हो जाएगा, ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, आपने एक शब्द सुना होगा QR, आजकल बहुत इस्तेमाल किया जाता है। जी अपना QR कोड दे दीजिए, हम आपको पैसे भी ट्रांसफर करते हैं, सुना है ना
1: जी।
0: इसके फुल फॉर्म बता सकते हैं?

0: क्वेश्चन हो गया मैडम।
1: बहुत टफ क्वेश्चन हो गया है। हम तो आप पेपर लीक करेंगे और हम टफ क्वेश्चन ना करें, बात तो बहुत गलत है।
0: वही तो,
1: ये पेनल्टी है
0: दूसरा पूछ
1: आपकी।
0: लीजिए मैडम, दूसरा पूछ लीजिए, ये लास्ट में पूछिएगा, लास्ट में पूछ लीजिएगा एक
1: अच्छा, तब
0: बार।
1: तक आप ढूंढेंगे है ना? वेरी गुड वेरी
0: नहीं नहीं
1: गुड।
0: नहीं ढूंढेंगे, मतलब नहीं मानिएगा तो मुझे अलग वाली बात है, क्योंकि
1: चलिए
0: सर
1: चलिए, आपने अपनी गलती मान ली कि आप पेपर लीक करवा रहे थे, तो
0: जी
1: हमने आपको यहाँ पर रियायत
0: जी
1: दे दिया। चलिए कोई नहीं। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि 12 जनवरी को हम युवा दिवस मनाते हैं।
0: स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को मनाए थे हमें,
1: ठीक है,
0: 12 जनवरी
1: वेरी
0: को,
1: गुड
0: युवा
1: वेरी
0: दिवस।
1: गुड। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, आपको ये आंसर पता था, इसके लिए ढेरों शुभकामनाएं आपको। अच्छा, SMS की फुल फॉर्म तो बता दीजिए, कितने SMS किए हैं आपने आज तक?
0: मैं
1: SMS का फुल फॉर्म बता दीजिए। चलिए,
0: SMS का
1: हाँ, SMS का
0: मैसेज मारता
1: मैसेज मसाला लगता है रेनबो पर आपका जो असर है ना, बहुत गहरा है। मैसेज मसाला मिक्स नहीं है
0: SMS का फुल फॉर्म होता है मैडम, शॉर्ट मैसेज सर नहीं
1: मुझे
0: पता
1: आपकी
0: है,
1: बात
0: तो
1: ना बड़ी पसंद आई, मैसेज मसाला मिक्स आपने कर दिया
0: इसीलिए हमको याद आ गया, मुझे बता रहा हूँ मुझसे।
1: आप रेनबो बहुत सुनते हैं, इस बात को सबूत
0: जी
1: आपने यहाँ
0: जी
1: दे
0: जी
1: दिया।
0: और स्वामी विवेकानंद वाला तो कल का ही सवाल है, मतलब उसका ही जो मनाया गया मैडम
1: हाँ,
0: कल, उसका ये था,
1: चलिए
0: कुल
1: बहुत
0: तिथि था।
1: बढ़िया, बहुत
0: जी
1: बहुत
0: जी
1: शुभकामनाएं दोस्त, आपने कोशिश की, प्रयास किया, पर जितना सवाल
0: जी
1: पूछा जाए जिंदगी में, याद रखिएगा, उससे ऊपर जवाब नहीं देना है,
0: जी
1: नहीं तो कटघरे में खड़े हो जाएंगे आप
0: जी
1: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त हमसे जुड़ने के लिए और सवाल के जवाब देने के लिए। अब अगले कॉलर कौन है हमारे? अरे, ये साउंड मुझे सबसे ज्यादा भयानक लगती है, मैं डर से जाती हूँ, मेरा दिल ना, मेरी धड़कने रुक जाती है जब किसी फोन कॉल की आवाज मुझे सुनाई देती है, मुझे ऐसा लगता है कोई ना जाने कब से मेरा इंतजार कर रहा था, और एक मैं हूँ निर्दयी, जितना इंतजार कराने के बाद अब उस फोन कॉल की आवाज़ सुनने, रिंगटोन की आवाज़ सुनने के बाद मैं डर गई हूँ, डर सी जाती हूँ। अगले कॉलर कौन है हमारे साथ? हेलो
0: हेलो जी,
1: हेलो, नाम बताएं, बताएं कहाँ से बोल रहे हैं।
0: मेरा नाम आकाश है और मैं
1: जी
0: दिल्ली से बात कर
1: आकाश,
0: रहा
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो अभी कुछ देर पहले हमने पूछा था हमारे एक लिसनर से कि QR का फुल फॉर्म क्या है,
0: हूँ। क्विक रिस्पॉन्स,
1: क्विक रिस्पॉन्स कोड। हाँ, QR मतलब क्विक, आर मतलब रिस्पॉन्स, और
0: रिस्पॉन्स।
1: क्विक रिस्पॉन्स कोड। ठीक है जी, सही जवाब है। वोटर्स डे कब मनाया जाता है, नेशनल वोटर्स डे?
0: ये 25 जनवरी को मनाया जाता है, इस दिन इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी।
1: वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सारी तैयारियों के साथ आप हमेशा आते हैं और बहुत सही जवाब देते हैं आप। अब आप ही बताइए कि BCCI कहाँ स्थित है?
0: BCCI मुंबई में।
1: वेरी गुड, 3 सवालों के सही सही जवाब आपने यहाँ पर हमें दिए। अच्छा ये बताइए, फिल्मों के शौकीन हैं आप?
0: मैम थोड़ा बहुत।
1: अच्छा, शोले देखी है?
0: हाँ जी हाँ जी मैम।
1: इसके निर्देशक किसने बनाई ये फिल्म?
0: शोले राजेश सिप्पी,
1: थोड़ा सा पास हैं आप।
0: रमेश सिप्पी।
1: वेरी गुड वेरी गुड, थोड़ी देर के लिए ना आपने हमको डरा दिया था, तो आपके हो गए हैं अब 4 सवाल क्लियर। अब आपके लिए है 5वां सवाल, ये कि इनकलाब जिंदाबाद, ये नारा किसने दिया था?
0: इनकलाब जिंदाबाद, ये भगत सिंह जी ने दिया था।
1: वेरी गुड, तो बन गए आप आज के हमारे रेनबो जीनियस। बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्त आपको, यूं ही आप प्रगति मार्ग पर प्रशस्त रहें और जीवन में बस सफलता ही सफलता है मिले। बहुत बहुत
0: धन्यवाद।
1: शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए। तो आप सभी दोस्त कोशिशें कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, फोन कॉल्स कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं बस हमारी फोन कॉल एक बार उठ जाए, फिर हम देखिएगा कैसे सही सही जवाब देंगे। बिल्कुल, आप सही जवाब देने के लिए एकदम आतुर हैं और हम भी आपसे सवाल पूछने के लिए उतने ही ज्यादा बेताब हैं।

0: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
1: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
0: क्या ये जांच उपलब्ध है?
2: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
3: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुँचने से रोका जा सकता है।
2: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
3: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
4: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
5: यार, मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
6: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

0: वेलकम बैक, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका और नियाल, और प्रोग्राम चल रहा है आपका अपना रेनबो जीनियस, जहां पांच सवालों के सही जवाब देने के बाद बन जाते हैं रेनबो जीनियस। तो जुड़ चुके हैं हमारे साथ, यानी कि जुड़ना बाकी है हमारे कॉलर्स को जो बहुत देर से हमें कॉल कर रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ कौन जुड़ रहे हैं, ये रहे। हेलो हेलो हेलो लगता है इंतज़ार करते करते ये भी थक गए। खैर कोई बात नहीं दोस्त, आपसे गुजारिश है कि आप दोबारा हमें ज़रूर कॉल कीजिएगा। लेकिन एक शेर अर्ज किया है कि उम्र दराज मांग के लाए थे चार दिन, उम्र दराज मांग के लाए थे चार दिन, दो आरजू में कट गए और दो इंतज़ार में हमारे कॉलर्स भी इंतज़ार करते करते थक गए। हेलो
1: हेलो
0: नमस्कार, अपना नाम बताएं और बताएं कहाँ से बोल रहे हैं।
1: जी जी नमस्कार सभी को मेरा प्यारा नमस्कार, अमित त्यागी बात कर रहा हूँ, ग्राम नंगोलापुर यूपी से।
0: वाह बहुत बहुत स्वागत है। अभी एक शेर पढ़ा मैंने, उम्र दराज मांग के लाए थे चार दिन, सुना है आपने?
1: जी
0: आपने ये शेर सुना है?
1: कौन सा
0: मुझे लगता है सवाल पूछना ही
1: आवाज है ना मैम,
0: मेरी आवाज जनाब बिल्कुल चुस्त है, दुरुस्त है, बुलंद है।
1: कट के कट जा रही है, मैं
0: जी अब ये
1: आवाज आपकी प्यारी है।
0: नहीं नहीं आवाज का आवाज में क्या रखा है, दिल बड़ा होना चाहिए, आवाज़ तो पहुंची जाती है खैर चलिए मैं आपको एक बार दोबारा से ये बता देती हूँ। मैंने शेर कहा कि उम्र दराज मांग के लाए थे चार दिन, दो आरजू में कट गए, दो इंतज़ार में। उम्मीद करती हूँ कि आपको पता होगा कि किसने लिखा है, पता है?
1: नहीं मैम।
0: नहीं मैं सवाल नहीं नहीं नहीं यार, रेनबो जीनियस बनने के लिए सवाल नहीं है ये डरिए मत, ये बहादुर शाह जफर ने लिखा। आप जानते हैं बहादुर शाह जफर कौन थे?
1: जी नहीं ये भी नहीं पता।
0: ये भी नहीं पता, सवाल में था ही नहीं यार। आप दोस्त आप परेशान बिल्कुल मत हो बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल एम्परर थे, आखिरी मुगल राजा थे। तो मुझे लग रहा था कि ये सवाल थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसीलिए इस सवाल को मैंने इंक्लूड ही नहीं किया। हाँ मैंने गूगली फेंकी थी दोस्त, गूगली थी, गूगली गूगली, टेंशन मत लीजिए ठीक है आप परेशान हो तो हम परेशान हो जाते हैं, बस आप ये बात जान लीजिए।
1: आपके साथ हूँ तो परेशान है क्या? हाय
0: हाय क्या बात है, दिल जीत लिया
1: मालिक, आपका साथ और मालिक का आशीर्वाद बना रहे
0: हैं, क्या बात है, दिल जीत लिया दोस्त। तो आप अब हमें ये बताइए, बहुत आसान सा सवाल मैं आपसे पूछूंगी क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप बहुत ही हमारे प्रिय मित्र हैं क्योंकि आप रेनबो बहुत सुनते हैं। आप बताएं कि ह्यूमन राइट्स डे किस दिन मनाया जाता है?
1: ह्यूमन राइट्स डे किस दिन मनाया जाता है? ये भी नहीं पता मैम।
0: कोई बात नहीं दोस्त, आपने समय निकाला, आपने कोशिश की, आपको ढेरों शुभकामनाएं हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: आपको भी पूरे रेनबो परिवार को
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो बड़े प्यार के साथ बड़े सलीके के साथ हमसे मिलते हैं, ये सोचते हैं कि एक बार फ़ोन पर बात हो जाए, और इसी को प्यार कहा जाता है कि भले ही बदले में कुछ ना मिले, भले ही तेरे कूचे से हम लौटे तो कुछ ऐसे लौटे आगे शेर नहीं पढ़ूंगी, फिर आप सोचेंगे मैं सवाल पूछूंगी, सवाल नहीं पूछ रही हूँ, बस एक शेर पढ़ रही थी। आदत से मजबूर हूँ। फिलहाल एक अगले कॉलर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हेलो
2: नमस्कार मैडम
0: जी, नमस्कार बताइए कैसे हैं?
2: बढ़िया मैडम आप बताइए कैसे हैं?
0: एकदम चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त। अब बताएं आपका नाम क्या है?
2: रामधारी अवाना बात कर रहा हूँ, हिसार हरियाणा से।
0: वाह क्या बात है, तो आप तैयार हैं एकदम हमसे बात करने के लिए है ना?
2: जी बिल्कुल।
0: अच्छा आप हमें बताएं कि बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है?
2: ट्रम्बे महाराष्ट्र।
0: चलिए जी बढ़िया। अच्छा अगला सवाल आपसे हम पूछते हैं कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी?
2: श्रीमती सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश।
0: वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब आपको हमें ये बताना है कि तीसरा सवाल आपके लिए है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप?
2: महाद्वीप एशिया महाद्वीप।
0: वेरी गुड, तीन सवाल आपके एकदम सही सही। भारत छोड़ो आंदोलन कब पारित हुआ था?
2: भारत छोड़ो अगस्त 1942।
0: वेरी गुड, 8 अगस्त 1942। तो आपके हो गए हैं चार सवाल सही। अब आपको बताना है पांचवा सवाल, इसका सही जवाब आप देखकर बन जाएंगे रेनबो जीनियस। गाजर में कौन सा विटामिन होता है?
2: कैरोटीन।
0: विटामिन का नाम बताइए।
2: विटामिन का नाम
0: पूछे। हाँ हाँ हाँ ए बी सी
2: विटामिन ए।
0: वेरी गुड, तो आप बन गए हमारे आज के रेनबो जीनियस, बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्त. आप यूं ही प्रगति करते रहें, जिंदगी में सफलता हासिल करें और हम आपकी सफलता में आपके साथ होंगे हमेशा हर दम हर पल. बहुत बहुत शुक्रिया.
2: थैंक यू सो मच.
0: जी तो इस तरह से हमें हमारे एक और रेनबो जीनियस मिले. फिलहाल कौन जुड़ चुके हैं हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर? हेलो.
1: हेलो
0: जी, नमस्कार. अपना नाम बताएं, बताएं कहाँ से बोल रहे हैं.
1: विनोद सरन से.
0: नाम क्या है आपका?
1: विनोद.
0: विनोद जी, जी आपके लिए सबसे पहला सवाल ये है कि आपने सुना होगा जब ब्लड ग्रुप की बात होती है तो एक होता है यूनिवर्सल डोनर और होता है यूनिवर्सल रिसेप्टर. डोनर शायद अमूमन लोग जानते हैं, यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन होता है, कौन सा ब्लड ग्रुप है? मुश्किल है.
1: ए.
0: हाँ, हाँ और बताइए. ए नहीं, सिर्फ ए नहीं है.
1: जी.
0: सिर्फ ए नहीं है दोस्त. ए तो बिल्कुल ही नहीं है. ए के साथ और क्या है?
1: ओ हो सकता है.
0: मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगी कि दोस्त यूनिवर्सल रिसेप्टर यानी कि जो किसी से भी ब्लड ले सकता है वो होता है ए बी ग्रुप, और यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो ओ ग्रुप होता है. खैर कोई बात नहीं, आपने प्रयास किया, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए. अब देखते हैं कि अगले कॉलर कौन है हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर. फिलहाल लगता है कि अभी कोई नहीं है. हम दरख्वास्त करना चाहेंगे अपने दोस्तों से, अगर आप वो लगता है कि आप हमारे सवालों के सही सही जवाब दे सकते हैं तो भाई देरी कैसी. और कहते हैं कि अगर समय रहते किसी काम को पूरा कर लिया जाए तो बात ही कुछ और होती है.

0: सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
2: वेलकम बैक, मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त गीता कौनियाल। समय भले ही हमारे पास कम क्यों ना हो, लेकिन हमारे पास कुछ, हमारे साथ कुछ कॉलर्स हैं जिनसे बात करना बनता है, क्योंकि बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। अरे अरे अरे अरे अरे, बस यहीं पर चोट लगती है मेरे दिल पर, सच बताती हूँ, यकीन मानिए। जब आपसे बात ना हो पाए और ये टूंग की आवाज़ लगता है कि ये कोई संगीत तो नहीं लेकिन किसी की कोशिश, किसी का प्रयास जरूर है। हेलो हेलो हेलो हेलो, पटना से बोल रहे हैं, राजीव बोल रहे हैं जी। आपके लिए सबसे पहला सवाल

0: की आरबीसी, जब हम ब्लड की बात करते हैं, खून की बात करते हैं, तो हम कहते हैं ना आरबीसी,
1: रेड ब्लड सेल होता है मैडम।
0: वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, खून की बात हो रही है, तो रक्त में ना कौन सा धातु पाया जाता है, कौन सा धातु होता है?
1: लो लो पाया जाता है मैडम।
0: वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब बताइए, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल डेजर्ट कौन सा है?
1: सहारा मरुस्थल है,
0: भारत की बात कर रही हूँ मैं।
1: राजस्थान है मैडम।
0: हाँ, बताइए बताइए, कौन सा है, नाम क्या है उसका, नाम बता सकते हैं?
1: राजस्थान में ही मैडम है।
0: उसके नाम से गाड़ी भी चलती है?
1: गाड़ी चलती है।
0: बता सकते हैं, जल्दी बताइए दोस्त, क्योंकि समय हमारे पास बहुत ज्यादा कम है यहाँ पर।
1: सवाल एक बार दोहराइए मैडम।
0: जी, तो हम आपको बता देते हैं कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल डेजर्ट, इसका नाम है थार। खैर, कोई बात नहीं दोस्त, आपने कोशिश किया, प्रयास किया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और हम यही चाहेंगे कि आप यूं ही प्रयास करते रहें। और बहुत सारे दोस्त हमारे नाराज़ होकर चले जाते हैं, वापस से सोचते हैं कि हमारा नंबर तो आ ही नहीं रहा है, कोई हमसे बात ही नहीं कर रहा है, हमारे सवालों को नहीं लिया जा रहा है। आप सब दोस्तों से हम यही कहना चाहेंगे कि हम चाहते हैं आप सभी को हम शामिल कर पाए हमारे शो पर, यही हमारा प्रयास हमेशा रहता है। एक कॉलर और जुड़ चुके हैं, और चलते चलते इनसे भी हम बात कर लेते हैं। हेलो
2: हेलो, नमस्कार मैडम
0: जी। नमस्कार, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? कैसे हैं?
2: मैं केशव चक्रवर्ती, त्रिपुरा से, अगरतला
0: जी। मैं तो आपकी आवाज सुनने के बाद एकदम पहचान जाती हूँ। अच्छा, आप
2: आई एम वेरी लास्ट मोमेंट।
0: यस यस यस, बट स्टिल यू आर द विनर। कहते हैं जो जीता वही सिकंदर, जिसने आखिरी वक्त पर भी झंडा गाड़ दिया वो सिकंदर हो जाता है। तो आप हमें बताएं कि जो ह्यूमन स्किन है, मानव की जो त्वचा है, इसका इसकी जो स्टडी, इसका जो अध्ययन है, इसको क्या कहते हैं?
2: एनाटॉमी, साइंस?
0: नो, इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी। स्किन की बात की मैंने यहाँ पर।
2: स्किन की बात, डर्मेटोलॉजी?
0: यस, डर्मेटोलॉजी इसको कहा जाता है। अगला सवाल आपसे ये है, किस विटामिन की कमी से सूजन हो जाती है बॉडी में, स्वेल हो जाती है बॉडी?
2: ये विटामिन डी है।
0: विटामिन सी, विटामिन सी की वजह से।
2: विटामिन सी,
0: जी जी जी। खैर, कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हर बार कॉल करते हैं और हमारे शो में सम्मिलित होते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि जिंदगी हमेशा हमें मौके देती है, लेकिन उन मौकों पर हम कैसे रिएक्ट करते हैं ये हम पर निर्भर करता है। तो आज नहीं तो कल ज़रूर, वो पल ज़रूर आएगा जिसके लिए हमने ना जाने कितनी ही रातें गुजारी हैं इंतज़ार में। फिलहाल आपकी दोस्त गीतिका आपसे ले रही है इजाज़त, और वादा है आपसे कि अगले शो पर ना और भी आसान सवाल लाऊंगी। हर सवाल आसान है जो तुमने की हो मेहनत, तो तुम्हें महसूस होगा कि दुनिया मेरे कदमों तले है, मेरी मुट्ठी में है। तो यूं ही प्रयास करते रहिए, कोशिशें करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। फिलहाल आपकी दोस्त गीतिका उनियाल आपसे ले रही है इजाजत, अगले संडे पर मिलेंगे और करेंगे बहुत सारी बातें, और बातों के साथ बहुत सारे सवाल जो आपको पता है पहले से। और एक हफ्ते का टाइम दे रही हूँ, खूब मेहनत कीजिएगा।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे के आकाशवाणी रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। होमरूज जल डमरू मध्य के से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन अधिनियम के अंतर्गत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। अमरनाथ यात्रा के पहले 2 दिन में 32,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के पहले जत्थे को चंपावत जिले के तनकपुर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस जत्थे में एक डॉक्टर सहित 49 तीर्थ यात्री हैं, जिनमें 34 पुरुष हैं और 15 महिलाएं हैं। भारत की अध्यक्षता में कल से केरल के कोची में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। भारत असम के गुवाहाटी में कल से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। और खेलों में ग्रैंड शतरंज टूर में ब्लिट्ज सेक्शन के पहले दिन ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद 4th स्थान पर पहुंचे। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला होगा। तो ये थे इस घंटे के आकाशवाणी रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: हेलो एंड नमस्ते इंडिया। ये शहर की जिंदगी, ये शहर की जिंदगी, रुकती ना ठहरती जिंदगी, हर रोज नई दौड़ में गिरती संभलती जिंदगी, हर दिन अलग है इसकी बात। प्रोग्राम सैटेलाइट से मैं हूँ प्रियंका आपके साथ और आज है संडे। जी हाँ, क्या किया संडे बताइएगा मुझे। फिलहाल अभी सुनते हैं गाना गुड इवनिंग।

सीरियसली क्या ये डिवोशनल ट्रैक है ना, एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है ना. इनफैक्ट जैसे ये सॉन्ग शुरू होता है ना, एक शांत एनर्जी फील होती है, एक हीलिंग होती है, जैसे हिमालय की ठंडी हवाओं में भक्ति का संगीत गूंज रहा हो. प्रोग्राम चल रहा है सिटी लाइट्स. जी हाँ, यहाँ पर बात होगी भारत की धड़कन यानी दिल्ली. जी हाँ, उसके बारे में हम बात करेंगे. और वैसे पता है यहाँ पर अब हरियाली भी गुनगुना रही है. कैसे? वन महोत्सव, जिसे फेस्टिवल ऑफ ट्रीज भी कहा जाता है दोस्तों, सिर्फ एक ट्री प्लांटिंग इवेंट नहीं है बल्कि एक स्ट्रॉन्ग इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव है जो हर सिटीजन को सस्टेनेबल लिविंग अपनाने, फॉरेस्ट की वैल्यू समझाने और नेचर के साथ अपना कनेक्शन और गहरा बनाने के लिए इंस्पायर करता है. दोस्तों इस बार वन महोत्सव 2024 पूरे देश में 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जा रहा है. और इस बार दोस्तों दिल्ली गवर्नमेंट वन महोत्सव को बिल्कुल नए अंदाज में सेलिब्रेट कर रही है. ट्री ऑन व्हील्स कैंपेन के थ्रू हर डिस्ट्रिक्ट में वृक्ष रथ इनिशिएटिव चलाया जा रहा है जो सीधा लोगों की डोर स्टेप तक फ्री सैपलिंग्स पहुंचाया जा रहा है. और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मोबाइल टीम स्कूल्स, ऑफिसेज, आरडब्ल्यूए और घरों तक डायरेक्टली फ्री सैपलिंग के साथ प्लांटिंग टूल्स और टेक्निकल गाइडेंस भी प्रोवाइड कर रही है ताकि जो भी प्लांटेड ट्री हो वो हेल्दी तरीके से सर्वाइव हो. इस कैंपेन के अंडर दिल्ली गवर्नमेंट 70 लाख सैपलिंग्स का लगाने का टारगेट रखती है. जी हाँ, कैंपेन को और इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए हर प्लांटेड सैपलिंग की जियो टैगिंग और जियो फेंसिंग भी की जा रही है ताकि उनकी ग्रोथ और सर्वाइवल को लॉन्ग टर्म तक ट्रैक

इस पूरे ग्रीन मिशन को डिजिटली एम्पावर करने के लिए ग्रीन ड्राइव 2026-2027 पोर्टल लॉन्च किया गया है। सिटीजन ग्रीन ड्राइव डॉट डेली महोत्सव डॉट इन पर जाकर प्लांटेशन ड्राइव के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं, फ्री स्लैपलिंग्स रिजर्व कर सकते हैं और अपने नियरेस्ट नर्सरी की डिटेल्स भी ले सकते हैं। दोस्तों, इस पोर्टल पर प्लांटेशन डाटा, पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस और प्रोग्रेस रिपोर्ट्स रेगुलरली अपलोड की जाएगी, जिससे कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। सिटीजन यहाँ ग्रीन वॉरियर के रूप में रजिस्टर करके फ्यूचर इनिशिएटिव का भी हिस्सा बन सकते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट का फ्लैगशिप मिशन एक पेड़ माँ के नाम इस इनिशिएटिव को और भी इमोशनल और मीनिंगफुल डायमेंशन देता है। दोस्तों, ये सिर्फ प्लांटेशन ड्राइव नहीं बल्कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो दिल्ली को ज्यादा क्लीन, ज्यादा ग्रीन और सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ ले जा रही है। सो एवरी दिल्ली हाइट शुड जॉइन दिस इनिशिएटिव फॉर अ ग्रीनर, क्लीनर एंड हेल्दियर कैपिटल। फिलहाल जीने के इशारे मिल जाएं। जी हाँ, तो चलिए अनशंकर महादेव कुन को सुनते हैं प्रोग्राम स्लाइड्स में। मैं हूँ प्रियंका आपके साथ, जहाँ होती है सिटी की बातें, सिटी के किस्से, सिटी की कहानियां।

शंकर महादेवन की आवाज़। वैसे दोस्तों, जैसे दिल्ली अपनी पुरानी तहजीब और मॉडर्न एनर्जी को साथ लेकर चलती है ना, वैसे ही इसी गाने में भी स्ट्रगल और पॉजिटिविटी का बैलेंस है ना। हर बीट एक नई राह दिखाती है, जैसे शहर का ट्रैफिक और रश के बीच लोग अपनी मंजिल ढूंढी लेते हैं ना, और कहते हैं जीने के इशारे मिल गए, ओफ मुझे सही रोड मिल गई है, ओफ ट्रैफिक चला गया है। दिल्ली की उस स्पिरिट को रिफ्लेक्ट करता है ये ट्रैक, जहाँ हर दिन एक नई शुरुआत और हर मोड़ पर जीने की वजह मिल जाती है। मन में कितनी उलझने होती है ना, सीरियसली मैं भी हूँ, बहुत उलझने चल रही हैं मन में, लेकिन जैसे ही माइक पे आ गई आपसे मेरी दोस्ती इस तरह से है कि बस क्या कहें। और आज तो संडे है, किसी के चेहरे पर पूरे हफ्ते की मेहनत के बाद सुकून की मुस्कान है ना। और कोई अपनों के साथ यादगार संडे इवनिंग बिताने जा रहा है, तो कोई पूरा दिन घूम कर अब घर की तरफ लौट रहा है, और कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो संडे भी शाम को ऑफिस जा रहे होंगे, कुछ लोगों की जॉब्स होंगी इस तरह से, है ना। हर रास्ते पर एक बस कहानी चल रही है, हर चेहरे के पीछे एक अलग सफ़र है, हर दिल के पास अपने किस्से हैं, इन्हीं कहानियों और इन्हीं एहसासों और इस शहर की धड़कन को अपनी आवाज़ देता है प्रोग्राम सैटेलाइट्स। जी हाँ, चलिए शाम धीरे धीरे अपनी बाहों को शहर को समेट रही है, फिलहाल ये गाना सुनते हैं। और हाँ, अगर आप भी कुछ बताना चाहते हैं शहर के बारे में, कहाँ है ट्रैफिक, प्रियंका बहुत ट्रैफिक है, बारिश आज तो बरसो रे मेघा। जी आज बहुत गाने सुने होंगे आपने ऐसे, बहुत बारिश अच्छी है, अच्छी खासी बारिश आई है, पर कहीं पर बारिश की राह तकते रहे क्योंकि मौसम तो रहा था घना अंधेरा, लेकिन बौछार नहीं पड़ी। जी हाँ, लोग तकते रहे अपनी बालकनी से कि अभी बारिश आएगी, अभी कहते ना कि भीगे हुए पलों से हम दोस्ती करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिलहाल चलिए, अगर आप बताना चाहते हैं कि कहाँ पर ट्रैफिक है तो प्लीज़ बता दीजिए 9868107070। हमारे दोस्तों को हेल्प मिल जाएगी, दोस्तों वो बचा हमारे दोस्त जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं, तो अगर उनको हेल्प मिल जाएगी तो अच्छा रहेगा ना। तो चलिए 9868107070 पे बताइए ट्रैफिक अपडेट, दिल्ली में किस तरह का ट्रैफिक का हाल। और ये ट्रैक श्रेया घोषाल की मीठी सी आवाज, मैं हूं प्रियंका वर्मा आपके साथ।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: जी हाँ, वेलकम बैक। आ गई हूँ मैं प्रोग्राम सैटेलाइट्स लेकर। सैटेलाइट्स दिल्ली की धड़कन महसूस करते हैं आप, दिल्ली की कहानियाँ होती हैं और दिल्ली को और करीब से महसूस करते हैं आप यहाँ। जी दोस्तों, बच्चों को साइबर क्राइम, नशे और सेक्सुअल ऑफेंसेस से सुरक्षित करने के लिए दिल्ली पुलिस ने दिल्ली सेफ्टी अवेयरनेस मंथ यानी बाल सुरक्षा जागरूकता माह के तहत डिजिटल कॉमिक्स कैंपेन शुरू किया है। जी हाँ, इनके ज़रिए बच्चों को आसान और इंटरेस्टिंग तरीके से सुरक्षा से जुड़ी ज़रूरी बातें सिखाई जाएंगी। दिल्ली पुलिस चाहती है कि इस कैंपेन में बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता और टीचर्स भी शामिल हो, ताकि घर और स्कूल दोनों जगह बच्चों की सुरक्षा को लेकर अवेयरनेस बढ़े। इन डिजिटल कॉमिक्स में साइबर सुरक्षा, फिजिकल अब्यूज से बचाव, नशे से दूर और पॉक्सो कानून जैसे, पॉक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस कानून जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को आसान तरीके से समझाया जाएगा। दोस्तों, अभियान शुरू होने से पहले दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर्स में स्कूल टीचर्स को स्पेशल ट्रेनिंग दिया गया है। इनमें से कुछ टीचर्स को मास्टर ट्रेनर बनाया गया है। अब ये टीचर अपने स्कूलों में बच्चों और अन्य टीचर्स को बाल सुरक्षा के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। पूरे महीने हर सोमवार को स्कूलों में विशेष सेशंस होंगे। इनमें छात्र डिजिटल कॉमिक्स पढ़ेंगे, अपने सवाल पूछेंगे और सेफ्टी से जुड़े इंपॉर्टेंट विषयों पर चर्चा करेंगे। ज़रूरत पड़ने पर दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी इन सेशंस में शामिल होंगे। जी हाँ, ताकि वो बच्चों के सवालों के जवाब दे सके। मास्टर ट्रेनर्स को डिजिटल स्पेशली डिजाइन कॉमिक बुकलेट्स भी दी गई हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग है और काफी इंपॉर्टेंट है हर स्कूल के लिए, हर बच्चों के लिए, इनफैक्ट हर पेरेंट्स के लिए। तो इस कैंपेन का हिस्सा बनिए और फिलहाल प्रोग्राम सैटेलाइट से हमारे साथ जुड़े रहिए। और दोस्तों, बच्चों की सुरक्षा आप भी जानते हैं कि इन दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट, एक थोड़ा एक होता ना कि कंसर्न है बच्चों की सुरक्षा का, जो हम आए दिन देख रहे हैं कि कितना गलत होता जा रहा है। तो प्लीज़ इस अभियान को बहुत सीरियसली लिया जाए और इस पर काम किया जाए।

सोचिए बारिश की हल्की सी रिमझिम और इस गाने की गहरी आवाज़, आशा भोसले और जगजीत सिंह का डुएट कमाल का, दोनों मिलकर दिल के उस शहर की पुरानी कहानियों से जोड़ देते हैं, जैसे भीगे मौसम में कुछ अधूरी मुलाकातें फिर से जिंदा हो जाती हैं। है ना, कुछ कहीं खो गए क्या? शहर की बातें हो रही हैं, सिटी की बातें, जी हाँ, सिटी की किस्से, सिटी की कहानियाँ। सिटी लाइट्स प्रोग्राम में मैं हूँ प्रियंका वर्मा आपके साथ। वैसे जैसे कि मैंने, आप जानती हैं कि जो मौसम है वो बदला हो चुका है दिल्ली का। दोस्तों, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इशू किया है वेदर अलर्ट। जी हाँ, प्रेडिक्ट किया है कि बहुत तेज़ बारिश के साथ तेज़ हवाएँ भी चल सकती हैं 5 जुलाई से 9 जुलाई तक, पर हाई ह्यूमिडिटी भी रहेगी। जी हाँ,

इसलिए चिपचिपा भी रह सकता है। तो बहुत ध्यान से अपने साथ हमेशा अम्ब्रेला रखिए, ये ज़रूरी है, क्योंकि भीग जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। और ये वाटर लॉगिंग ना होने दें अपने घर के आसपास, जहाँ मच्छर आ जाते हैं, फिर डेंगू हो जाएगा, और आपको पता है बीमारियाँ कितना डेंजरस होती हैं। और मैंने ये भी देखा कि जैसे हाई ह्यूमिडिटी और मॉनसून शावर्स दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, वो कहीं पर एस्थमेटिक पेशेंट के लिए बहुत ही सीरियस हो जाता है, सही नहीं होता है। तो एस्थमेटिक पेशेंट जो होते हैं वो बहुत ध्यान रखें, और जैसे ऑक्सीजन को बार बार मॉनिटर करते रहें, जैसे आप लोग करते हैं। जी हाँ, जो ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं जिनकी ऑक्सीजन काफ़ी फ्लक्चुएट होती है, उनको इस मौसम में खासकर बहुत ध्यान रखना होता है। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, और अपने साथ अम्ब्रेला ज़रूर लेके जाइएगा। ये नहीं कि आज बैग भारी हो गया तो कोई बात नहीं, सब बैग भी साथ में रख लीजिएगा। और इसके साथ ही ये है कि अपने साथ जो होता है ना, कि पानी ज़रूर पीजिएगा, क्योंकि जब ह्यूमिडिटी हो जाएगी और अगर आपके अंदर पानी की कमी हो जाएगी तो भी सर दर्द हो जाता है, बहुत हेडेक होता है। तो इसलिए अपना जो शहर है उसका भी ख्याल रखिए, साथ में अपना भी ख्याल रखिए और साथ में हमारा भी ख्याल रखिए। जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, और हम भी आपका ख्याल रख रहे हैं। आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, जहाँ मैं हूँ प्रियंका, आपके साथ प्रोग्राम से लाइट्स में। चलिए अब अरिजीत सिंह को सुनते हैं, He's an emotion. Seriously, क्या आवाज है, फिर ले आया दिल फ्रॉम द फिल्म बर्फी।

0: हमें जीवन देती है और पेड़ उस जीवन को सांसें देते हैं। इस बार
1: माँ के सम्मान में, धरती माँ के उत्थान में
0: दिल्ली वन एवं वन्य जीव विभाग लेके आ रहा है मिशन 70 लाख पौधारोपण अभियान, एक पेड़ माँ के नाम।
1: दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ा वन भागीदारी पौधारोपण अभियान, जिसका शुभारंभ 7 जुलाई को माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के कर कमलों से होगा।
0: अधिक जानकारी या पौधारोपण स्थल पर अपना स्लॉट बुक करने के लिए www.greendrive.delhi1mahotsav.in पर जाएं या 8588999799 पर कॉल कीजिए।
1: अगर आपके पास पौधा लगाने की जगह है तो वृक्ष रथ को बुलाइए या नर्सरी लोकेटर की मदद से अपनी नजदीकी सरकारी नर्सरी से निशुल्क पौधा प्राप्त कीजिए।
0: और अगर आप चाहते हैं कि आपका ये संकल्प सिर्फ एक पौधे तक सीमित ना रहे तो बनिए एनवायरमेंटल सेवियर और दिल्ली सरकार के साथ जुड़कर दिल्ली को और ज्यादा स्वच्छ, हरित और स्वस्थ बनाए।

इस ट्रैक में, जी हाँ, वैसे इस ट्रैक में प्यार की सॉफ्टनेस और लॉन्गिंग दोनों ब्यूटीफुली ब्लेंड होते हैं ना, और इसका जो रियल मैजिक है वो उनके वोकल्स में बसा है। जैस्मीन और सतेंद्र की अपने अलग अलग टेक्सचर्स के साथ एक खूबसूरत इमोशनल कैनवस क्रिएट करते हैं। उन दोनों के वोकल ट्रांजिशन मैजिकल, जहाँ गाना का एहसास से दूसरे एहसास में स्मूथली ग्लाइड करता है। फिलहाल दिल्ली का अपडेट। जी हाँ दोस्तों, राजधानी में सड़क दुर्घटनाओं यानी रोड एक्सीडेंट्स में पैदल यात्रियों की मौत और गंभीर चोटों को बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए पीडब्ल्यूडी फिर सेंट्रल वर्चुअल योजना को बड़े लेवल पर लागू करने जा रहा है। पहले चरण में दिल्ली के करीब 200 किलोमीटर लंबी प्रमुख सड़कों पर कॉन्क्रीट की दो ऊंची दीवारों वाले सेंट्रल वर्ज बनाए जाएंगे। इनका जो मेन गोल है वो है कि पैदल यात्रियों को जो वो गलत तरीके से रोड क्रॉस कर लेते हैं ना, उसे रोकना और उन्हें फुट ओवर ब्रिज और सबवे का यूज़ करने के लिए उन्हें इंस्पायर करना, जी हाँ, ताकि सही तरह से रोड वो क्रॉस कर चुके और उनकी ज़िंदगी भी सलामत रहे। दिल्ली में होने वाले कुल रोड एक्सीडेंट्स में लगभग 44% है दोस्तों, जिसे पैदल यात्री जो है वो अफेक्टेड होते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए रोड सेफ्टी को मजबूत करने की दिशा में ये कदम उठाया जा रहा है। और साथ में अब जो नए बनने वाले हैं सेंट्रल वर्ज, उसकी जो ऊंचाई है वो साढ़े तीन फीट ऊंची दीवारों से लेकर लगभग 4 फीट तक रखी जाएगी, और इसमें इन दोनों को और मजबूत कंक्रीट दीवारें बनाई जाएंगी, जबकि बीच के हिस्से में मिट्टी भरकर हरियाली विकसित की जाएगी ताकि सड़कों की जो उसे ब्यूटीफाई कर सके, जी हाँ, और साथ ही पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिल पाए। और फुट ओवर ब्रिज और सबवे के आसपास भी इसी प्रकार के ऊँचे सेंट्रल वर्ज बनाए जाएंगे, जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। और साथ में किन रोड्स पर जो है काम होना है, खासकर जो बताए गए हैं वो हैं 55 किलोमीटर लंबे महात्मा गांधी मार्ग यानी रिंग रोड और 47 किलोमीटर लंबे आउटर रिंग रोड, जीटी रोड, मेहरोली बदरपुर, मेहरोली गुरुग्राम मार्ग पर जगह की संभावना के अनुसार काम होना है। इनके अलावा भारतेंदु हरिश्चंद्र मार्ग, रोड नंगर 71, मास्टर सोमनाथ मार्ग, स्वामी दयानंद मार्ग के अलावा पश्चिमी दिल्ली, बाहरी दिल्ली और उत्तरी दिल्ली के अन्य प्रमुख मार्ग भी शामिल है। तो चलिए, और साथ में वैसे भी रोड आराम से क्रॉस करनी चाहिए, आगे पीछे सब साइड में बिल्कुल देखना चाहिए ताकि आप भी सुरक्षित रहे और जो रोड से दूसरी साइड से आ रहे हैं वो भी सुरक्षित रहे। मैं हूँ प्रियंका, आपके साथ प्रोग्राम चला सेटेलाइट, प्रियंका वर्मा।

दिल्ली की भीगी सड़कों पर जब शाम धीरे धीरे उतरती है तो शहर की लाइट्स बारिश की बूंदों में चमकने लगती है ना, कभी देखा है ऐसा? जी हाँ, तो उस खामोशी फिजा में दिल को याद आता है प्रोग्राम सिटी लाइट्स। जी हाँ, जैसे दिल्ली की भीगी हवा धीरे धीरे अपनी कहानी सुनाती है ना, वैसे सिटी लाइट्स में भी शहर की बातें होती हैं, दिल्ली की कहानी सुनाई जाती है और बहुत अच्छे गाने भी सुनाए जाते हैं। जी हाँ, चलिए मैं हूँ प्रियंका वर्मा आपके साथ, एक और न्यूज़ आपका वेट कर रहा है। जी हाँ, जो टॉय बिजनेस से जुड़े हैं ना, ये अपडेट दोस्तों आपके लिए है। टॉय बिजनेस इंटरनेशनल एग्जीबिशन B2B 4 जुलाई से शुरू हो चुका है भारत मंडपम में और ये 7 जुलाई तक चलेगा। जी हाँ, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ जा सकते हैं। और वैसे भी दोस्तों, एक ऐसे खिलौने भी आए हैं यहाँ पर जो ना सिर्फ डिजिटल हैं बल्कि AI बेस्ड खिलौने हैं, जो खेल खेल में साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत को सिखाएंगे। भारत मंडपम में शनिवार से शुरू हुई अंतर्राष्ट्रीय खिलौना प्रदर्शनी में बदलते और इंटरेस्टिंग खिलौना बाजार की तस्वीर देखी जा सकती है। इसमें ट्रेडिशनल खिलौने के साथ AI खिलौने भी हैं जो बच्चों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और प्रदर्शनी में 400 से अधिक भारतीय ब्रांड और 50 से अधिक देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये मैंने जैसे भी कहा है आपको, मंगलवार तक यानी ट्यूजडे तक चलेगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर जाइएगा और आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग ही मिलेगा। इनफैक्ट ये जो एग्जीबिशन है, ये टॉय इंडस्ट्री में देश को एक कहते ना ग्रोइंग इन्फ्लुएंस भी उसका शोकेस कर रही है। बड़े लेवल पर जो स्टार्टअप हैं, खिलौने कंपनियां हैं, वो रोबोट आधारित खिलौने बनाए गए हैं जो बच्चों को कोडिंग, मैथ, विज्ञान के जो बुनियादी जो प्रिंसिपल्स हैं खेल खेल में सिखा रहे हैं। इनफैक्ट इंटरैक्टिव टॉयज भी इसमें डिस्प्ले किए गए हैं। जी हाँ, तो जो उनके सवालों के जवाब भी दे रहे हैं बच्चों के, ऑगमेंटेड रियलिटी वाले खिलौने व टैबलेट स्क्रीन के जरिए वर्चुअल दुनिया को असल दुनिया से जोड़ रहे हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो आप जाइएगा और आनंद लीजिएगा। फिलहाल प्रियंका वर्मा को दीजिए इजाज़त क्योंकि नेक्स्ट प्रोग्राम आपका वेट कर रहा है मैं सिमसाला मिक्स। और अपना ख्याल रखिए और अपने शहर का भी ख्याल रखिए और अपने देश का भी मान बढ़ाते रहिए। टेक केयर गाइस, स्टे म्यूजिकल एंड स्टे ब्लेस्ड।

शाम के 6 बज चुके हैं। प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के अंतर्गत राज्य को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। हुरमुज़ल मरुमध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने LNG पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठक ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। अमरनाथ यात्रा के पहले 2 दिन में 32,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के 2026 के पहले जत्थे को चंपावत जिले के टनकपुर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस जत्थे में एक डॉक्टर सहित 79 तीर्थयात्री हैं, जिनमें 34 पुरुष और 15 महिलाएं हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की प्रमुख पहल राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान प्राथमिकता परियोजना ICMR माइंड्स ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में स्वर्ण पदक जीता है। भारत असम के गुवाहाटी में कल से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के यूक्रेन युद्ध और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजनबाई का निधन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। और खेलों में ग्रैंड शतरंज टूर में बिल्ट सेक्शन के पहले दिन ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने 4th स्थान पर पहुंचे। और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला होगा। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू दिस शो जिसका नाम है मैसेज मसाला मिक्स, जिसमें मैं हूँ आपके साथ आपका अपना म्यूजिकल हमसफर आरजे निखिल वर्मा लेकर आ गया हूँ रेनबो की इन सतरंगी पटरियों पर अपनी अतरंगी यारी के साथ, म्यूजिक, मस्ती, मसाला, मैसेजेस। जी हाँ, शो का नाम आपको पता ही है मैसेज मसाला मिक्स, और आज का टॉपिक थोड़ा हटके है, थोड़ा लाजवाब सा है। आप सोच रहे होंगे भाई किस बारे में बात कर रहे हैं, तो भाई आज के टॉपिक के बारे में मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड चैंपियंस की अगर हम बात करते हैं ना, तो ये शब्द ही दिमाग में स्टेडियम, ट्रॉफीज, रिकॉर्ड्स और मेडल्स की तस्वीर बन जाती है। लेकिन कभी बैठे बैठे हम ये भी सोचते हैं ना कि अगर इस काम के लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप की कोई ट्रॉफी मिलती तो मेरा इनाम पक्का होता, मैं उसका पक्का हकदार होता। क्योंकि हर इंसान के पास एक ऐसा टैलेंट, एक ऐसी आदत या क्वालिटी जरूर होती है जिसमें उसका कोई मुकाबला नहीं होता। तो बस आज के मैसेज मसाला मिक्स में आपका सवाल यही है कि अगर आपको किसी चीज के लिए, किसी काम के लिए, आपकी किसी हैबिट के लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब मिलता तो वो किस चीज के लिए मिलता और क्यों। तो भेज दीजिए अपने मैसेजेस हमको 9868107070 पे। जी हाँ, 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और आपको करना यह है कि अपने नाम, कहां से आप मैसेज भेज रहे हैं जरूर बताइएगा, और ये बताइएगा कि अगर वर्ल्ड चैंपियनशिप आपको किसी चीज के लिए मिलता, अदर देन यू नो जो स्पोर्ट्स है या कोई और अलग से टैलेंट है, तो वो किस चीज के लिए मिलता।

और क्यों है ना, इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट और डाल देते कि अगर आप बहुत ही हम्बल हैं, आप सोच रहे हैं कि भाई मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता, तो फिर आप किसी ऐसे इंसान को घर में मम्मी पापा उनके बहुत सारे टैलेंट होते हैं ना, कोई दोस्त उनके बारे में भी बात कर सकते हैं, बट आई वुड प्रेफर कि आप अपने बारे में अपने टैलेंट के बारे में बताएं। तो 9868107070 पर मैं आपके मैसेजेस का इंतजार कर रहा हूँ और शो का आगाज हमेशा की तरह एक प्यारे से गाने के साथ।

जी हाँ इलाही मेरा जी आए। और आपका जी, आपका मन ऐसा क्या काम करता है, या आप खुद ऐसा क्या काम करते हैं कि जिसके लिए आपको लगता है कि भाई मुझे वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब तो बिल्कुल मिलना चाहिए। और आप लोगों के मैसेजेस भी आने शुरू हो चुके हैं। पहला मैसेज हमें आया है हमारे दोस्त का, मोहम्मद सरफराज आलम, जो कि हारदर्शना बाजार अररिया बिहार से लिखते हैं कि यदि साहित्य के क्षेत्र में वर्ल्ड चैंपियंस जैसा कोई सम्मान दिया जाता तो हमारे रेडियो मित्र सुप्रसिद्ध लेखक प्रेमचंद प्रेमी जी निश्चित ही उसके प्रबल दावेदार होते। उनकी कविताएं, गजलें, शेर व शायरी और साहित्य साधना पाठकों के हृदय को गहराई से स्पर्श करती हैं। उनकी लेखनी समाज को सकारात्मक दिशा देने के साथ साथ हिंदू उर्दू साहित्य को भी समृद्ध बना रही है। उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं एवं सम्मान। एंड मैं आपकी बात से बिल्कुल यू नो आई विल एको विद दिस, बिल्कुल ताल्लुक रखूंगा, क्योंकि मैंने भी काफ़ी कुछ उनके जो मैसेजेस आते हैं उसमें काफ़ी कुछ अच्छा लिखते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही अच्छा मैसेज भेजा है और शो की शुरुआत भी आपके मैसेज से हुई और टॉपिक से हुई, मुझे अच्छा लगता है। ऑल राइट, और दूसरा मैसेज आया।

हमारे एक और दोस्त का नरेंद्र सोनी देवीगढ़ पटियाला से लिखते हैं, और कहते हैं कि अगर मुझे वर्ल्ड खिताब मिलता तो पैदल चलने के लिए मिलता, मुझसे ज्यादा शायद ही कोई पैदल चलता होगा। ऐसा है तो देखते हैं, अभी और भी मैसेजेस आएंगे, क्या पता आपका कोई कंपटीशन में हो, है ना। चलो अभी पता चलेगा जैसे जैसे मैसेजेस आएंगे। और एक मैसेज हमें आया है, ये कह रहे हैं कि मैं सुन नहीं पाया हूँ टॉपिक। सो बिल्कुल

अनेकों बार चाय पीने का वर्ल्ड रिकॉर्ड मैं तोड़ सकता हूँ, सो इट कुड बी फनी एज वेल, है ना. बट अगर जेन्युइन टैलेंट है तो भाई उसका तो फिर क्या ही कहे, है ना. तो ये भी आप हमें भेज सकते हैं 9868107070 पे. एक मैसेज और ले लेते हैं. ये मैसेज हमें भेजा है अक्षय ने, कहते हैं आई वुड हैव वन वर्ल्ड चैंपियनशिप फॉर ओवर थिंकिंग फॉर श्योर. एंड I mean, I don't know what to say, but हाँ, overthinking. कई बार ना आप इतना overthink करते जो चीज़ें हैं ही, मतलब हो ही नहीं सकती या होगी भी नहीं, उसके बारे में सोचना बहुत लोग उस लेवल तक पहुँच जाते हैं. तो आई थिंक आप वहीं कहीं उसी कहीं एज पे हैं. बट आई वुड से कि इट्स नॉट गुड, है ना. ज़्यादा overthink क्या करना, जो भी है उसमें रहो और ऐश से मजे से जियो. ऑलराइट, एक मैसेज और पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये मैसेज हमें भेजा है प्रेमचंद प्रेमी जी, नहीं जैत्रा धामपुर से. लिख रहे हैं कि अक्ष सखावत का जहन में सवार रहता है, किरदार सादगी मुझ में शुमार रहता है, करे सितम कितना भी कोई मुझ पे, लेकिन मेरे दिल में तो बस निश्चल सा प्यार रहता है. ओहो हो, क्या बात है. लेकिन आप भी, आपका टैलेंट तो आप लोग मतलब हमें शायरी के जरिए बता ही दिया, लेकिन और कोई टैलेंट जो हमें नहीं पता हो, वो वाला बताइए. ऑलराइट, आपके मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेज हम तक पहुंच भी चुके हैं. ये मैसेजेस मैं पढ़ूंगा. पंकज कामरावती महाराष्ट्र से आ चुका है. रंजीत कुमार मंडल का मैसेज हमारे पास है, और दिलीप बसफोरे का फालाकाटा बंगाल से भी हमें मैसेज आ चुका है. इन सब के मैसेजेस पढ़ूंगा, लेकिन अभी आपको सुनाऊंगा एक प्यारा सा गाना, और ये गाना आपके लिए, मेरे लिए और सबके लिए, बिकॉज हम सब क्या है, द बेस्ट.

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: माँ हमें जीवन देती है और पेड़ उस जीवन को सांसें देते हैं। इस बार
2: माँ के सम्मान में, धरती माँ के उत्थान में
1: दिल्ली वन एवं वन्य जीव विभाग लेके आ रहा है मिशन 70 लाख पौधारोपण अभियान, एक पेड़ माँ के नाम।
2: दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ा वन भागीदारी पौधारोपण अभियान, जिसका शुभारंभ 7 जुलाई को माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के कर कमलों से होगा।
1: अधिक जानकारी या पौधारोपण स्थल पर अपना स्लॉट बुक करने के लिए www.greendrive.delhi1mahotsav.in पर जाएं या 8588999799 पर कॉल कीजिए।
2: अगर आपके पास पौधा लगाने की जगह है तो वृक्ष रथ को बुलाइए या नर्सरी लोकेटर की मदद से अपनी नजदीकी सरकारी नर्सरी से निशुल्क पौधा प्राप्त कीजिए।
1: और अगर आप चाहते हैं कि आपका ये संकल्प सिर्फ एक पौधे तक सीमित ना रहे तो बनिए एनवायरमेंटल सेवियर और दिल्ली सरकार के साथ जुड़कर दिल्ली को और ज्यादा स्वच्छ, हरित और स्वस्थ बनाए।
3: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
4: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
3: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
4: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
3: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: ऑलराइट, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो प्रोग्राम का नाम है मैसेज मसाला मिक्स और मैं हूं आपके साथ आपका अपना म्यूजिकल हम सफर आरजी निखिल वर्मा। आपके मैसेजेस की तरफ रुक कर लेते हैं। ये मैसेज हमें भेजा है, ये मैसेज हमें आया रंजीत कुमार मंडल का सिकटी अररिया बिहार से। लिखते हैं कि यदि मुझे किसी चीज़ के लिए वर्ल्ड चैंपियन का खिताब मिलता तो वो है शतरंज, क्योंकि मैं शतरंज अच्छे से खेलता हूं और जितनी भी क्षमता रखता हूं उतना जीतते भी होंगे, है ना। तो बिल्कुल हो सकता है, यू नो, आप ट्राई कीजिए, हो सकता है आप यू नो मेडल भी लेकर आए और एक्चुअल में वर्ल्ड चैंपियन बन जाए। क्या बात है, है ना। यू नो ट्राई करना चाहिए, ट्राई करते रहना चाहिए। और दिलीप कह रहे हैं कि हमें पुराना वाला जिंगल सुनना है। अब कौन से वाला पुराना सुनना है आपको, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारे बहुत सारे जिंगल जो है वो आकाशवाणी रेनबो के हैं। और आप किसकी बात कर रहे हैं आई डोंट नो, वो आप बताइए। और हर जगह अवेलेबल आप सुन सकते हैं आराम से, है ना। ओके, ये मैसेज हमें भेजा है हमारे दोस्त ने, पंकज ने, अमरावती महाराष्ट्र से लिख रहे हैं कि मुझे वर्ल्ड चैंपियनशिप मिलती तो वो लिखने की, क्योंकि मुझे लिखने का बहुत शौक है और मुझे लिखना बहुत अच्छा लगता है। मैंने मेरे परिवार के लोगों को लिखने की कई बार मदद भी की है और मुझे मैसेज लिखना, खत लिखना, ईमेल लिखना बहुत अच्छा लगता है। ओके, ऑलराइट, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, लिखने वालों की भी ना कहे, हमने चैंपियनशिप के बारे में पूछा था और लिखने वालों की चैंपियनशिप यहाँ बनती जा रही है, यू नो इंटरनली बन रही है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमें लिखना पसंद है ना। तो यू नो इट कुड बी यू एज अ वर्ल्ड चैंपियन। और अगला मैसेज हमें भेजा है पुरुषोत्तम कुमार जी ने भदरवा से, लिख रहे हैं कि अगर मुझे वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब मिलता तो रेडियो सुनने का मिलता, क्योंकि मैं बचपन से रेडियो सुनता आ रहा हूँ। ये आपके साथ भी बहुत सारे जो लोग हैं ना अभी कॉम्पिटिशन के लिए आ जाएंगे पुरुषोत्तम जी, कहेंगे कि भाई हम भी सुन रहे हैं। और

यश शिंदे मुंबई से मैसेज भेज रहे हैं, लिखते हैं कि दुनिया जीत ली जिसने अपने फौलादी इरादों से, आज नाम गूंज रहा है उसका फलक पर, वादों से सिर पर सजा है जिसके आज विश्व विजेता का ताज, उसकी मेहनत और लगन का पर पूरे देश को है नाज। और अगर मुझे विश्व चैंपियनशिप का अवार्ड मिलता तो मुझे मेरी हॉबी के लिए मिलना चाहिए, मैं अक्सर बॉलीवुड से चुन चुन कर गीत आकाशवाणी रेनबो पर रिक्वेस्ट करता हूँ। अच्छा जी, और कैसे कि मतलब सॉन्ग्स जो है वो आप रिक्वेस्ट तो करते हैं, आपके सॉन्ग्स प्ले होते हैं नहीं होते? होते होंगे ना, तभी तो आप इतने यू नो खुश हैं और कॉन्फिडेंट हैं और आप चैंपियनशिप क्लेम करना चाहते हैं। सो यस, नाइस नाइस, आप सुनते हैं, मैसेज भेजते हैं और हमसे जुड़े रहते हैं, यही हमारे लिए इनाम है। एक मैसेज और ले लेते हैं अनिल शर्मा जी का, सरिता विहार से मैसेज भेज रहे हैं और लिख रहे हैं कि यदि कोई वरिष्ठ उम्र के व्यस्त रखने के तरीके इजाद करने में वर्ल्ड किताब मिलता तो वो मुझे मिलता, क्योंकि मैं व्यस्त रहने के लिए काव्य लेखन सीखा और कोरोना लॉकडाउन में सीखा, और अब शेर शायरी लिखने की संख्या बढ़ने से दिन काटने में परेशानी नहीं होती है। मैंने अनुभव किया है कि वरिष्ठ उम्र में व्यस्त रहने का कोई ना कोई शौक रखना ज़रूरी है जिससे हम व्यस्त रहें। दैट इज़ सो ट्रू। और ये सिर्फ वरिष्ठ उम्र के लिए नहीं बोलूँगा अनिल जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि इंसान को ना बिज़ी रहना चाहिए, क्योंकि कहते ना खाली दिमाग शैतान का घर। और अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, एक हॉबी ज़रूर रखिए, एक यू नो एक इंटरेस्ट ज़रूर रखिए, जो भी अच्छा लगता है उसको ज़रूर कीजिए, बिकॉज देर इज़ नो टुमारो, आई मीन देर इज़ टुमारो, बट जो करना है ना आज अभी इसी वक्त कीजिए, अपने दिल को मत मारिए, अपने शौक को मत मारिए, है ना। चलिए ये तो मैंने बात कर दी, और अब आपको सुनाऊंगा एक बहुत प्यारा सा गाना, बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं लेकिन गाना भी बहुत ज़रूरी है। और ये वाला जो गाना है ना, इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट्स, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये कुछ जो मतलब जब मैं कॉलेज स्कूल कॉलेज में था तब मैं बहुत रिलेट करता था इस गाने से, क्योंकि ये बहुत प्यारा सा यू नो एक हमारे टाइम का, कॉलेज के टाइम का सॉन्ग है। और ये जो जिंदा दिली, मस्त माहौल और खुश रहने का तरीका है, वो कैसे रखना है अपने आप को, उसके बारे में कहता है।

All right, ये था बहुत ही प्यारा सा गाना फ्रॉम द मूवी मैं हूं ना, और मैं हूं आपके साथ इस चैनल पे जिसका नाम है आकाशवाणी रेनबो। आप सुन रहे हैं मैसेज मसाला मिक्स, और आज का हमारा टॉपिक है कि अगर आपको किसी चीज के लिए, किसी आपकी हॉबी के लिए या आपके किसी टैलेंट के लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब मिलता तो वो कौन सी चीज होती और क्यों, ये आपको हमें बताना है 9868107070 पर। ये हमारा नंबर है, और मैसेजेस की तरफ रुक कर लेते हैं। आपका ये मैसेज हमें भेजा है, इनका नाम है, बहुत सारे नाम है एक्चुअली और मुरादाबाद से ही मैसेज हमें आया, दुलापुर से, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह, और ये सब हमारा शो सुन रहे हैं और इनको अच्छा लग रहा है और इनको हमारे पास भेजे। थैंक यू, आपने मेरी तारीफ करी। ओके, और अगला मैसेज हमें जो भेजा है वो भेजा है मोहम्मद सरफराज आलम का मैसेज हमारे पास आ गया। लिखते हैं कि यदि मुझे किसी एक क्षेत्र में वर्ल्ड चैंपियनशिप का सम्मान मिलता तो वो निसंदेह आकाशवाणी रेडियो सुनने, फरमाइशी पत्र लिखने और रेडियो कार्यक्रमों में फ़ोन कॉल लगाने के लिए होता। एक समय ऐसा भी था जब आदरणीय आरजे ओपी राठौड़ जी के लोकप्रिय कार्यक्रम जी के बीबी में अक्सर फर्स्ट कॉलर बनने का सौभाग्य प्राप्त करता था। आकाशवाणी मेरे लिए केवल एक रेडियो नहीं बल्कि जीवन का अभिन्न हिस्सा, प्रेरणा और आत्मीय साथी रही है। बिल्कुल जी, और ये सभी के साथ है, और आपके लिए भी कंपटीशन हो गया क्योंकि काफ़ी लोग क्लेम कर रहे हैं कि भाई वो भी उनको भी अवार्ड मिल सकता है, उनको भी वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब मिलना चाहिए इस चीज़ के लिए। ऑल राइट, और अगला मैसेज हमें भेजा है सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांतिनगर, सोनीपत से, और लिख रहे हैं कि अगर हमें वर्ल्ड चैंपियनशिप में कोई अवार्ड मिलता तो जनरल नॉलेज में टॉपर होने का अवार्ड मिलता। ओके, जीनियस बात है ये तो। मतलब आप मतलब सब चीज़ें आपको पता होंगी, है ना, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज। वाओ, नाइस, बहुत अच्छा लगा ये जान के। और ये मैसेज अगला भेजा है हमें गुन्नौर से आदिल कमर तस्दीक अली मुजफ्फर अली ने, और लिख रहे हैं कि प्यार भरा नमस्कार, आदाब अर्ज हो, ओके आपको भी, और एक शायरी भेजी है। लेकिन हमने आपसे कुछ सवाल पूछा कि आप शायरी के लिए अवार्ड मिलता है आपको या वर्ल्ड चैंपियनशिप होते, फिर भी अब आपने भेजी है तो मैं पढ़ रहा हूँ कि मेरी ऐसी किस्मत कहाँ जो जहाँ का खिताब पाऊँ, मैं इतना सा इंसान हूँ, जरा सी खुशी में ही खुश हो जाऊँ। खुश हो जाइए, आपकी शायरी पढ़ ली और आपको कह दिया कि आपको शायरी के लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप मिलनी चाहिए, है ना। तो आई होप अब खुश हैं आप। एक मैसेज और पढ़ लेते हैं। ये मैसेज हमें भेजा है नीता ने अमरावती से, लिखते हैं कि मुझे लगता है कि मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड होना चाहिए इसलिए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय पीने वाले इंसान में मेरा नाम हो और वो ट्रॉफी लेने मैं जाऊँ और लोग मुझे पहचान सके। अरे इतनी चाय पीते हैं आप, कितनी चाय पीते हैं ये ज़रूर बताइएगा एक दिन में, है ना। और अभी तो जैसे गर्मी है, मतलब तो खैर मौसम आज अच्छा, आज चाय वाला मौसम है वैसे, है ना, लेकिन अगर फिर भी गर्मी में कितनी, मतलब एक एवरेज बता दीजिएगा हमें कितनी चाय पीते हैं आप। और ये मैसेज हमें भेजा है, बहुत सारे मैसेज आए लेकिन ये मैसेज पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आपको एक सॉन्ग भी सुनाना है मुझे और फिर ब्रेक भी लेना है। तो ये मैसेज हमें भेजा है राकेश वोरा ने बुराड़ी दिल्ली से, लिखते हैं कि मुझे वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब मिलता तो बोलने के लिए मिलता, मैं बोलता बहुत हूँ, तो आपको तो हमारे साथ इधर होना चाहिए राकेश जी, है ना, तो ट्राई कीजिएगा कभी। ऑल राइट, और भी मैसेजेस आए हैं हमारे पास, अनिल मोहन जी का आया है और मोहम्मद फुरकान का भी आया है, साथ ही साथ प्रेमचंद प्रेमी जी ने भी एक मैसेज भेजा है और मोहन तिरौन ने भी हमें मैसेज भेजा है, और साथ ही साथ जोगेंद्र सिंह ने भी भेजा है, और पूर्णिया से मोहन कुमारी का मैसेज भी हम तक पहुंच गया है। तो ये आपके सारे मैसेजेस यहीं मेरे पास है, आप कहीं जाइएगा मत। एक प्यारा सा गाना, छोटा सा ब्रेक, और उसके बाद हम यूं गए यूं वापस आए। आप सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो, मैं हूं आपके साथ, आपका अपना म्यूजिकल हमसफर आरजे निखिल वर्मा। ये गाना खास आपके लिए, हियर इट गोज, एंजॉय।

0: बड़ी है माँ।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: माँ हमें जीवन देती है और पेड़ उस जीवन को सांसे देते हैं। इस बार
3: माँ के सम्मान में, धरती माँ के उत्थान में,
2: दिल्ली वन एवं वन्य जीव विभाग लेके आ रहा है मिशन 70 लाख पौधारोपण अभियान, एक पेड़ माँ के नाम।
3: दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ा वन भागीदारी पौधारोपण अभियान, जिसका शुभारंभ 7 जुलाई को माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के कर कमलों से होगा।
2: अधिक जानकारी या पौधारोपण स्थल पर अपना स्लॉट बुक करने के लिए www.greendrive.delhi1mahotsav.in पर जाएं या 8588999799 पर कॉल कीजिए।
3: अगर आपके पास पौधा लगाने की जगह है तो वृक्ष रथ को बुलाइए या नर्सरी लोकेटर की मदद से अपनी नजदीकी सरकारी नर्सरी से निशुल्क पौधा प्राप्त कीजिए।
2: और अगर आप चाहते हैं कि आपका ये संकल्प सिर्फ एक पौधे तक सीमित ना रहे तो बनिए एनवायरमेंटल सेवियर और दिल्ली सरकार के साथ जुड़कर दिल्ली को और ज्यादा स्वच्छ, हरित और स्वस्थ बनाए।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
5: ऑलराइट, आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम है मैसेज मसाला मिक्स और मैं कौन आपका अपना म्यूजिकल हमसफर आरजे निखिल वर्मा। और आपके मैसेजेस की बात कर रहे हैं तो ये मैसेज जो हमें भेजा है अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक ने पहाड़गंज मुल्तानी राणा से, और ये कह रहे हैं कि शानदार प्रस्तुतिकरण, शो अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। और मोहम्मद फुरकान साहब, आपने टॉपिक पूछा था, आपको बता दिया गया था, अब तक तो आप मैसेज भेज दीजिए। ऑल राइट, और प्रेमचंद प्रेमी जी मैसेज भेज रहे हैं, लिखते हैं कि आज के टॉपिक पर यही कहना चाहूँगा कि मैं तो बिल्कुल निर्गुण इंसान हूँ, अपने अंदर कोई ऐसा गुण नहीं है, सिर्फ सच बोलने, सबके दुख में शामिल होने एवं संसार में पर्यावरण के प्रति सबको जागरूक करने के सिवा। इसलिए प्रिय भाई, इस पुरस्कार प्राप्ति की लाइन में सबसे पीछे खड़ा हूँ, आप सब मुझे अपना अनमोल स्नेह प्रदान करते हैं, मेरा संदेश अपनी सुमधुर आवाज़ में प्रस्तुत करते हैं, मेरे लिए इससे बड़ा पुरस्कार कोई नहीं है। और भाई कवि सरफराज आलम जी को भी उनके द्वारा संपादित मैगजीन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और थैंक यू सो मच आपका मैसेज भेजा आपने, और सबको पसंद है जी, आप बस आप लिखते ही इतना अच्छा है कि भाई आपके सब मुरीद हैं। और मोहन तेरोंग फ्रॉम कार्बी अंगलोंग से मैसेज है, आई वांट टू बी अ लेजी वर्ल्ड चैम्पियन, ओके ऑलराइट, एंड आई थिंक दैट आई कैन कम्पीट विद यू ऑन दैट। ऑल राइट, अगला मैसेज पढ़ते हैं, ये मैसेज हमें भेजा है फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान, फारिया ताहिरा ने कस्बा गुनौर यूपी से, और ये हमें शो सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच जी। और जोगिंदर सिंह जम्मू कश्मीर से प्रोग्राम सुन रहे हैं, कहते हैं प्रोग्राम अच्छा लगते हैं, और अगर मुझे अवार्ड मिलता तो मुझे मूवी देखने का अवार्ड मिलता, मैं मूवी बहुत ज़्यादा देखता हूँ, तो मूवी मैराथन में आपका मेडल पक्का होता है ना, गोल्ड मेडल, मैं इतना बोलूँगा। और अगला मैसेज जो हमें भेजा है, ये मैसेज हमें भेजा है पूर्णिया से मोनम कुमारी जी भेज रही हैं, कहती हैं कि किताबें पढ़ना सिर्फ एक शौक नहीं, मेरे लिए ज़िंदगी को समझने का ज़रिया बन गया है, मैंने जब से कुछ मैगजीन के नाम, कुछ किताबों का नाम लिखा है इन्होंने, कुनाव का देवता, रेत की मछली, आषाढ़ का एक दिन, कसाब, गबन, अक्टूबर जंक्शन, और जानना ज़रूरी है, किताबों को पढ़ा है तब से ज़िंदगी को देखने का मेरा नज़रिया ही बदल गया है, ऐसा लगता है जैसे पन्नों ने मुझे खुद से मिलवा दिया हो और अब मैं ज़िंदगी को सच में

खुलकर जीना सीख गई हूँ, और वर्ल्ड चैम्पियनशिप का अगर खिताब मिलता तो हर किसी की बातों को समझकर उन्हें वो एहसास दिला सकूँ कि वो अकेले नहीं है, मैं हमेशा यहाँ हूँ उनकी हर खुशी और हर सवाल को सुनने के लिए। दैट्स सो स्वीट ऑफ यू एंड दैट्स सो नाइस ऑफ यू। इम्तियाज़ मोहम्मद इम्तियाज़ मैसेज भेज रहे हैं जवाहर कैंप कीर्ति नगर न्यू दिल्ली से, लिखते हैं कि अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे ज़िंदगी में लोगों से धोखा खाने के लिए मिलता, क्योंकि मैं लोगों पर बिना सोचे समझे विश्वास कर लेता हूँ। तो भाई आप सोच समझ कर विश्वास कीजिए, ऐसे दोस्त बनाइए जिन पर आप विश्वास कर सके। एक मैसेज और पढ़ लेते हैं, ये मैसेज हमें भेजा है अंशी शर्मा ने हस्तिनापुर मेरठ से, लिखते हैं कि आज के टॉपिक पर यही कहना चाहूंगी कि अगर मुझे वर्ल्ड चैंपियनशिप में कोई अवार्ड मिलता तो वो होगा हॉन्टेड स्टोरी सुनाने में, और मुझे बहुत पसंद है सुनने में भी। और फिर रात को आप डरते भी होंगे, है ना, आप सोचते होंगे कि भाई कोई है मेरे आसपास ऐसा, जो क्योंकि मैं भी ना ये हॉन्टेड स्टोरीज और जो ये हॉन्टेड मूवीज इनका बहुत बड़ा शौकीन हूँ, लेकिन फिर रात को वो सारी कहानियाँ वो सारे चेहरे ऐसे लगता है बस मेरे आसपास इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं, एंड फिर वो सारा हीरो बनना कहीं किनारे से हवा में निकल जाता है। ऑल राइट, बट आपने शेयर किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक मैसेज और पढ़ ले तो, बिकॉज बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं तो ये मैसेज मैं ज़रूर पढ़ूंगा। और ये मैसेज भेजा है हमें किशन बंजारी, नीलम, स्वाति और किशन ने रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से, लिखते हैं कि हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड टोमेटो सॉस खाने वालों में से होता, क्योंकि हम जब भी खाना खाते हैं कुछ भी खाते हैं तो टोमेटो सॉस लगाकर खाते हैं और दिन रात खाते हैं। अरे अरे अरे, ये तो बिल्कुल अलग है, इस पर तो आपको मिलना ही चाहिए। मतलब मैं ये पूरे शो में पहली बार ऐसा कोई मैसेज आया जो हटके मैसेज है, टोमेटो सॉस रियली, मतलब ठीक है मुझे पसंद है बट इतना हर चीज़ के साथ खाते हैं आप लोग, अरे वाह, फिर तो आपको वर्ल्ड चैम्पियनशिप मिलना ही चाहिए इस चीज़ के लिए। और भी मैसेजेस आ रहे हैं वो हम पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, मैसेज मैं कोई मिस नहीं करता हूँ, आपको पता ही है, और वो मैसेज हम पढ़ेंगे इस प्यारे से गाने के बाद। आप रहिए हमारे साथ, कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो। और ये गाना जो मैं आपके लिए प्ले कर रहा हूँ ना, ये बहुत ही प्यारा गाना है, आई लव दिस सॉन्ग, हियर इट गोज, एंजॉय।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: ऑल राइट, आपके मैसेजेस की तरफ रुक कर लेते हैं। तो ये मैसेज हमें भेजा है भैरूलाल बख्तारिया धाकड़, उन्हें जिला मध्य प्रदेश से भेज रहे हैं और लिख रहे हैं कि हमारा तो एक ही शौक है, वह है रेडियो। जी हाँ, हम दिन रात देश भर में विभिन्न आकाशवाणी सुनते हैं और उनकी फरमाइशी, समीक्षात्मक, सुझावात्मक आदि कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। निश्चित हमें वर्ल्ड चैंपियनशिप रेडियो को लेकर ही मिलती। अरे वाह, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। इतना सब कुछ सुन रहे हैं तो मिलनी भी चाहिए, है ना। और अनिल शर्मा जी फिर से मैसेज भेज रहे हैं। सरिता विहार से लिखते हैं कि विश्व खिताब जल्दी उठने के लिए तो मुझे मिलता है, क्योंकि मैं नित्य 3 बजे उठकर चाय पीता हूँ, रेडियो सुनता हूँ और फिर 3:45 4 बजे तक घूमने निकल जाता हूँ, 6 बजे वापस घर आता हूँ, जिससे मेरा स्वास्थ्य, पाचन शक्ति और ताज़ा प्रकृति के दृश्य देखकर हृदय प्रसन्न हो जाता है। अरे वाह, आपका तो जो रूटीन है बहुत बढ़िया है। और सरफराज आलम बिहार से एक बार फिर से मैसेज भेज रहे हैं, लिखते हैं कि आपने पूछा कि आप चाय कितनी पीते हैं, तो इस बात पर एक कुछ पंक्तियां याद आ गई कि चाय के उड़ते हुए धुएं में कई यादें उतर आती हैं, हर घूंट के साथ कुछ पुरानी बातें मुस्कराती है। सिर्फ चाय पी नहीं, यह दिल को सुकून देने का बहाना है। महफिल हो अपनों की तो हर शाम खास बन जाती है ना। और ये शाम आप सबसे हमने ऑलरेडी खास बना रखी है जी।

डिस्ट्रिक्ट जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल से आयमा लिख रहे हैं कि कविता लामा मैसेज भेज रहे हैं कि सर अगर मुझे किसी हॉबी में वर्ल्ड चैंपियनशिप का अवार्ड मिलता तो ज़्यादातर स्पोर्ट्स देखने में मिलता और मुझे स्पोर्ट्स देखना बहुत पसंद है। ऑलराइट, कौन से स्पोर्ट्स आपको पसंद है भी हमें ज़रूर बताइएगा। और कस्बा गुन्नौर से मोहम्मद सईद अब्बासी पूरा अब्बासी परिवार कह रहा है कि भाई उनको शो पसंद आ रहा है, थैंक यू जी। और ये मैसेज हमें भेजा प्रेमचंद प्रेमी जी ने, एक बार फिर से लिखते हैं कि आप अच्छा बोलते हैं, थैंक यू। और ओके आपने जो कुछ लिखा है मेरे लिए, थैंक यू। और हमें भी आप पे फ़क्र है और आप थैंक यू सो वेरी मच। अपनी तारीफ़ सुन के मैं थोड़ा सा शर्मा जाता हूँ। और राजेश भल्ला एडवोकेट कंकड़खेड़ा मेरठ से लिख रहे हैं कि शुभ संध्या, प्लेलिस्ट अच्छी है, जवाब भी अच्छे आ रहे हैं, आप शो एंजॉय कर रहे हैं ना जी, तो बस यही हमें चाहिए। राखी किशनगढ़ डिस्ट्रिक्ट अजमेर से लिख रही हैं कि अगर ऐसा कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप होता तो ट्विंटन जॉनी वॉकर या चार्ली चैपलिन में होती और मुझे उसके लिए, मतलब आप कॉमेडियन है शायद, है ना, उसके लिए आपको अवार्ड मिलता। नाइस। एक मैसेज और ले लेते हैं। ये मैसेज हमें भेजा है दिव्या मौर्य ने कस्बा जायस गांव और नगदैयापुर से। प्रोग्राम अच्छा लग रहा है और इनको इनके दो ही शौक हैं, एक अपनी ज़िंदगी में मस्त जीने का, दूसरा भर के कप चाय पीने का। अरे वाह, चाय की फिर से बात हो गई। तो एक गाना आपके लिए फिर करते हैं आपसे बात।

ऑलराइट। और अब वक्त हो गया है कि मैं लूँ आपसे विदा, लेकिन कुछ मैसेजेस हैं जिनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये मैसेज हमें भेजा है कार्ट से मोहम्मद फुरकान ने, और ये लिख रहे हैं कि अगर कोई अवार्ड होता या कोई चैम्पियनशिप होती तो कैरम बोर्ड खेलने के लिए मिलना चाहिए, क्योंकि कैरम बोर्ड में आसपास भी मेरे जैसा खिलाड़ी नहीं है। और आप यकीन करना, कार्ट शहर के अलावा भी मैंने कई शहरों में चैंपियन ट्रॉफी जीती हुई है। अच्छा जी, ऐसी बात है, ये तो हमें आज आपके टैलेंट के बारे में पता चला, तभी तो मैं ऐसे टॉपिक्स लेकर आता हूँ, यू नो। और गुड्डू धाकड़ मध्य प्रदेश उज्जैन जिला से लिख रहे हैं कि समोसे बनाने में मेरा नाम आता तो मुझे वर्ल्ड चैम्पियनशिप मिलती। अरे वाह, ओके। और रजत आहूजा कह रहे हैं थैंक यू फॉर प्लेइंग लकी अली ट्रैक और प्लेजर इज ऑल माइन बिकॉज आई लव लकी अली। और ये मैसेज हमें भेजा है डिस्ट्रिक्ट जलपाईगुड़ी से कविता ने, कह रहे हैं कि मेरा मैसेज पढ़ने के लिए थैंक यू। और बैडमिंटन पसंद है, शूटिंग, एथलेटिक्स, कबड्डी, टेबल टेनिस, स्विमिंग, जिमनास्टिक्स, आर्चरी, ये सारे स्पोर्ट्स भी पसंद आते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो वेरी मच। और सारे मैसेजेस मैंने आपके पढ़ लिए हैं, ये सो आई एम गुड एट इट, ओके। ऑलराइट, सो अब जो है ना, मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ एक बहुत ही प्यारे गाने के साथ, और ये उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ यूँ ही जुड़े रहेंगे, क्योंकि 8 बजे फिर से म्यूजिक मस्ती लेकर मैं आऊँगा। तब तक आपको क्या करना है, सुनते रहना है आकाशवाणी रेनबो और करना है एंजॉय। सो हियर इट गोज, एंजॉय, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

आपकी वाणी आकाशवाणी। जी हाँ, 8 बज चुके हैं। टाइम है म्यूजिक मस्ती का। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो और मैं हूं आपके साथ आपका म्यूजिकल हम सफर आरजे निखिल वर्मा।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

लेट इट गो टू नाइट, बट मुझे भी अब जाना होगा, बंद तो नहीं है, लेकिन आपसे वादा है कि जल्दी मिलूंगा आपसे। विकास रहेंगे मेरे बाद, प्रोग्राम रहेगा आपकी याद आती रही, और फिर शिवानी रहेगी संडे रिक्वेस्ट में। तो आपको सुनते रहना आकाशवाणी रेनबो। छोड़े जा रहा हूँ आपको दो बैक टू बैक सॉन्ग्स के साथ। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय।

आपकी वाणी आकाशवाणी। 9 बज चुके हैं और प्रोग्राम लेकर आपकी याद आती रही। मैं हाजिर हूं आपके साथ। और मैं कौन? मैं आपका अपना खास, आपका अपना विकास, आपका अपना विक्स। प्रोग्राम आपकी याद आती रही और यादों और जज्बातों का सिलसिला लिए आज मैं हाजिर हूं। और सफ़र बिल्कुल यादगार बनाएंगे हमेशा की तरह। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी मुलाकात हो तो कोशिश ऐसी हो कि हमारा ये सफ़र हमेशा की तरह यादगार ही बने। तो कहते हैं ना दोस्त कि तेरी यादें भी अजीब दस्तक देती है, बिना बुलाए ही हर रोज़ चली आती है। प्यार की यादें बेशुमार हैं, शानदार हैं, और जब पता हो कि बिछड़ने के बाद कभी मिलना भी ज़रूर होगा, यानी हमें पता है आज बिछड़ रहे हैं लेकिन कभी ना कभी मुलाकात ज़रूर होगी, तो तसल्ली ज़रूर होती है। इस प्यारे से दिल को पर बेकरारी भी उतनी ही ज़्यादा हो जाती है। पल काटना मुश्किल हो जाता है और इस बात का एहसास हमें तब होता है जब किसी भरी महफिल में हम खुद को अकेला महसूस करते हैं।

वेलकम टू द शो विथ फ्लावर्स। विक सर कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। अंशी शर्मा हस्तिनापुर मेरठ यूपी से जुड़े हैं हमारे साथ, और भी कई तमाम दोस्त जुड़ रहे हैं। दस्तूर अपना अपना निभा कर चले गए, बे इंतहा सितम ढाकर चले गए, फिर भी न बुझ सका तुम्हारी याद का जलता हुआ दिया, ये तूफान भी हजार बार आकर चले गए, आकर चले गए। प्रेमचंद प्रेमी धामपुर से अपनी बेहतरीन लाइन्स के साथ, प्यार के साथ, जज्बात के साथ। वेलकम जी, तेरी यादों का दिया आज भी दिल में चलता है, बिछड़ने का हर लम्हा चुपके चुपके खलता है, हर मुलाकात की उम्मीद आंखों में सजाए हैं, मगर नसीब में बस तेरा इंतजार पलता है। मोहम्मद सरफराज आलम, जोकिहार दर्शना बाजार, जिला अररिया बिहार से, बहुत बहुत स्वागत है दोस्त आपका। आदाब आदाब सरकार, हम भी आपको सुन रहे हैं। कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी, फराज, फरहीन, फरहान, फारिया, तायरा, बहुत बहुत स्वागत है तमाम दोस्त आपका भी। और कहते हैं ना दोस्त कि प्यार की परिभाषा अपने अपने अल्फाजों में, जज्बातों में हम हमेशा दे सकते हैं और देते भी हैं। सभी के अपने अपने जज्बात, अपने अपने अल्फाज, लेकिन जब प्यार की शुरुआत होती है तो सबकी तकरीबन

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है प्रोग्राम आपकी याद आती रही। पंकज अमरावती महाराष्ट्र से जुड़े हमारे साथ। नमस्कार, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सरकार, आपकी याद आती रही, बहुत बढ़िया कार्यक्रम प्रस्तुति सर जी और गीत बहुत पसंद आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, सभी मेहनत आपके लिए, जुड़े रहिएगा और भी बेहतरीन ट्रैक्स आपके लिए। जोया मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से, किसी से इतना दिल ना लगाओ कि दिल टूट जाए, दिल टूट जाए तो वो इंसान भी टूट जाए। खुद से इतना प्यार करो कि किसी की ज़रूरत ही महसूस ना हो। गम बहुत है दुनिया में तो खुशी अपने ही अंदर ढूंढो। बहुत सही बात आपने कही है। गुड इवनिंग, यूँ तो सब कुछ है पर एक तेरे ना होने से कितना वीरान नज़र आता है गुलशन अपना। सतपाल वर्मा गिदरबहा पंजाब से, छोटी सी लाइन है, जज्बाती लेकिन बड़ी प्यारी लाइन, बहुत कुछ कह दिया। कहते हैं ना दोस्त की अपनी मायूसी हमारी इस कदर बढ़ जाती है, कभी कभी इस कदर हो जाती है कि एक चांदनी रात भी हमारे मन को सुकून नहीं दे पाती और एक मीठी सी जलन होती है हमारे अंदर इस दिल को जब इस रात को अपने चांद से मिलते हुए देखते हैं हम।

तेरी याद का मौसम कभी ढलता ही नहीं, बिछड़ने का जख्म आज तक भरता ही नहीं। मुलाकात की उम्मीद लिए बैठे हैं हम, मगर तेरा इंतज़ार कभी ख़त्म होता ही नहीं। मोहम्मद सरफराज आलम, जोकीहाट दर्शना बाज़ार, ज़िला अररिया, बिहार से बहुत ही खूब लाइंस आपने भेजी है हमेशा की तरह, जैसा कि आप अक्सर भेजते हैं। और प्यार और जज्बात की बातें हो रही हैं, यादों की बात हो रही हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि तरह तरह से प्यार का इजहार तो किया जा सकता है, अल्फाज अपने अपने हो सकते हैं। तो एक मौसम भी होता है जो इस प्यार के एहसास को और बढ़ा देता है। बिल्कुल सही समझा आपने, वर्षा ऋतु का जो मौसम होता है ये भी अपने आप में क्या खूब होता है। प्यार का एहसास और इसका इजहार तो कभी भी हो सकता है, पर वर्षा ऋतु में ये प्यार कुदरती रूप से और भी परवान चढ़ता है। बारिश की हर भीगी भीगी बूंदों में एक संगीत छिपा होता है जो सिर्फ सच्चा प्यार करने वाले ही सुन पाते हैं। फिर बारिश की फुहार नहीं, प्यार बेशुमार बरसता है।

रिमझिम रिमझिम रुमझुम रुमझुम, बहुत ही बढ़िया गीत है। कुमार सानू, कविता कृष्णमूर्ति जी की आवाज़ में। बिल्कुल सही कहा आपने, तभी तो आपके लिए लेके हाजिर हुए पंकज अमरावती महाराष्ट्र से। जोया मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से लिखती है, मुझे सर फराज आलम की सारी पोएम्स बहुत अच्छी लगती है। जी, आपका संदेश पहुंचा दिया गया है जोया। नमस्ते जी प्रेमचंद प्रेमी जी, कैसे हैं आप? हमेशा की तरह आपका बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण, हार्दिक बधाई हो आपकी। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस प्यार और सम्मान के लिए। हमेशा की तरह कहता हूँ कि हमारी कोशिशें सार्थक होती हैं। अंशी शर्मा लिखती हैं, कभी कभी दिल की बातें लफ्जों में नहीं आती, बस आंखें सब कुछ कह जाती हैं। जो लोग दिल के सबसे करीब होते हैं वही अक्सर सबसे ज्यादा याद आते हैं। उदास लम्हों की ना कोई याद रखना, तूफान में भी वजूद अपना संभाल के रखना। किसी की जिंदगी की खुशी हो तुम, बस यही सोचकर तुम अपना ख्याल रखना। क्या बात है, बहुत ही गहरी दिल की बात। रिमझिम रिमझिम भीगी भीगी बूंदों की फुहार है, बादलों की चादर ओढ़े सोया सारा शहर है। बिजली की चमक महकती फिजाएं और तन्हा सी रात, हर बरसती बूंद में बस तेरी ही यादों का सफर है। मोहम्मद सरफराज आलम जी, अररिया बिहार से। बहुत ही खूबसूरत अल्फाज, जज्बात यही कह सकता हूँ सरकार, और बहुत ही उम्दा शायरी करते हैं आप। हमारे एक लिसनर, हमारे एक दोस्त ने पहुँचाया है अपना संदेश आपके लिए, और उम्मीद करूंगा आप तक पहुंच भी गया हो। और कहते हैं ना दोस्त कि हर दर्द का एहसास दिल को बहुत दुखाता है, पर जो पहला प्यार हो वो एक कश्मकश में छोड़ जाता है। क्योंकि जिस इंसान को देखकर पहली बार इस अनमोल प्यार का एहसास हुआ, अचानक उससे बिछड़कर तो लगा मानो जिंदगी ही बेरंगी हो गई। उम्र का दोष मालूम नहीं, पर यह भी सच है, प्यार किसी भी उम्र का हो सच्चा है तो बिछड़ने की तकलीफ भी सच्ची ही होगी।

0: गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है प्रोग्राम आपकी याद आती रही में, और आज के सफर में मैं हूं आपके साथ, आपका अपना खास, आपका अपना विकास। उम्र भर किसी की याद से इतना लड़े कि उम्र भर किसी की याद से इतना लड़े हैं हम कि तिनकों की तरह राह में बिखड़े पड़े हैं हम, और तन्हाई के आलम की ये इंतहा है मेरे दोस्त के, अपनी ही महफिलों में अकेले खड़े हैं हम, अकेले खड़े हैं हम। क्या बात है, प्रेमचंद प्रेमी जी धामपुर। आदरणीय जोया जी मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से, मेरी शेरों शायरी और कविताओं को इतना स्नेह और सराहना देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपके उत्साहवर्धक शब्द मेरे लिए किसी सम्मान से कम नहीं है। आपकी ये प्रशंसा मुझे और बेहतर लिखने की प्रेरणा देती है। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और यूं ही अपनी मोहब्बत व हौसला अफजाई बनाए रखें। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद सरफराज आलम जी, जो कि हर दशना बाजार अररिया बिहार से। और देखिए ना, आज का ये जो पल है आपके लिए, जोया जी के लिए, और हम

सब के लिए एक यादगार लम्हा बन गया ना, और कल देखिएगा जब पीछे मुड़ के यही पल बहुत प्यार बहुत दुलार देगा आपको, और हर किसी की अदा याद आती है जब आज का ये जो कल है ये आने वाले समय में हमें पुराने दिनों की याद दिला जाती है।

नमस्कार विकास जी, प्रोग्राम इज़ वेरी ब्यूटीफुल, नाइस टॉकिंग, प्लीज़ कन्वे माई मैसेज टू आकाश, वेरी सॉरी बिकॉज आई हैड नो कनेक्शन विद यू लॉन्ग लॉन्ग टाइम, लव यू लॉट मच मोर, हाउ आर यू, आई एम क्राइंग ओनली फॉर यू, प्लीज़ स्टे स्माइलिंग फेस एंड वेरी हैप्पी, बट आई हैव नो वे, सो ग्रेटफुल टू यू फॉर सेफली रिटर्निंग फ्रॉम हरिद्वार टू, सो वेरी थैंकफुल टुम्पा पॉल, रेलवे कॉलोनी मिंटो रोड MK रोड से। उम्मीद करता हूँ टुम्पा जी आपका ये दिली मैसेज आकाश जी तक जरूर पहुंचा होगा। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी जुड़े हैं हमारे साथ शांतिनगर सोनीपत से। वेरी हैप्पी एंड हेल्दी संडे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सरकार, वी आर लिसनिंग प्रोग्राम, नाइस प्रेजेंटेशन, ऑल टाइम हिट सॉन्ग्स ऑफ नॉटी 90 एरा, योर बिग थैंक फॉर एक्सलेंट प्रोग्राम, गॉड ब्लेस यू ऑल विद, बहुत बहुत शुक्रिया आपके शुभकामनाओं के लिए, हमारी भी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।

कासगंज से मास्टर आदिश्याम शाक्या, गुड इवनिंग सरकार, प्रोग्राम में सॉन्ग सिलेक्शन बहुत ही लाजवाब है, नाइस प्रेजेंटेशन, थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त हमारी इस महफिल में आने के लिए। और रात 11 बजे रंगे महफिल का प्रोग्राम होगा, तो उम्मीद करूंगा जुड़ेंगे आप सभी दोस्त। अगली बार कब आऊँगा, 25 तारीख को दोस्त मुलाकात होगी, बिल्कुल होगी जी, बिल्कुल होगी।

दोस्तों वक्त तकरीबन हो गया है कि मुझे आपसे इस प्रोग्राम से विदा लेना पड़ेगा, और जैसा कि मैंने कहा रात 11 बजे रंगे महफिल के प्रोग्राम में दोबारा करेंगे मुलाकात। तो सुनते रहिएगा आकाशवाणी रेनबो, और मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। देश में दक्षिण पश्चिम मानसून और तेज हो गया है। कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग में कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तरी पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली और गीर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र में तेज वर्षा से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग 1 घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। बृहन्मुंबई महानगरपालिका के अनुसार दिन भर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गईं। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गाँव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और

0: मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा में भारी जनभागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थयात्रा के पहले 3 दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किया। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यूजर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 151 रन का लक्ष्य दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने ताजा समाचार मिलने तक 15वें ओवर में 2 विकेट पर 138 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है प्रोग्राम रंगे महफिल में। और रंगे महफिल के आज के सफर में मैं हूं आपके साथ, आपका अपना खास, आपका अपना विकास, आपका अपना विक्स प्रोग्राम रंगे महफिल। वेलकम बैक वंस अगेन विद फ्लावर्स अंशी शर्मा हस्तिनापुर मेरठ यूपी से हमारे साथ जुड़ी हैं। और जुड़े हैं प्रेमचंद प्रेमी जी धामपुर से। शो में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका शो सुन रहे हैं, शुक्रिया जी। और लिखते हैं कि दुख सादगी पे अपनी उठाया है कितनी बार, कैसे कहूँ कि खुद को रुलाया है कितनी बार। सब अपने तमाम अपने अपने ही थे, मगर गैरों की तरह मुझको भुलाया है कितनी बार। ये जालिम ख्याल दुनिया सच बोलने का हश्र, खंजर मेरी जुबां पे चलाया है कितनी बार। इतने सहे सितम के ये अब भी याद नहीं है, कि दिल ने फरेब उनसे खाया है कितनी बार। इन चिरागों से पूछ दोस्त न हारने की जिद, के तूफान में मैंने इनको जलाया है कितनी बार। दुख सादगी पे अपनी उठाया है कितनी बार। वाह क्या बात है, बस यही दिल से जो निकला ना, जो आपने लिखा है, ऐसा लगा जैसे दिल की बात ही लिख डाली। देखिए महफिल में जो आगाज हुआ है जो आपकी दिल की बात से, वो इस सफ़र को और भी यादगार बनाएगा। और कहना चाहूँगा कि मैं उसी बात का जिम्मेदार हूँ जो मैंने कही है, उसका नहीं जो तुमने समझी है।

नमस्कार, संदीप शर्मा लिख रहा हूँ। रंगे महफिल में बहुत ही शानदार गीत आपने सुनाया है और गाने गज़ल की फरमाइश की है। बीकानेर से, राजस्थान से जुड़े हैं हमारे साथ संदीप जी। जी बिल्कुल, और ये कहना चाहूँगा कि इत्तफाक की बात है, हमारे साथ चंदन दास भी हैं। थोड़ा सा इंतज़ार रहेगा हुजूर और ज़रूर आपके लिए हाजिर होंगे इस गीत के साथ। कहते हैं कि मुझे भी याद रखना जब लिखो तारीख वफा की, मुझे भी याद रखना जब लिखो तारीख वफा की, मैंने भी लुटाई है मोहब्बत और उसमें सुकून अपना। कि कौन पूछता है पिंजरे में बंद पंछियों को, याद वही आते हैं जो उड़ जाते हैं।

0: क्या है बधाई, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दिल के तराने, गाने नए।

पुरानी। नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
5: बहुत बहुत स्वागत है सभी दोस्तों का प्रोग्राम रंग के महफिल में, और आज मैं हूं आपके साथ, आपका अपना खास, आपका अपना विकास, आपका अपना विक्स। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? नाइस शायरी जी, शुक्रिया जी। अशोक जी, फरमाइश की है गज़ल की, तो कोशिश करूंगा दोस्त कि ये गज़ल अगर मेरी प्लेलिस्ट में हुआ यकीनन आपके लिए पेश करूँगा। संदीप शर्मा जी लिखते हैं कि नज़रों को जब से तेरी आदत सी हो गई है, खुद से ही दूर रहने की इबादत सी हो गई। ये इश्क है या कुछ और पता नहीं, मगर हर धड़कन को बस तेरी ही चाहत सी हो गई है। क्या बात है। प्रेमचंद प्रेमी जी धामपुर से, रुलाने में दिल किसी का ना दुखाने में रहो दोस्त, राहों में फूल सभी की सबकी बिछाने में रहो दोस्त। और है अंधेरा बहुत ही गहरा, मगर कुछ भी नहीं है अगर तुम जो चिराग एक भी जलाने में रहो दोस्त, जलाने में रहो दोस्त। क्या बात है प्रेमचंद प्रेमी जी, हमेशा की तरह बेहतरीन दिल की बात अपने भेजी है, और उम्मीद करेंगे हमेशा इसी तरह रोशन किया करेंगे हमारी इस महफिल को।

माना के साथ उम्र भर का नहीं था, लेकिन बहुत खूबसूरत थे वो रास्ते जहां तुम साथ चलते थे।

सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांतिनगर सोनीपत से आदरणीय विकास जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम सरकार। कार्यक्रम सुन रहे हैं, अति उत्तम प्रस्तुति, सुनी अनसुनी गजल्स बहुत कर्ण प्रिय लग रहे हैं। दिल से बड़ी बधाई, आपके संध्या रात्रि और जीवन बहुत शुभ और सुखद हो। मेरे दिल से दुआ है आपकी भी, आपके लिए भी यही दुआ निकलती है कि हमें हमेशा खुश रहें, सदैव रहें। और आपने जो लिखा है कार्यक्रम के बारे में, तो कहना चाहूँगा कि बिंदास बोल का प्रोग्राम आता है तो उसमें भी ज़रूर अपनी राय रखिए प्रोग्राम से संबंधित। फिलहाल ये कहूँगा हमारे साथ बने हुए हैं इस महफिल में, तो चार चांद क्या, आठ चांद क्या, मतलब कह सकते हैं कि रोशन हो जाती है महफिल हमारी जब तमाम दोस्त आपकी तरह जुड़ जाते हैं हमसे। और इस बात पर कहना चाहूँगा कि हज़ार बार ली है तुमने तलाशी मेरे दिल की, बताओ कभी कुछ मिला है इसमें प्यार के सिवा, नहीं बसती किसी और की सूरत अब इन आँखों में, काश कि हमने तुझे इतने गौर से ना देखा होता।

जी दोस्तों, बिल्कुल 25 तारीख को दोबारा मुलाकात होगी। आपकी याद आती रही प्रोग्राम के माध्यम से ही, और फिलहाल जो वक्त है उसे भी इंजॉय करते हैं। मीरा सिंह सिलचर आसाम से लिखती हैं, वो ना मिला तो नहीं मलाल है, वो यादों में रहती है हर वक्त ख्याल जिंदगी।

दोस्तों तकरीबन वक्त हो गया है कि मैं आपसे इस प्रोग्राम से विदा लूँ, लेकिन कहना चाहूँगा चलने से पहले कि जब हम मिलते हैं तो सफ़र शुरू होता है, और उस वक्त ऐसा लगता है कि ये जब भी ख़त्म होगा लेकिन बहुत लंबा सफ़र रहेगा। जब ख़त्म होता है तो लगता है कि अभी अभी तो मिले हैं और अभी जाना होगा। खैर कोई बात नहीं, हर बात की कहानी यही होती है। मैं मिलूँगा आपसे 25 तारीख को आपकी आदत है ही प्रोग्राम में। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।

आकाशवाणी रेनबो पर अब प्रस्तुत हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया की यात्रा पर जाएंगे। इंडोनेशिया गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाएगा। इस अवसर पर वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। ये समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने अपने प्रमुख राष्ट्रीय नवाचार मंच नवाचार मंत्र के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। संस्कृति मंत्रालय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से एक कार्यक्रम का आयोजन करेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के पहले जत्थे को चंपावत जिले के तनकपुर से झंडी दिखाकर रवाना किया। क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने आज रात लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर आईसीसी महिला टी20 विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

आकाशवाणी रेनबो पर आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम जीरो आर शो। जीरो आर की शुरुआत करते हैं सुखविंदर सिंह के साथ एक बहुत ही खूबसूरत गीत में।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: कोयल सी तेरी बोली,
2: हाय
1: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

सुरमई से अंधेरे की चादर हटा के एक पर्वत के तकिए से सूरज ने सर जो उठाया तो देखा दिल की वादी में चाहत का मौसम है और याद

की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं। अनकही अनसुनी आरजू, आधी सोई हुई आधी जागी हुई, आंखें मलते हुए देखती है लहर दर लहर मौज दर मौज बहती हुई जिंदगी, जैसे हर पल नई और फिर भी वही, हाँ वही जिंदगी, जिसके दामन में कोई मोहब्बत भी है कोई हसरत भी है, पास आना भी है दूर जाना भी है, और ये एहसास है वक्त झरने सा बहता हुआ जा रहा है ये कहता हुआ, दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर। मंगल

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं।

0: यूं ही साथ साथ चलते।
1: मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

एफएम रेनबो पर प्रस्तुत हैं अभी तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया की यात्रा पर जाएंगे। इंडोनेशिया में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की ऐतिहासिक इंडोनेशियाई यात्रा की शताब्दी मनाई जाएगी। इस अवसर पर वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2,500 करोड़ रुपये नवाचार मंच मंत्र के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2,500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा निर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर वकरोली और बांद्रा कुर्ला परिसर के बीच भूमिगत सुरंग का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम शंकर कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की आधिकारिक यात्रा पर हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने बताया कि उर्वरक तथा कच्चा माल भारत ला रहे कुल 15 जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर चुके हैं। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने अपने प्रमुख राष्ट्रीय नवाचार मंच नवाचार मंत्र के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में संस्कृत मंत्रालय आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से एक कार्यक्रम का आयोजन करेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के पहले जत्थे को चंपावत जिले के तनकपुर से झंडी दिखाकर रवाना किया। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। और क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने आज रात लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर ICC महिला T20 विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप अपने दोस्त मोहन के साथ कार्यक्रम सुहानी रात में सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कार्यक्रम की शुरुआत कुमार सानू की आवाज में इस प्यारे से गीत के साथ।

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: कोयल सी तेरी बोली,
1: हाय
0: कुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुक अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

प्यार करते हैं तुमको सनम। अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में अभी आपने ये गीत सुना। फिल्म का नाम है साजन। इसी गीत के साथ श्रोताओं, सुहानी रात फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न होता है। उम्मीद है आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा।

0: एफएम रेनबो पर प्रस्तुत हैं अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया की यात्रा पर जाएंगे। इंडोनेशिया में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की ऐतिहासिक इंडोनेशियाई यात्रा की शताब्दी मनाई जाएगी। इस अवसर पर वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2,500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर विरकोली और बांद्रा कुर्ला परिसर के बीच भूमिगत सुरंगों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। मुंबई के मानखुर्द इलाके में देर रात भारी बारिश के बीच एक 3 मंजिला चौल यानी मकान गिरने से 6 लोगों की मौत और एक घायल। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी। कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की आधिकारिक यात्रा पर हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने बताया कि उर्वरक तथा कच्चा माल भारत ला रहे कुल 15 जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर चुके हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने अपने प्रमुख राष्ट्रीय नवाचार मंच के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में 2 अलग अलग अभियानों में कोडीन आधारित कफ सिरप की 1,00,000 से अधिक शीशियां जब्त की। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से एक कार्यक्रम का आयोजन करेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के पहले जत्थे को चंपावत जिले के तनकपुर से झंडी दिखाकर रवाना किया। और क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने आज रात लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर ICC महिला T20 विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

श्रोताओं, अब प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम जिसका नाम है भुलाए ना बने, जिसमें आप सुनेंगे

सुरमई से अंधेर की चादर हटा के एक पर्वत के तकिए से सूरज ने सर जो उठाया तो देखा दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं। अनकही अनसुनी आरजू आधी सोई हुई आधी जागी हुई आंखें मलते हुए देखती है लहर दर लहर मौज दर मौज बहती हुई जिंदगी जैसे हर पल नई और फिर भी वही हाँ वही जिंदगी जिसके दामन में कोई मोहब्बत भी है कोई हसरत भी है पास आना भी है दूर जाना भी है और ये एहसास है वक्त झरने सा बहता हुआ जा रहा है ये कहता हुआ दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां

0: सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: एफएम रेनबो पे अभी आप सुन रहे थे गीत संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, वक्त रात्रि के 2:53 और ठीक 41 सेकेंड।

पेश हैं अभी तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया की यात्रा पर जाएंगे। इंडोनेशिया में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की ऐतिहासिक इंडोनेशिया यात्रा की शताब्दी मनाई जाएगी।

0: इस अवसर पर वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2,500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर विरकोली और बांद्रा कुर्ला परिसर के बीच भूमिगत सुरंग का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। मुंबई के मानखुर्द इलाके में देर रात भारी बारिश के बीच एक 3 मंजिला चाल यानी मकान गिरने से 6 लोगों की मौत और एक घायल। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में वर्षा की चेतावनी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की आधिकारिक यात्रा पर हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने बताया कि उर्वरक तथा कच्चा माल भारत ला रहे कुल 15 जहाज हॉर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर चुके हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने अपने प्रमुख राष्ट्रीय नवाचार मंच नवाचार मंत्र के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में 2 अलग-अलग अभियानों में कोडीन आधारित कफ सिरप की 1 लाख से अधिक शीशियां जब्त की हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक मंत्रालय आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से एक कार्यक्रम का आयोजन करेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के पहले जत्थे को चंपावत जिले के तनकपुर से झंडी दिखाकर रवाना किया। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सिफुलिन को हराकर पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। और क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने आज रात लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर ICC महिला T20 विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: मिडनाइट मेलोडी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त मोहन। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बेहद ही खूबसूरत बेहतरीन गीत के साथ।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

आकाशवाणी रेनबो पर अब प्रस्तुत है मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया की यात्रा पर जाएंगे। इंडोनेशिया में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की ऐतिहासिक इंडोनेशियाई यात्रा की शताब्दी मनाई जाएगी। इस अवसर पर वर्ष 2026 और 27 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। ये समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आज अपने सदस्यों के साथ बैठक करेगा। इस बैठक में ट्रस्ट को प्राप्त दान की गिनती की जांच कर रही विशेष जांच टीम SIT की रिपोर्ट सहित कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर विचार विमर्श किया जाएगा। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर विक्रोली और बांद्रा कुर्ला परिसर के बीच भूमिगत सुरंग का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। मुंबई के मानखुर्द इलाके में देर रात भारी बारिश

ये बीच एक 3 मंजिला चोल यानी मकान गिरने से 6 लोगों की मौत और 1 घायल। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम शंकर कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की आधिकारिक यात्रा पर हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने अपने प्रमुख राष्ट्रीय नवाचार मंच नवाचार मंत्र के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में 2 अलग अलग अभियानों में कोडीन आधारित कफ सिरप की 1 लाख से अधिक शीशियां जब्त की। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से एक कार्यक्रम आयोजित करेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के पहले जत्थे को चंपावत जिले के तनकपुर से झंडी दिखाकर रवाना किया। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सेफ्यूलिन को हराकर पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। और क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने आज रात लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर ICC महिला T20 विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी रेनबो पर आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सारेगामा। आपके साथ मैं आपकी दोस्त

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

अब प्रस्तुत है आकाशवाणी रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इंडोनेशिया में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की ऐतिहासिक इंडोनेशियाई यात्रा की शताब्दी मनाई जाएगी। इस अवसर पर 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की आधिकारिक यात्रा पर हैं। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। ये समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित है। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार के लिए आज अपने सदस्यों की बैठक बुलाई है। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज हो गया है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने बताया कि उर्वरक तथा कच्चा माल भारत ला रहे कुल 15 जहाज हॉर्मुज डमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर चुके हैं। डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से एक कार्यक्रम का आयोजन करेगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने अपने प्रमुख राष्ट्रीय नवाचार मंच नवाचार मंत्र के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविक ने रूस के रोमन

सफियुलिन को हराकर पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। और क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने आज रात लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर आईसीसी महिला T20 विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

सुप्रभात। आकाशवाणी रेनबो पर अब समय हुआ है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम आराधना का। आइए करते हैं आरंभ गणेश वंदना के साथ।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
0: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
0: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
0: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।